सुप्रभात श्रोताओं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: मीडियम वेव 314.4 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारत

0: ये खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रोताओं, सुबह की इस पावन बेला में माँ जगदम्बा के चरणों में हाजिरी लगाने का समय हो चुका है। माँ के दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा से झुकता है उसकी तकदीर बदल जाती है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, ना मांगू सोना ना मांगू चांदी, माँ अपनी दया का बस एक कतरा दे दे। भटकू न कभी जीवन की राहों में, अम्बे माँ मुझे अपने चरणों का आसरा दे दे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेंद्र चंचल की आवाज़ में माँ अम्बे का ये बेहद पावन भजन। श्रोताओं, इस भजन का एक एक शब्द माँ के प्रति अटूट विश्वास को जगाता है। तो आइए अपने घर आंगन को भक्ति के रंग में सराबोर करते हैं और सुनते हैं माँ अम्बे का ये भजन।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की बुलंद आवाज में माँ अम्बे की ये पावन भेंट। श्रोताओं, परमात्मा से जब भी हम जुड़ते हैं तो हमें हमारी मर्जी की चीज़ें भले ही तुरंत ना मिलें, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे सही होती हैं, क्योंकि इंसान वो मांगता है जो उसे अच्छा लगता है और ईश्वर वो देता है जो उसके लिए अच्छा होता है। माँ की कृपा जिसके सर पर हो, उसे दुनिया में किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं होती। कितनी गहरी बात है ना दोस्तों, जब हम अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। समर्पण के इसी पावन भाव को शब्दों में पिरोया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। तो आइए ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को जताते हैं और सुनते हैं लता जी की आवाज में ये अमर भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो श्रोताओं, चलिए भक्ति के इस प्रवाह को थोड़ा और गहरा करते हैं और रुख करते हैं गुरुवाणी की ओर। ईश्वर सदा हमारे साथ है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसी अटूट विश्वास को बयां करता है हरप्रीत कौर की आवाज़ में ये पवित्र शब्द। तो आइए इस शब्द को सुने और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें।

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रूह को तृप्त कर देने वाली इस प्रस्तुति के बाद आइए अब चलते हैं सूफियाना भक्ति के उस मुकाम पर जहां दिल सिर्फ मौला मौला पुकारता है। श्रोताओं, भक्ति का कोई एक रास्ता नहीं होता, हर रास्ता उसी एक खुदा, उसी एक रब की तरफ जाता है। सरफराज साबरी की आवाज़ में लीजिए पेश है ये खूबसूरत नात, तो झूम उठिए इस सूफियाना कलाम के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सरफराज साबरी और साथियों की आवाज़ों में ये खूबसूरत नात। दोस्तों, आज की इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है संतोष, यानी सेटिस्फैक्शन। जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है। और जब बात संतोष की हो तो माँ संतोषी की महिमा को भला कैसे भूला जा सकता है। आज के इस भक्ति सफर के आखिरी पड़ाव पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों की आवाज़ों में ये सुप्रसिद्ध और मंगलकारी भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर हैं राजन साजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल के, और संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का थाह लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: ये विश्व अनंत है, इसका अनंत रूप परमात्मा या ब्रह्म है, और दूसरा रूप जीव आत्मा या मनुष्य है। अनंत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्म अजर और अमर है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत। शास्त्रों में इसे नेति नेति कहा गया है, जो ऐसा भी नहीं पर वैसा भी नहीं। वो गुणातीत सभी में व्याप्त है, और मनुष्य सीमाओं में बंधा होने के कारण जीवात्मा यानी जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है। अतः कहा जा सकता है, संकीर्णता को दूर करने और स्वार्थ को छोड़ने से जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। सब स्वार्थमयी कामनाओं को दूर करने में शिक्षा व ज्ञान की सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कामनाओं की समाप्ति विद्या और ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकती है। जो ब्रह्म

0: को जान लेता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, या यूं कहें कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो यहीं इसी लोक में मुक्ति पा लेता है। अतः यहीं इसी जन्म में सत्य को जानना बहुत जरूरी है, परंतु इसे केवल बौद्धिक दृष्टि से सिद्धांत रूप में जानना काफी नहीं है। तप और सदाचार के द्वारा इसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। तप, क्षमा, दान, किसी की हानि न करना, सदा सत्य बोलना जीवन रूपी यज्ञ की दक्षिणा है। जीवन का हम महाव्रत ये है कि मनुष्य उदार विचार रखे, किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे, लोक मंगल की भावना की उपेक्षा न करे और किसी का भी अनादर न करे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कर्म। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। बिना कर्म किए जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती है। कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म वो ही श्रेष्ठ है जिसमें ज्ञान और बुद्धि का सन्निवेश हो। इस प्रकार के कर्म से श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है और यही आत्मा का लक्ष्य है। जगत और जीवन आनंद के समुद्र हैं। आनंद की तरंगों के बिखरे हुए कण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन आनंद, आशा और उत्साह का पुंज है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने की कामना रखता है। परंतु जो ज्ञानी है वो जानता है कोई वस्तु न तो हमेशा रहती है और न पूर्णतः नष्ट होती है, न किसी का अचानक एकदम से आविर्भाव होता है। अतः मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद जीवन के विभिन्न तत्व नए रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस प्रक्रिया के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक रूप में तो जीवन के तत्वों के संगठन और विघटन की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है और इसे कभी रोका नहीं जा सकता, किंतु मानसिक रूप में जब हम समझ लेते हैं कि समस्त विश्व एक इकाई है और इसके भेद केवल व्यवहारिक हैं, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया कोई विशेष चिंता उत्पन्न नहीं करती।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए गांधी कथा।

कोई ये ना समझे कि नाच आदि के मेरे प्रयोगों के मानी ये हैं कि मैं उस समय स्वच्छंद बन गया था। ध्यान से सुनने पर नागरिकों को उनमें कुछ बुद्धि विचार भी मिलेगा। इस मोहकाल में भी मैं कुछ अंश में सावधान था। पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च नपातुला था। महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च नहीं करना है ये निश्चय कर रखा था। बस मोटर की सवारी का और डाक का खर्च भी रोज लिखता था और सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ मिला लेता था। ये आदत अंत तक कायम रही। मैं समझता हूं कि इसी कारण सार्वजनिक जीवन में मेरे हाथों से लाखों रुपयों का उलटफेर होने पर भी मैं मुनासिब किफायतशारी रख सका। मेरी देखरेख में जितने आंदोलन चल रहे हैं उनमें कभी

0: लगा था। सोचा, फ्रेंच ज्यादा मजबूत हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय लूंगा। रसायन शास्त्र, जिसमें आज मैं देखता हूं कि मुझे खूब रस आना चाहिए था, प्रयोगों के अभाव में मुझे रुचता न था। देश में तो ये विषय मेरी शिक्षा में था ही, अतः लैटिन मैट्रिक के लिए भी पहली बार मैंने इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता, लाइट एंड हीट लिए। ये विषय सरल समझे जाते थे, मुझे भी सरल लगे। परीक्षा की तैयारी के साथ ही रहन सहन में और अधिक सादगी लाने की कोशिश शुरू की। मैंने देखा कि अभी मेरी सादगी अपने कुटुंब की गरीबी से मेल नहीं खाती। भाई की तंदुरुस्ती और उनकी उदारता को सोचकर मन खिन्न हो उठा। 8 और 15 पाउंड मासिक खर्च करने वालों को तो छात्रवृत्तियां मिलती थीं। अपने से अधिक सादगी से रहने वाले भी मुझे दिखाई देते थे। ऐसे बहुत से गरीब विद्यार्थियों से मेरा परिचय हो गया। एक गरीब विद्यार्थी लंदन के कंगाल महल में 2 शिलिंग प्रति सप्ताह किराए पर एक कमरा लेकर रहता था और लोकार्ट की मस्ती कोको की दुकान में 2 पैनी का कोको और रोटी खाकर गुजर करता था। उसका मुकाबला करने की तो मुझ में हिम्मत न थी, पर यह देखा कि मैं अवश्य 2 के बजाय 1 कमरे में गुजर कर सकता हूं और आधा खाना अपने आप भी पका सकता हूं। इस तरह 4 या 5 पाउंड माहवार में रह सकता हूं। सादी रहन सहन पर मैंने किताबें भी पढ़ी थी, 2 कमरे छोड़े और 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर 1 कमरा लिया। 1 अंगीठी खरीदी और सवेरे का खाना हाथ से पकाना शुरू कर दिया। पकाने में मुश्किल से 20 मिनट लगते थे। जई का दलिया और कोको के लिए पानी उबालने में और लगते ही कितने। दोपहर को बाहर खा लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ लेता। यूं 1.25 शिलिंग रोज में पेट भर लेना सीख लिया। ये मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा हो जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार इम्तहान में बैठने पर पास हो गया। नागरिक ये न समझें कि सादगी के कारण मेरे जीवन में कोई नीरसता आ गई। फेरफार के कारण मेरी आंतरिक और बाहरी स्थिति में एकता हो गई। कौटुंबिक स्थिति के साथ मेरे रहन सहन का मेल हो गया। जीवन अधिक सत्यमय हो गया। आत्मिक आनंद की सीमा न रही।
1: इसी के साथ गांधी कथा अब यहीं संपन्न होती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और

0: उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
3: खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को ये काम भी बहुत मुश्किल लगता है। आप भी खुश रह सकते हैं, जरूरत है जीवन शैली में थोड़े से परिवर्तन की। वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना अपने को नियमित ढर्रे से ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान तरीका है। प्रोफेसर डेविड बार्बर्टन के अनुसार आनंद और स्वास्थ्य में सीधा संबंध है। हंसने या प्रिय संगीत सुनने के 10 मिनट बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता वाले तत्व होते हैं और ये असर 2 दिन तक रहता है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि हम तनावों में इतने मशगूल रहते हैं कि आनंद पाने के महत्व को न समझ पाते हैं और न ही उसको अधिक समय दे पाते हैं। परंतु आनंद और खुशी प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो आपको हर्ष और उत्साह से भर देते हैं। अक्सर ही ये क्षण स्वच्छंद होते हैं, पर कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप सोच समझकर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ये क्षण हर एक के लिए अलग होते हैं, पर इनमें जादुई सूर्यास्त निहारने से लेकर संगीत, साहित्य या कला

0: की सराहना जैसे अनुभव भी शामिल होते हैं। जीवन की उन छोटी छोटी बातों की सराहना करने का प्रयत्न कीजिए जिनकी ओर व्यस्तता के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते, जैसे मकड़ी का कुशलता से जाला बुनना, बगीचे के फूलों की मीठी महक, घर के पास के मंदिर की बजती घंटियां, आपके बच्चों का सुबह सुबह दबे पांव आपके बिस्तर में घुसने का अंदाज। आम धारणा के विपरीत कवि शारीरिक या मानसिक वेदना से पीड़ित नहीं होता। अध्ययन दिखाते हैं कि कवि अधिकतर दीर्घायु होते हैं और बाकी सबसे कहीं ज्यादा खुश रहते हैं, इसलिए अपने विचार लिख डालिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बातें आपके मन में बोझ बनकर घूम रही हैं, उनको लिख डालने से आपके शरीर के अंदर का शोभ, दुख और ग्लानी शब्दों के रूप में बाहर आ जाती है और फिर आप जिंदगी के अच्छे पहलू की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप रोजाना डायरी लिखें, ये काफी है कि जब मन और बहुत ज्यादा बोझ तले दबा रहा हो तभी आप अपने सारे विचार लिख डालें और हल्का महसूस करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रसन्न हैं, वे दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं और दूसरों की मदद करने से उन्हें और भी प्रसन्नता मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घंटों तक आप स्वयं सेवक ही बने रहें, हालांकि अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। दूसरों को खुशी देना बहुत ज्यादा आसान है, जैसे किसी की प्रशंसा करना या अकेलेपन की जिंदगी बिता रहे पड़ोसी से बातें करने के लिए रुक जाना। जब आप महसूस करती हैं कि आपकी बातों से वो खुश हुआ है या उसका जी हल्का हुआ है तो आपको भी आंतरिक प्रसन्नता का एहसास होता है। मनपसंद गाना या संगीत सुनकर भी आपका मन पल भर में ही बदल जाता है, पर हम संगीत को बजाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हेडफोन खरीद लें और ध्यान से बैठकर संगीत सुनें। अगर आपको ये सुनकर खुशी होती है तो वो आपके समय का सदुपयोग है। कहते हैं कि हंसी सबसे अच्छी औषधि होती है और डॉक्टर मानते हैं कि ये मात्र कहावत नहीं है। नॉर्मन काजिम्स एक अमेरिकी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन को स्पॉन्डिलाइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी थी। उन्होंने पाया कि 10 मिनट तक खुलकर हंसने से उनका दर्द इतना कम हो गया है वो थोड़ी देर सो सकते हैं। खुशी का अर्थ है आप भीतर तक अपने से खुश हों और अगर आपके भीतर ही भीतर किसी कारणवश कड़वाहट भर गई हो तो ये असंभव है। अगर आप स्थिति में सुधार नहीं ला सकते तो आप अपने अंदर की सारी कड़वाहट कागज पर लिख डालें। वैर भाव द्वेष की आग में जलते रहने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अगर आपका किसी मित्र या परिवार के सदस्य से मनमुटाव हो गया हो तो संबंधों की दरार को ठीक करने के लिए पहला कदम आप ही उठा लें।
1: अभी आपने सुनी स्वास्थ्य चर्चा। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है इस समय मौन वंशों की देखभाल। तो भैया देखिए, हमारे किसान भाई कृषि और पशुपालन के साथ साथ कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। और भैया आमदनी बढ़ाने के लिए और कुछ भी करना चाहिए क्योंकि भैया महंगाई का दौर चल रहा है और अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने परिवार का विकास भी हमारे किसान भाई करें। तो मौन वंशों की देखभाल करने के लिए देखिए, बरसात का मौसम बड़ा संवेदनशील होता है और इस मौसम में क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में फूल नहीं होते और जो फूलों से मकरंद हमारी मधुमक्खियां लाती थी तो मकरंद जैसी चीजों की कमी रहती है, यानी कि हमारी मधुमक्खियों का जो मौन वंश है उनका भोजन बहुत ही कम होता है। तो कुछ हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई मधुमक्खी के बक्सों को बारिश से बचाएं। तो भाई बारिश से बचाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें कि कुछ पॉलीथीन की सीट्स होती हैं उन्हें इस प्रकार लगाएं कि हमारी मधुमक्खियों के बक्सों के अंदर बारिश का पानी न जा पाए। अब दूसरी बात आती है भैया, दूसरे ऐसे कीट और कुछ ऐसे ततैये होते हैं जो मधुमक्खियों को खाते हैं। तो सबसे पहले चींटियों का नाम लेंगे। ऐसे कीट में चींटी का नाम आता है और कुछ बड़े चींटे भी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मधुमक्खी के अंडों को और मधुमक्खी

0: को, तो उनसे सुरक्षा के लिए जो हमारे मधुमक्खियों के बक्से होते हैं उनकी चार टांगे होती हैं आप जानते हैं, तो प्रत्येक टांग को हम एक प्लास्टिक के ग्लास में रखकर उसमें पानी भर देते हैं। तो जब इस प्रकार से हमारे मधुमक्खी के बक्से पानी के अंदर रखे रहेंगे उसकी टांगे या उसका फ्रेम, तो भैया उसमें चींटियां और चींटे नहीं चढ़ेंगे और हमारी मधुमक्खियों के जो लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब बात आती है एक दूसरे शत्रु की, जिसको हम बोलते हैं लाल ततैया। तो लाल ततैया भी मधुमक्खी के छत्तों में घुसकर उनके अंडे, लार्वा और यहां तक कि मधुमक्खियों को भी वो मार डालता है और अपने साथ ले जाता है, बड़ा भारी नुकसान करता है। तो किसान भाई इस ततैये से भी अपनी जो मधुमक्खियां हैं उनको बचाएं। अब बात आती है भैया, जैसे तेज धूप हो रही है, तो भाई तेज धूप से भी दिन में अपनी मधुमक्खियों को बचाएं। जब वर्षा बंद हो जाती है तो बहुत ही तेज धूप बादलों के पीछे से निकलती है और बादलों के पीछे से निकलने वाली धूप इतनी तेज होती है कि वो बहुत ज्यादा तापमान कर देती है। तो ऐसी तेज धूप से भी अपने मधुमक्खी के बक्सों को बचाएं और किसी छायादार पेड़ के नीचे, जैसे आम या अमरूद है या भैया और कोई पेड़ होते हैं, ज्यादातर किसान भाई बाग के आसपास ही अपने मधुमक्खी के बक्से रखते हैं ताकि मधुमक्खी के बक्सों को छाया मिल सके। अब बात आती है भैया इनके भोजन की, तो भैया हमें कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है अपने मौनवंशों की, और कृत्रिम भोजन बनाने के लिए हमें चीनी की चाशनी बनानी पड़ती है, और चीनी की चाशनी हम प्रत्येक मधुमक्खी के बक्से में भी रख सकते हैं और उसके आसपास भी रख सकते हैं। तो मधुमक्खियां इस चाशनी की जो गंध है, सुगंध है, उसको सूंघ कर अब उससे अपने भोजन की पूर्ति करती हैं और भाई अपने आप को बचाए रखती हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में संवेदनशीलता का ध्यान रख के अपनी मधुमक्खियों के बक्सों की सुरक्षा, मधुमक्खी के छत्तों की और मधुमक्खियों की सुरक्षा, और भैया मधुमक्खियों के जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा हमें अवश्य रखनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं भैया, मधुमक्खी के जो बक्से होते हैं वो ज्यादातर लकड़ियों के होते हैं, तो कुछ जो पुराने बक्से होते हैं तो भैया उन बक्सों में जो छत्ते होते हैं या रानी मक्खी होती है उसको हम नए बक्सों में स्थानांतरित कर सकते हैं ताकि हमारे जो मौनवंश हैं उनको नुकसान न हो। नहीं तो भैया यदि रानी मक्खी मर जाती है तो हमारा पूरा जो छत्ता होता है, पूरी मधुमक्खियों का जो समाज होता है वो खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई इस बरसात के मौसम में अपनी मधुमक्खियों की देखभाल करेंगे और मधुमक्खी पालन से अच्छा लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों आज तो हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और कल इसी समय खेती की बातें कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। फरमाइशी गीतों के फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का सजीव प्रसारण किया जाएगा 9:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता में श्रोताओं से आज बातचीत का हमारा विषय रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान में मानव की उपयोगिता। समय रहेगा प्रातः 10:30 पर। और इन दोनों ही कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9457078288 और 01341230105। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज़ों में नात। कानूनी सलाह क्रम में शाम 6:45 पर एडवोकेट समसपाल सिंह से एस के नौटियाल की पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता का विषय होगा मृत्यु भोज निषेध अधिनियम। किसान भाइयों की गन्ना संबंधित समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान प्रस्तुत किया जाएगा 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी 5:05

15 मिनट पर, और शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी उड़ान योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के बारे में।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत अपराह्न 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भागीरथी देवी के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के ही कन्या कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत प्रातः 9:25 पर सुनिएगा योगेश कुमारी और शालू सक्सेना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में आज दिन में 1:15 पर क्रम रहेगा थारी पसंद। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 12:15 पर सुनिएगा श्याम गोपीराम चौधरी का सरोद पर राग मधुवंती। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:30 पर और हमारी बेड़ियां पेश किया जाएगा 12:00। अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 9:25 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:31 पर। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं 8:45 पर प्रातः गोल्डन हिट्स में। प्रातः 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम में, 11:00 चित्रपट संगीत, दिन में 12:30 पर मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में। फिल्मी कव्वालियाँ आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर, शाम 7:00 छाया गीत, गीत संध्या रात 8:30 पर एक ही फिल्म से और रात के हम सफ़र रात 10:30 पर। तो श्रोताओं ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि

0: कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाज कल्याण विभाग के कार्य और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसायटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जापान के यामानाशी फ्री फैक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल प्रदेश दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक उद्यमी और अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। राज्य सरकार की तरफ से जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, MSME और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक संवाद होगा। राज्य सरकार की तरफ से विश्वास व्यक्त किया गया है कि यह संवाद परक सम्मेलन जापान के साथ साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन को नई ऊंचाई देगा। समाचार कक्ष से रितेश।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कल अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और

0: म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री मिश्र ने बताया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने में अतिरिक्त 2 महीने लगेंगे।
1: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
0: गोरखपुर के बाघागाड़ा के पास वाराणसी हाईवे पर ट्रॉलर और रोडवेज बस की टक्कर में वाराणसी के रहने वाले बस चालक की मौत हो गई। कल देर रात हुए इस हादसे में 14 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली तथा घायलों का बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिए। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गयी। बारिश के चलते चित्रकूट में कल 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। जिला प्रशासन ने यहां आज भी कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समाज कल्याण विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा। 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित करने के दिए निर्देश। प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार का निवेश सम्मेलन आज। साझेदारी के विस्तार और निवेश प्रोत्साहन पर होगा व्यापक संवाद। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, आज भी कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं राजवीर सिंह। श्रोताओं, आज की सुहानी सुबह की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत सोच के साथ करते हैं। चारों धाम जाने की चाहत क्यों रखते हो मेरे दोस्त? माता पिता के चरणों में ही तो सारा जहान है। सच्चाई तो ये है कि जिस घर में वृद्धजनों का सम्मान है, वही घर सही मायने में तीर्थ स्थान है। जी हाँ श्रोताओं, आज है 21 अगस्त यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। श्रोताओं, आज का दिन उन बुजुर्गों के नाम जिनकी इच्छाओं में हमारा पूरा बचपन और आज का वर्तमान सुरक्षित है। क्या कभी सोचा है आपने कि एक पुराना घना पेड़ सारी धूप खुद झेलता है, लेकिन राहगीरों को ठंडी छांव ही देता है। हमारे घर के बुजुर्ग भी ठीक वैसे ही होते हैं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपनी पूरी जिंदगी हमारे कल को बेहतर बनाने में गंवा दी। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहाँ खो गए हैं? हमारे पास सोशल मीडिया पर अजनबियों की पोस्ट लाइक करने का समय तो है, दोस्तों के साथ घंटों तक चैटिंग करने का वक्त भी है, लेकिन घर की आराम कुर्सी पर बैठे दादा दादी या फिर माता पिता के पास बैठने का वक्त नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो हमसे कोई धन दौलत नहीं मांगते हैं, मांगना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे समय का एक छोटा सा हिस्सा। आज लोग मन की शांति के लिए हजारों किलोमीटर दूर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। जाइए, कोई बुराई नहीं है। मंदिरों में मन्नत के धागे बांधते हैं, वे भी बांधिए, कौन रोक रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि भगवान तो स्वयं आपके घर के उस कोने में बैठे हैं जहां आपके बुजुर्ग रहते हैं। उनके चेहरे की एक मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकती है। तजुर्बा कहता है कि बुजुर्गों की डांट में भी सुरक्षा कवच होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद वो चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को भी खोल देता है। श्रोताओं, जिस घर में बुजुर्गों की हंसी गूंजती है, वहां कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि असली तीर्थ कहीं बाहर नहीं, आपके अपने घर के अंदर है। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, आज सीनियर सिटीजन्स डे पर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। आज शाम को जब आप काम से घर वापस आओ, तो सीधे अपने कमरे में जाकर मोबाइल मत उठाइएगा। आज अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, उनका हाथ थामिए और बस इतना कहिए कि मम्मी, पापा, दादा, दादी जो भी हो, कि आप कैसे हैं। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। उनको समय दीजिए, उनके पुराने किस्से सुनिए, उनके अनुभवों से सीखिए, उनके साथ बैठकर चाय की चुस्की लीजिए। विश्वास मानिए दोस्तों, उनके चेहरों पर जो सुकून वाली मुस्कान आएगी ना, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। और उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपके जीवन में तमाम खुशियां लेकर आएगी। तो श्रोताओं, हम तो यही कहेंगे कि अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, अपने घर को तीर्थ बनाएं। आप सभी को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।

जी हाँ श्रोताओं, इस संसार में माँ बाप का रूप ही भगवान की पहचान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज तारीख है 21 अगस्त और ये तारीख इतिहास के पन्नों में क्या महत्व रखती है, क्या खास घटा देश और दुनिया में, इस बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेते हैं। सेगमेंट है तिथि विशेष। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं साल 1911 की, आज ही की तिथि को। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा पेरिस के लूवर म्यूजियम से चोरी हो गई थी और इस चोरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस चोरी के शक में मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो से भी पूछताछ की गई थी। हालांकि 2 साल बाद वो पेंटिंग सुरक्षित मिल गई थी और चोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रोताओं, भारत में वन्य जीवों और प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। 21 अगस्त 1972 को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। इसी कानून के तहत देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण हुआ। साल 1977 में आज ही की तारीख को पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में आए विनाशकारी चक्रवात विनी ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 140 लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। बात अगर इंटरनेट की दुनिया की करें तो साल 2008 में आज ही की तिथि को भारत सरकार ने मून लॉजिक सिस्टम की अनूठी सेवा का उपयोग करके देवनागरी लिपि में इंटरनेट डोमेन नामों की बुकिंग शुरू की थी। इसने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में एक नई पहचान दी। सन 2009 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हैरियर गोवा से उड़ान भरने के बाद अरब सागर में क्रैश हो गया था, जिसमें विमान के पायलट सौरभ सक्सेना का निधन हो गया था। सन 2008 में श्रीनगर और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली बस सेवा कारवाएं अमन को फिर से शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा कारणों और सीमा पर भारी तनाव को देखते हुए इस बस सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 1993 में आज ही के दिन नासा का मार्स ऑब्जर्वर अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में प्रवेश करने से 3 दिन पहले ईंधन ऑक्सीडाइजर रिसाव के कारण पृथ्वी से संपर्क खो बैठा था। अगस्त 1992 में लॉन्च हुए मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह, वातावरण और जलवायु का अध्ययन करना था। और अब संक्षिप्त जानकारी आज की तिथि को जन्मे और निधन हुए कुछ प्रसिद्ध लोगों के

0: में श्रोताओं, बी सत्यनारायण रेड्डी का जन्म भी आज की तिथि को 1927 में मद्रास में हुआ था। महज 14 वर्ष की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदारी की। इस दौरान अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेजा। आज़ादी के बाद उन्होंने समाजवादी विचारधारा से जुड़कर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। रेड्डी बाद में सांसद बने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान भी बनाई। गोपाल कृष्ण देवधर भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सेवक थे। उनका जन्म भी आज की तिथि को सन 1871 में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्हें जहाँ भी अवसर मिलता सेवा के लिए वो तुरंत पहुँच जाया करते थे। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी। आज की तिथि को सन 1915 में जन्म हुआ था भारतीय साहित्य में एक चर्चित और सशक्त कहानीकार के रूप में विख्यात इसमत चुगताई का। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी या उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से उठाया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। उनका जन्म भी आज की तिथि को सन 1912 में हुआ था। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को धातु विज्ञान में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इसरो के लिए वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक थे। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म भी आज की तिथि को सन 1910 में हुआ था। उनको पहली सार्वजनिक मान्यता सन 1934 में मिली थी, जब उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्रदान किया गया था और सन 1941 में इसका स्वर्ण पदक भी उन्हें ही मिला था। और आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन भी आज की तिथि को सन 2006 में हुआ था। 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहरा रहा था, तब बिस्मिल्ला खां की शहनाई भी वहां आज़ादी का संदेश बांट रही थी। तब से लगभग हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन एक प्रथा बन गई है। और आज की तिथि को सन 1981 में निधन हुआ था गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का, जिन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता था। आप 1922 में गुजराती पत्र नवजीवन के संपादक भी रहे। तो श्रोताओं, ये तो हुआ हमारा आज का क्रम तिथि विशेष। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज का दिन कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। ये दिन है उन आवाज़ों को सुनने का जिन्हें हिंसा ने हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं श्रद्धांजलि दिवस। ये दिन दुनिया भर के उन तमाम मासूमों को समर्पित है जिन्होंने आतंकवाद के काले साए में अपनों को या फिर अपनी जिंदगी

को खो दिया। श्रोताओं, आतंकवाद सिर्फ इमारतों को ही नहीं गिराता है बल्कि ये परिवारों को भी उजाड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2017 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। मकसद साफ था, पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सम्मान देना और उनके जख्मों पर मरहम लगाना। जब कहीं कोई धमाका होता है तो सुर्खियों में बहुत होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सुर्खियां बदल जाती हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं उनका संघर्ष ताउम्र चलता है। शारीरिक चोटें तो ठीक हो जाती हैं मगर दिल पर लगे गहरे जख्म कभी नहीं भरते। लेकिन श्रोताओं, आज का दिन सिर्फ आंसू बहाने का दिन नहीं है, आज का दिन उन पीड़ितों के अदम्य साहस को सलाम करने का भी है। कई पीड़ित आज खुद सर्वाइवर्स बनकर दुनिया के सामने खड़े हैं। वे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज हमें उनके साथ में खड़ा होना होगा, उनकी आपबीती सुननी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लोग खुद को समाज में अकेला ना पाएं। चिकित्सा सहायता, कानूनी मदद और उन्हें मानसिक संबल देना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। जब तक हम पीड़ितों को न्याय और पहचान नहीं देंगे तब तक आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। साथियों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई एक देश नहीं होता, ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं। आइए आज हम सब मिलकर एक कसम खाएं कि हम नफरत को पनपने नहीं देंगे। हम कट्टरवाद के खिलाफ शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे की एक दीवार खड़ी करेंगे। आइए आज उन सभी आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस क्रूरता में अपनी जान गंवाई, और उनके परिवारों को ये एहसास दिलाएं कि पूरी दुनिया उनके दुख में शामिल है। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि नफरत छोड़िए, इंसानियत जोड़िए।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और मैं हूं आपके साथ राजवीर। और अब चलते हैं कार्यक्रम में अपने अंतिम पड़ाव की ओर और आपको अवगत कराते हैं आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों से। तो अमर उजाला की खास सुर्खी है, झारखंड SSC और सिविल सेवा नियुक्तियों पर रोक का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 15 सितंबर तक मांगा जवाब, फैसले से सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। अमर उजाला के हवाले से ही अगली खबर है, पुराने श्रम विवादों में कर्मचारियों को बड़ी राहत, 1978 की कसौटी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग की परिभाषा बदली, 9 जजों की पीठ ने बहुमत से ट्रिपल टेस्ट में किया संशोधन, और UGC के विवादित नियमों पर पुनर्विचार कर रही केंद्र सरकार, जातिगत भेदभाव की परिभाषा को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, यह खबर भी है अमर उजाला के ही हवाले से। और दैनिक जागरण लिखता है, भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध ढांचे किए ध्वस्त, जैसे को तैसा राजनयिक तनातनी एक बार फिर चरम पर, अवैध संरचनाओं को JCB मशीन की मदद से रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। दैनिक जागरण लिखता है, किशोरावस्था में दर्ज आपराधिक मामला सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बन सकता, यह कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, CRPF जवान की बर्खास्तगी रद्द, 25% बकाया वेतन भुगतान का भी आदेश। हिंदुस्तान से यह खबर है, सख्ती शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच को समिति बनी, UGC के नए निर्देशों पर दोबारा से हो रहा विचार, चीनी भंडारण के लिए अधिकतम समय सीमा भी तय की गई, सर्वोदय विद्यालयों के संचालन में बदलाव की जरूरत, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 2 अक्टूबर तक जारी करें छात्रवृत्ति। भारत जापान में समुद्री सुरक्षा पर समझौता, जापान भारत के बीच समुद्र सुरक्षा बढ़ाने के समझौते की घोषणा की गई, ये खबर है हिंदुस्तान के हवाले से। और हिंदुस्तान के हवाले से ही अगली सुर्खी है, शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा, उचित अथॉरिटी ही करेगी शिकायतों की तहकीकात, लिंग परीक्षण के मामलों में पुलिस नहीं कर सकती जाँच, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और महात्मा गांधी की पांडुलिपि 16.2 करोड़ रुपए में बिकी, भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज की नीलामी का सबसे बड़ा है ये रिकॉर्ड। और कांग्रेस का पूरा राष्ट्र गीत नहीं गाना देश विरोधी, ये कहना है अमित शाह का। गृहमंत्री ने लिखा, वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण की है ये राजनीति। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियाँ, और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए आपको सुनवाते हैं ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
3: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात

0: खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है।
3: JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200

0: रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मानसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच
3: वायर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह माना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
5: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047

0: इसको अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense.

0: Hostel Wien today. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Earlier, India advanced to the second round after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match yesterday. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. In badminton, Indian shuttlers will be in action today in the men's and women's doubles quarterfinal at the WBF World Championship 2026 in New Delhi. The men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will lock horns with third seeds Liang Wei Keng and Wang Chang of China. The duo defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarterfinals 21-23, 21-19, 21-17 in a nail-biting encounter. In the women's doubles, the Indian pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand will face fourth seeds Jia Yi Fan and Zhang Huying of China. The pair defeated seventh seeds Ring Iwanaga and Kei Nakashiki of Japan in straight games 21-16, 21-12 in the pre-quarterfinals. Astronomers have discovered an unusually dense giant exoplanet orbiting a star far beyond our solar system that challenges current theories of how planets were formed. The planet, named GJ523b, is about 150 million years old. It is more than 2.5 times wider and the radius roughly 2.55 times that of Earth. But it has an extraordinary mass, about 23 times the mass of Earth, while remaining predominantly rocky. The planet has been informally dubbed as Mega-Earth, a rare category of exceptionally massive and dense rocky worlds. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Pramod. Amit Shah slams Congress Working Committee's decision on two stands of Vande Mataram, reports Indian Express. Shah targets Congress and Vande Mataram, headlines the Pioneer. Almost all newspapers carry the story of former MP Sajjan Kumar passing away at a city hospital. The Hindustan Times says 42 years after anti-Sikh riots, Sajjan Kumar dies serving life term. And finally, a story in the Tribune says that Gandhi's 688 handwritten notes to freedom fighter Anand Dhingorani has fetched a record 16.2 crores in action. And with that, it's back to you, Pramod.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to say...
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निजाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसा फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राबतों का हवाला देते हुए मस्कूरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नजर के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी

आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां जेईई मेन और नीट या यूजीसी नेट जैसे इम्तिहान में बैठने वाले उम्मीदवार उबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराजात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एनटी ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नजरसानी शुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदार इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाजों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नजदीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेजी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नजदीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 एहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सिटलाई साजोसामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के एहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जीली हिमालयी मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। केरलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुताल्लिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नजदीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टरडम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों

0: की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी विशेष सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के मुआहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, ये खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्जा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन माशी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्सल्फीन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हो रहे हैं और यह समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का। तो लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, जब किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो जाती है तो दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ उसके सामने फीकी लगने लगती है। दिल बस यही चाहता है कि वक्त वहीं पर ठहर जाए और हम बस उसे देखते ही रहें। इसी शिद्दत और चाहत को बयां करता हुआ ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म कभी कभी से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत है और धुन है खयाम की। तुम्हें देखना और देखते ही रहना, बस यही एक हसरत है इस दीवाने दिल की।

नज़ारे हम क्या देखें। सचमुच जब प्यार का रंग चढ़ता है तो पूरी दुनिया हसीन लगने लगती है। और दोस्तों, मोहब्बत जब एक कदम और आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ आंखों तक ही नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक खुल्लम खुल्ला इकरार बन जाती है। फिर चाहे ज़माना कुछ भी कहे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क कर बस यही कहता है कि हाँ, मुझे प्यार हो गया है। और इसी प्यार के इसी बेबाक और चुलबुले अंदाज को पर्दे पर उतारा था महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने, और इसे अपनी जादुई आवाज़ों से सजाया एक बार फिर किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी साहब का जो है संगीत और राजेश आनंद बख्शी साहब के बोल और राजेश रोशन का संगीत। चलिए सुनिए फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत।

मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और धुन राजेश रोशन की थी। अगले गीत से पहले ये संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, अब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया बदलते हैं और रुख करते हैं

बॉलीवुड के एवरग्रीन और सबसे डैपर हीरो देवानंद साहब की तरफ। साल 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जॉनी मेरा नाम, खिड़की पर खड़ी हेमा मालिनी और नीचे गिटार थामे देव साहब, जो सिर्फ पल भर के प्यार की गुजारिश कर रहे हैं।

श्रोताओं, पल भर का प्यार भी कितना मुकम्मल होता है ना, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब दिल उदास होता है, और उस उदासी को शब्दों में ढालने का हुनर आनंद बख्शी साहब और आर डी बर्मन की जोड़ी के पास था। साल 1972 की एक कल्ट क्लासिक फिल्म अमर प्रेम, नदी में तैरती नाव, हाथों में सितार लिए राजेश खन्ना और बैकग्राउंड में किशोर दा की वो दर्द भरी आवाज़ जो रूह को छू जाती है। दिल के जज्बातों को बयां करता ये बेमिसाल गाना।

0: चंदन का एहसास।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, चिंगारी जब सुलगती है तो संगीत का ऐसा ही शाहकार पैदा होता है। आज के इस सुरीले सफर के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं और इस आखिरी मोड़ पर हम बात करेंगे यकीन की, क्योंकि मोहब्बत बिना यकीन के अधूरी है। साल 1969 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म यकीन, जिसमें धर्मेंद्र साहब का दमदार अंदाज था, मोहम्मद रफ़ी साहब की रूहानी आवाज़ और शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत। जब रफ़ी साहब गाते हैं तो दिल को सच में यकीन हो जाता है।

0: इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मरकूब हुसैन का।
2: अमरोहा में जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभागवार जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा,
3: मासिक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के संबंध में यहां पर जो कुछ बताया है वो संतोषजनक है और दिन पर दिन कार्य प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, कप्तान साहब के नेतृत्व में यहां शांति व्यवस्था अच्छी प्रकार से चल रही है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से हमारे अधिकारी सब कार्य में लगे हुए।
2: उन्होंने कहा कि अलंकार योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ उनके परिवारजनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा कलेक्ट्रेट में जबकि पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर गौड़ ने कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है, तभी हमारा देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकेगा और आगे बढ़कर विकसित भारत बन सकेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के उपरांत सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों को राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के विस्तार के अंतर्गत अमरोहा के मंगरौला से हरिद्वार तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण की राह अब आसान हो गई है। इसके दायरे में आने वाले अमरोहा के किसानों की सर्किल रेट बढ़ाने की मांग मान ली गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण और हरिद्वार तक इसके विस्तार को गति देने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन ने जमीनों के नए सर्किल रेट निर्धारित कर दिए हैं। यह एक्सप्रेसवे जिले के 52 गांवों से होकर गुजरेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि इन गांवों के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मुआवजे की मांग को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों में सर्किल रेट में सर्वाधिक 48% तक की वृद्धि की गई है।
4: जो सर्किल रेट रिवाइज की गई है इसका सीधा सीधा लाभ 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को पहुंचेगा। इसमें जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं वो ये कि स्टैंप एक्ट का इसमें पालन हो, सुसंगत जीओएस का पालन हो और इसके अलावा एक

0: गांव के पास अगर दूसरा गांव लगता है, उनमें जो सर्कुलेट में विषमता है उसको पाटा जाए।
1: इस अहम फैसले से न सिर्फ किसानों को उनकी जमीन का बाजार के अनुरूप उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली अड़चने भी दूर होंगी। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में 12 अगस्त को पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने की। सम्मेलन में VBG राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और गाँव में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि VBG राम जी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा पात्र श्रमिकों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 10 अगस्त को अमरोहा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिव्यांगजन विभाग, सेवायोजन कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन विकास भवन में किया गया। मेले में कुल 8 कंपनियों द्वारा 89 उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 56 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर वर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में कुंभ मेले की तर्ज पर पेंटून पुल की संभावनाओं को लेकर DM अमरोहा डॉक्टर नितिन गौड़ और DM हापुड़ कविता मीणा ने तकनीकी टीम के साथ 17 अगस्त को तिगरी में मंथन किया।
2: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: गौतम बुद्ध नगर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने पौधारोपण करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं हरा भरा पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह आजादी हमें असंख्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन महान वीरों के बलिदान को स्मरण करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने झंडा फहराकर जिला मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने व बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर लोक निर्माण राज्य व प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए सभी विभाग तैयारियों के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विशेष रूप से तीनों प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इंडिया बायो एनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। एक्सपो में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने हिस्सा लिया। एक्सपो में देश विदेश से आए प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि CBG इंडस्ट्री में किसानों को समृद्ध बनाने की बहुत ताकत है।
4: इस सेक्टर में कितनी ताकत है हमारे किसानों को समृद्ध बनाने की, इसमें कितनी ताकत है हमारे गोपालकों को, पशुपालकों को समृद्ध बनाने की। खेती करने वाले किसान को तो समृद्ध बनाना ही है, उसका कचरा जो निकल जा रहा है उस कचरे का को कंचन बनाते हुए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोल्ड बनाते हुए, हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और किसान की आमदनी को तो हम बेहतर बनाएंगे, साथ में एनवायरमेंट का भी फायदा होगा, साथ में हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उनको नौकरी का अवसर मिलेगा।
3: वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है और यहां सबसे अधिक कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है। इस अपशिष्ट को नवाचार के माध्यम से ऊर्जा में बदला जा सकता है।
5: उत्तर प्रदेश के पास ये अकूत संसाधन जिनका सदुपयोग करके हम कैसे ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें, बायो एनर्जी और आपके इस टेक एक्सपो के माध्यम से अभी तक हमारे पास समस्या

0: पराली जलाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सबके आगमन ने हमें उसके उपयोग की संभावनाओं को खड़ा कर दिया है।
1: सीबीएसई नॉर्थ जोन वन लॉन टेनिस एवं शूटिंग बालिका वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी सहित 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
2: फिट इंडिया मूवमेंट का भी आह्वान कर देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास आधार करें तो देश पदक जीत रहा, खेलों में आगे बढ़ रहा, युवाओं को खेल के प्रति जुड़ाव हो रहा। और उसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान किया, बड़ा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी प्रतिभा को तलाशने और तराशने का काम बहुत तेजी के साथ देश में प्रारंभ हो।
1: उत्तर प्रदेश की सृजनशील प्रतिभा नवाचारकर्ताओं, समाज सेवियों एवं परिवर्तन के वाहकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से नमस्कार फाउंडेशन द्वारा ग्रेटर नोएडा में नमस्कार उत्तर प्रदेश राज्य सृजनकर्ता सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा, नवाचार और युवा शक्ति का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं की सृजनात्मक क्षमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं योगेश कुमारी और शालू सक्सेना के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। तो पेश है कार्यक्रम का ये पहला रुहेलखंडी लोकगीत योगेश कुमारी की आवाज़ में।

अभी आपने सुना योगेश कुमारी की आवाज़ में ये रुहेलखंडी लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए अब सुनिए एक और रुहेलखंडी लोकगीत शालू सक्सेना की आवाज़ में।

अभी आपने सुना शालू सक्सेना की आवाज़ में ये रोहिलखंड लोकगीत। लोकगीतों का एक कार्यक्रम धरती गाती है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं योगेश कुमारी और शालू सक्सेना के गाए रोहिलखंडी लोकगीत। तो लीजिए पेश है योगेश कुमारी की आवाज़ में ये रोहिलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना शालू सक्सेना की आवाज में ये लोकगीत। क्षमा कीजिएगा, योगेश कुमारी की आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे आवाज दी है शालू सक्सेना ने।

अभी जो लोकगीत आप सुन रहे थे, यह आपने सुना शालू सक्सेना की आवाज़ में, और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं योगेश कुमारी और शालू सक्सेना के गाए रोहेलखंडी लोकगीत। तो लीजिए, आप सुनिए योगेश कुमारी की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

योगेश कुमारी के स्वर में भी आपने सुना ये रोहिलखंडी लोकगीत। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 10:30 पर जो हमारा कार्यक्रम रहेगा जागरूक श्रोता, ये एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आज श्रोताओं से बातचीत का हमारा विषय होगा अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता। अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता, इस विषय पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके विचार जानेंगे। तो हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वो हमें फ़ोन कर सकते हैं आज प्रातः 10:30 से 11 के मध्य। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9457078288 और 01341230105 पर भी आप हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। समय याद रखिएगा आज प्रातः 10:30 से 11 के मध्य। और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। तो लीजिए प्रस्तुत है एक और गीत, एक और रोहिलखंडी लोकगीत योगेश कुमारी की आवाज़ में।

0: योगेश कुमारी के गाए इस रोहेलखंडी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 10 बज रहे हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत तुम्हारे का। तो नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और अब इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथी।
1: मैं हूं लोकेंद्र। तो सभी श्रोताओं को हमारा
0: प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो सिंपली वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सबसे ऊपर अपनी फरमाइश, अपना नाम और पता लिख करके भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं,
1: 9457078288। इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजिए और आपकी फरमाइशों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
0: तो लोकेंद्र जी, अभी जो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी से। नितिन मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर का लिखा गीत है और संगीत है राजेश रोशन का। क्योंकि आज वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के लिए दिवस है
1: जी,
0: है ना। तो सभी जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। और जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है, वृद्धजनों से संबंधित है, उनके आत्मसम्मान से संबंधित है। तो ये गीत हम आपको सुनवाएंगे और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद जो हमारे श्रोता हैं, जिनके मैसेज हमारे पास आए हैं, वो हैं
1: फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से आप हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी, संजू पवन और योगेंद्र नायक। आप हैं करणवीर हाउस बटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह, मनजीत सिंह जोड़ा, करणवीर सिंह, दपिंदर, कुलदीप, सिंपू और अभिजीत। इनके साथ ये और मैसेज हमें लिख भेजे हैं। आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू और इनके दोस्त। आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखकर भेजा है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। और राजवीर, आपके हाथ में कुछ खत हैं इसी गीत के
0: जी,
1: लिए?
0: जी हाँ लोकेंद्र जी, मेरे पास कुछ खत हैं और मैं उन खतों को पढ़ लेता हूँ। ये खत हमें मिला है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, ठनक्ष और आरो साहू की ओर से। और ये फरमाइश आई है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की ओर से। खुर्दी रोड मानपुर से फरमाइश कर रहे हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। और अगला पत्र हमारे पास आया छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा।

0: दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर के साथ साथ ही अगला मैसेज हमारे पास, अगला पत्र हमें मिला है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की ओर से।
1: एक दो पत्र मेरे हाथ में है
0: जी,
1: शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, आराफा चौधरी, आदीब चौधरी और कादिर चौधरी इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास पत्र भेजते हैं। जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा और ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
0: और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव और पोस्ट राहुल नंगली से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

जैसी करनी वैसी भरनी। इस फिल्म में भी आपने सुना नितिन मुकेश को। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। अगले गीत की फरमाइश पढ़ने से पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें यहाँ पर कि आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 10:30 पर जो आज हमारा फोन इन कार्यक्रम रहेगा, हेलो जागरूक श्रोता, इस कार्यक्रम में हमारा आज श्रोताओं से बातचीत का विषय रहेगा
2: अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता। तो श्रोताओं, इस विषय पर आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, जो भी आपके मन में है अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के, उस संदर्भ में आप अपनी बातें रख सकते हैं। और उसको रखने के लिए हमारा जो फोन नंबर है वो है
2: 9457078288।
1: और लोकेंद्र, एक और नंबर है हमारे पास जो हमारा लैंडलाइन का नंबर है वो है 01341 230105। तो हमारे जो भी श्रोता साथी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम

0: तो इन दोनों नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं आज प्रातः 10:30 से 11 बजे के मध्य में। और अब कार्यक्रम की अगली फरमाइश का वक्त है। जो गीत हमने लिया है फिल्म
1: हम 5 से, और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार। और गीत किसने लिखा है राजवीर?
0: आनंद बख्शी का गीत है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और
1: पसंद हमारे श्रोताओं की
0: जी
1: है।
0: हाँ, हमारे तो बहुत सारे श्रोताओं के मैसेज इस समय जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो जरा पढ़ना शुरू कीजिएगा।
1: बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन से हमें लिखा है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत,
0: चेतन नाहटा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगला एक पत्र भी यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। ये पत्र हमारे पास आया है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से, और बहुत बड़ा पत्र है, बहुत सारे इसमें नाम है लोकेन जी।
1: चलो कोई नहीं, आप पढ़िए, आगे मैं पढ़ता।
0: तो ये है विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेगापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर,
1: कपूर। और ये है रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश मलिक, सतीश, राकेशपुरी, विनोदपुरी और पाली डीसी और अरुणपुरी,
0: नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बॉडीपुरी, सुनीलपुरी, वीकेपुरी, आरएसपुरी और गुंजन कपूर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और अगला पत्र हमारे पास आया कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले हमारे श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। और इसी के साथ साथ इसी खत में एक और एड्रेस है, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से फरमाइश कर रहे हैं
1: राय, रोशनी राय और
0: प्रांजल राय।
1: उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी और साथ में हैं बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश
0: जी हाँ। और इसी गीत को सुनने ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। और ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, गीता रानी वर्मा, अनीता वर्मा, अमित वर्मा, नैना वर्मा,
1: मेघा सुरेंद्र और
0: वीरेंद्र वर्मा की ओर से।
1: सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और
0: सोनम वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और अगला मैसेज हमारे पास आया है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा की ओर से।
1: साथ में ये गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से आप हैं,
0: स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह
1: और साथ में हैं इनके और सारथी जिनके नाम हम पढ़ रहे हैं, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और शुभदीप सिंह
0: जी। और एक मैसेज और हमें ये मिला है, ये मिला है गांव नजीमपुर नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, फरमाइश कर रहे हैं योगेश कुमार और उमेश कुमारी।
1: साथ में मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और साथ में है
0: आकांक्षा मलिक। और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम नंगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी,
1: लालू, नमन, केजल, छोटी शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम देवी और इनके परिवार के सभी लोग।
0: साथ में है देवा भी,
1: बिल्कुल जी। और जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और हमजा सिद्दीकी इसी गीत को सुनने के लिए हम तक व्हाट्सएप मैसेज से अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं
0: जी। और एक पत्र भी है मेरे पास लोकेंद्र जी, और पत्र आया है हमारे पास दतरंगी से भागवत वर्मा का, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी का,
1: दिनेश वर्मा का, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू का
0: और मालवी सिंगापुर से सालिक पुजारी का। तो लीजिए पेश आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम 5 फिल्म का गीत, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की,
1: और गीत के लिए शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम पांच, इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार को, आनंद बख्शी की शब्द रचना थी और संगीत लक्ष्मीकांत,
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।
0: और अब जो गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं लोकेन जी, वो कौन सी फिल्म का गीत है?
1: फिल्म है निकाह, और इस गीत के लिए शब्द रचना हसन कमाल की है और संगीतबद्ध किया है रवि ने, और
0: जो आवाज़ है वो है सलमा आगा की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं, ये पत्र हमारे पास आया है, गांव गधा रोना, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से, मदनगिरी, विमलागिरी, बलराम, भारत, सोनिया, मधु, रमन और दिव्यगिरी की ओर से।
1: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना और दानिश आसिफ शेख
0: ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगला पत्र हमें मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा।
1: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से
0: शाहजी बोखड़े, नंदा
1: बोडखे,
0: शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाड़े ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये फरमाइश अगली हमारे पास आई है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं
1: नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम
0: अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत।
1: और ये है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से
0: सोपान तायडे, विजया तायडे, जीगांव विदर्भ से फरमाइश कर रहे हैं
1: निजामुद्दीन और इनके परिवार के सभी लोग। और ये फरमाइश कहाँ से आई है?
0: ये मजनू का टीला से ये मैसेज हमारे पास आया, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से भी इसी
1: गीत के लिए फरमाइश हम तक लिख कर भेजी है। गांव पांडर कवड़ा से आप हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, ये बार बार मैसेज हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि देखिए आपका, आपका शामिल हो जाता है तो और लोगों को भी मौका दीजिएगा।
0: और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश की है अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर।
1: और ये बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत और अर्जुन गवाणकर
0: जी। और ये पत्र भी एक मेरे पास है यहाँ पर, ये पत्र हमें मिला है कंवर कॉलोनी बड़वाह से, फरमाइश कर रहे हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली।
1: कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्य और इनके परिवार के सभी लोग मैसेज में अपना नाम भी लिख कर भेजते हैं। साथ ही हमारे पास ये जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयशी वर्मा, रमेशन वर्मा, शेख भाई मूसा जान
0: जी।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज हम तक लिख कर भेजा है, आप हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद और इनके परिवार के सभी लोग।

0: और ये अगला पत्र जो हमारे पास है ये आया है रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की ओर से।
1: गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके साथ के सभी लोग।
0: तो लीजिए, पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म निकाह का ये गीत। आवाज़ है सलमा आगा की।

0: निकाह। इस फिल्म में भी आपने सुना सलमा आगा को, हसन कमाल की शब्द रचना और रवि के संगीत में। और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का, और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म चलते चलते से।
1: गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, और गीत के लिए
0: शब्द रचना अमित खन्ना की है, और संगीत है
1: बप्पी
0: लहरी का। और
1: पसंद किया है
0: आप सभी ने।
1: आप हैं गनगोला दातागंज बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम और
0: शहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान। और आप भी के साथ ही अगला मैसेज आया है ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक की ओर से।
1: और ये नाज पैलेस
0: अजमेर शरीफ से हैं।
1: सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहान हाशमी और मोहम्मद आलम
0: हाशमी जी। और अगला मैसेज हमारे पास श्रोताओं आया हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलोरा टेकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की ओर से।
1: और ये पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से एम ताहिर और इदरीश हिलाल जैन और इनके परिवार के सभी लोगों ने हमें ये मैसेज लिख कर भेजा है। आप हैं MLB रोड ग्वालियर से
0: सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें

0: भेजा है, आप हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से,
1: भारत
0: और
1: भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति
0: संस्कृति
1: पौरिश
0: पौरुष,
1: और
0: और साथ में
1: रामगढ़
0: राम,
1: कैंट से
0: हाँ, महेंद्र मोदी और
1: कुलदीप
0: कुलदीप
1: कवाल।
0: का। और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें लिखकर भेजा है वडिंग,
1: वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा,
0: और साथ में गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा
1: शाहदरा
0: दिल्ली,
1: से फरमाइश की है,
0: तुलसी
1: जहाँ दिल्ली
0: मस्कीन,
1: से।
0: वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन,
1: मेगा मस्कीन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है और चंडीगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। तो अब ये एक और मैसेज यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि समय भी अब बहुत ज़्यादा नहीं है लोकेन जी। तो ये मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य,
0: लक्ष्य,
1: सोनी,
0: सोनी,
1: मोहिनी, ऋतिक और
0: मोहिनी,
1: बलवीर सिंह की ओर से। तो
0: बिल्कुल
1: लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत
0: फिल्म
1: फिल्म
0: चलते चलते से।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। और आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत का हमारा विषय है अंतरिक्ष विज्ञान में मानव की उपयोगिता। तो सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी।
1: बिल्कुल, हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अपने संपर्क नंबर बता देते हैं जिससे हमारे श्रोता व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं।
0: और व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना है इस कार्यक्रम में, हमें कॉल करनी है हमारे श्रोताओं को। फोन इन कार्यक्रम है, तो आप जो भी श्रोता साथी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ और हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे फोन नंबर है
1: 9457078288 और लैंडलाइन नंबर आप बता दीजिए

0: 3 4 1 2 3 0 1 0 5। आप इन दोनों नंबर्स पर अब से लेकर के और 11 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आपसे 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को आ रहा है हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया था। क्यों लोकेन जी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने राजवीर जी। और देखिए, इस बार इसरो की थीम भी बड़ी कमाल की
0: जी
1: है,
0: हाँ,
1: टुवर्ड्स विकसित भारत।
0: विकसित भारत।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंतरिक्ष विज्ञान का जश्न हम मना रहे हैं, वो सिर्फ श्रोताओं चांद तारों तक ही सीमित नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, वो हर पल आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है।
1: सुबह उठकर जैसे हम अपने मोबाइल पर मौसम का हाल देखते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऑफिस जाने के लिए जीपीएस
0: जीपीएस का
1: ऑन।
0: इस्तेमाल हम करते हैं, वो सब जो है अंतरिक्ष विज्ञान की बदौलत है। जो
1: बिल्कुल
0: सैटेलाइट्स हमारे अंतरिक्ष में लगे हुए हैं वही हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमें सभी घड़ियों में एक जैसा टाइम दिखाई दे रहा है। जीपीएस सिस्टम हो रहा है, फ़ोन पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है, फिटनेस ट्रैकर हैं, इसके अलावा जो विमान, समुद्री जहाज, जो भी चल रहे हैं, जो नेविगेशन सिस्टम है, सब उन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत जो है काम करता है।
1: हमारे जो किसान भाई हैं,
0: हाँ
1: वो बिल्कुल बहुत
0: जो
1: सारी चीजें जो हैं वो उसी से
0: हाँ हाँ
1: देखकर पता
0: लोकेन
1: कर
0: जी,
1: सकते
0: देखिएगा जो मौसम का हाल
1: हैं।
0: हम देखते हैं अपने फ़ोन में देख लेते हैं, या फिर जो हमें बता रहे हैं कहीं से भी, तो वो सब चीज़ें क्या है कि उसी सैटेलाइट की बदौलत, जो कि अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स हैं, उन्हीं की बदौलत हमें बिल्कुल सटीक पता चलता है कब बाढ़ आने वाली है, कब बारिश आने वाली है, कब तूफान आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हमें
1: बिल्कुल, और
0: पता
1: मौसम
0: चलती हैं।
1: विभाग जो है इन्हीं के माध्यम से भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी करके अंतरिक्ष विज्ञान जो है हर साल लाखों लोगों की जीवन, लाखों लोगों की जान भी बचा रहा है। और सच कहें तो ये विज्ञान हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बनता जा रहा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। और देखिएगा लोकेन जी, हम अपनी बात तो करते ही रहेंगे, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय लाइन पर हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक कॉल अभी हमारे पास आ रही है, रिसीव कीजिएगा। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जागरूक श्रोता
1: हेलो, जागरूक श्रोता नमस्कार
0: जी, नमस्कार
1: जी।
0: जी।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से जी।
0: शिमला से राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, और आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
0: कैसा मौसम
1: और
0: है
1: बहुत
0: आपके शिमला में इस समय?
1: शिमला में मौसम अभी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूकर पंखी की तरह।
0: अच्छा, आगे का क्या पूर्वानुमान है कि बारिश आने वाली है, कि हवा तेज चलने वाली है, क्या पूर्वानुमान है?
1: जी, पूर्वानुमान ये है कि बारिश आने वाली है, कभी भी आ सकती है,
0: जी,
1: और तूफान का तो नहीं है, बारिश का संभावना पूरा है।
0: बारिश की आशंका, ये कैसे पता लगा आपको?
1: क्योंकि हम न्यूज़ सुनते हैं समय समय पे कि आज बारिश हो सकती है, और हमारे इधर बादल भी छाए हुए हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, न्यूज़ आप सुनते हैं वहाँ से आपको पता चलता है, न्यूज़ वालों को कहाँ से पता चलता है?
1: न्यूज़ वाले को पता ये चलता है, क्योंकि अब जैसे कि अब साइंटिस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली, क्योंकि अब न्यूज के बजाय अब हम अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आपने
1: बिल्कुल,
0: ठीक कहा, बिल्कुल
1: वही
0: ठीक कहा,
1: वही जो आप बात कर रहे हैं वहीं तक हम आपको ले जाना चाह रहे थे, और आपने
0: बताया है। लेकिन आज का हमारा विषय क्या है, जिस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं, जानते हैं आप?
1: जी आज का विषय है अंतरिक्ष में मानव मानव और ये है मानव अंतरिक्ष
0: जीवन
1: विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता।
0: उपयोगिता
1: मानव
0: है ना। तो हम वही बताने वाले थे, ये जो समय हम देखते हैं बिल्कुल राइट टाइम, ये जो हमें पता चलता है मौसम का पूर्वानुमान, ये जो पता चलता है कब बारिश आएगी, कब हवा आएगी, इन सब में आप सैटेलाइट्स को, अंतरिक्ष विज्ञान को क्या महत्व देना चाहते हैं, क्या समझते हैं आप इसे?
1: जी। तो मैं ये समझता हूँ कि सैटेलाइट जो है, ये जो चीजें हैं वैज्ञानिकों ने बनाई है, बहुत अच्छी चीज है। इससे हम पूरा पता लगा सकते हैं कि हमारे हवा की तापमान कितना है, कितने कितने न्यूनतम तापमान है, और
0: जी
1: हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे तापमान, जैसे कि हिमाचल में माइनस में तापमान आता है, कितनी डिग्री तक तापमान रहेगा, और कितनी डिग्री तक जो है आपके क्षेत्र में जो है गर्मी का तापमान रहेगा। तो इससे जो है पूरा अनुमान
0: जी
1: लगा सकते हैं कि
0: अगर हम
1: ये
0: आपसे
1: पता
0: सिर्फ
1: करना है।
0: 2 शब्दों में पूछें कि मानव के जीवन में इस अंतरिक्ष विज्ञान की क्या उपयोगिता है, कितना महत्वपूर्ण है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मानव के जीवन में इसकी मतलब ये है कि मानव को जो है उनका जीवन जो आसान हो जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब किसान जो है फसल लगाते थे, पहले

0: क्या बोलते हैं, किसानों को पता नहीं होता कि कब हमने फसल लगानी है और कब जो है हमें तैयारी करने की। अब जो है मानव पहले जागरूक हो जाता कि आज जो है फसल लगाने का समय अभी नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का अनुमान
1: चलिए
0: नहीं
1: ठीक है,
0: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया और अपने तमाम विचार हमारे साथ में साझा किया, और बहुत अच्छी बात हमारे इन श्रोताओं ने काफ़ी हद तक हमें क्लियर कर दिया। अभी एक और श्रोता है जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
2: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार जी।
3: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश खरे बोल रहा हूँ।
1: त्रिपुरा से?
3: जी जी बिल्कुल।
1: क्या नाम बताया आपने?
3: अविनाश खरे।
1: अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से आज आप हमारे बीच में, तो आप जो हमारा रेडियो प्रोग्राम है वो मोबाइल ऐप पे सुन रहे होंगे निश्चित तौर पर।
3: जी जी बिल्कुल, और ये भी देखिए
1: हाँ
3: विज्ञान का ही खोज है, और इनके लिए तो हम देखिए मानव जीवन में ये विज्ञान का जो और एक मतलब उदाहरण के तौर पर हम इसको भी ले सकते हैं, और
1: जी
3: जरिए देखिए हम इसको सुन सकते हैं।
1: जी हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की। तो आज जो प्रोग्राम आप हमारा सुन पा रहे हैं वो भी इसी अंतरिक्ष विज्ञान की देन है।
3: जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन,
2: हाँ ये भी देखिए अंतरिक्ष विज्ञान की ही
1: जी
2: देन
1: हाँ
2: है।
1: बिल्कुल। अब आप सोचिए ना कि अगर अब इस चीज़ को अगर हम अपने जीवन से हटा दें, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि जितने भी सैटेलाइट्स हमारे अंतरिक्ष में लगे हैं अगर हम उनको उतार करके ले आएं या उनको कुछ देर के लिए कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर दें तब क्या होगा?
3: तो पूरी तरह से मतलब कि हम सबके जीवन मतलब एक जगह पर रुक जाएगा ऐसा बिल्कुल,
1: हाँ है ना। देखिएगा अब इनके बिना जो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं
3: जी
1: है।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जो हमारे इतने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये आविष्कार किए हैं और अपना इतना योगदान इस चीज़ में दिया है, तो इसी के लिए हम जो है 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी जो है मनाते हैं, ताकि उन लोगों के जो कार्य उन्होंने किया है उसको सलामी देने के लिए, है ना। तो आप हमारे उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में आज दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे?
3: पहले तो प्रणाम करना चाहते हैं क्योंकि इतने बेहतरीन हम सबके लिए मतलब हम सबके जीवन में देखिए बहुत सहायता ला दी है इन विज्ञानिकों के, तो हम सभी उनको शुक्र अदा करना चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म हम सबको देने के लिए हम सबके जीवन शैली को ही उन्होंने बदल के रख दिया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा जो जीवन है आज विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन सब जो वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया आपका।
1: जुड़े रहेगा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और जब भी वक्त मिले तब भी आप अपना व्हाट्सएप मैसेज या फिर फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छा लगा त्रिपुरा से आपसे बात हुई, और एक और हमारे साथी हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

0: बादल छाए हुए हैं और लगभग पानी इस साल पानी भरपूर है और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं।
0: जी सर, मैं डेली कंटिन्यू आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ और आज तो आज का कार्यक्रम जो स्पेशल होता है हम लोगों जागरूक श्रोताओं के लिए,
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: वो तो मैं कभी भी नहीं भूलता सर, हमेशा सुनता हूँ।
1: तो देखिए आज का
0: क्या
1: विषय जो
0: विषय?
1: है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं, तो आज हमने विषय चुना है अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता। तो इस विषय में आप क्या अपने विचार श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं?
0: जी सर, अंतरिक्ष की बात आती है तो सबसे पहले सर हम लोगों ख्यालों में खो जाते हैं जो दादी नानी की कहानियों में सुना करते थे, और जैसे हमारा विज्ञान तरक्की कर रहा है, इसरो या फिर नासा जब अंतरिक्ष में मानव पहुंचे
1: जी
0: तो हमें पता चला ये अंतरिक्ष जो काफी विशाल है और इसमें काफी सारे ऐसे खगोलीय पिंड है जिसे हमारे शास्त्रों में भी था, और आज इसमें सभी में खोज करके हमारे वैज्ञानिक बहुत उपलब्धि कर रहे हैं। भारत ने भी अपना चंद्रयान मिशन चंद्रमा में लॉन्च किया
1: जी
0: और इससे हमारे देशवासियों को काफी गौरव महसूस हुआ,
1: जी जी बिल्कुल।
0: और नासा और इसरो भी अभी तक सभी एजेंसियां ये मतलब खोजने में है कि अन्य और ऐसा कोई प्लेनेट है जहां मानव सभ्यता का जीवन विकसित हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात कही है। अब इसरो की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे बताया था कि इस बार इसरो की जो थीम है टूवर्ड्स विकसित भारत, हम देखिए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब जो अंतरिक्ष विज्ञान की जो खोज हैं उन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने में।
0: जी सर, जी सही, जिस प्रकार से देखें कि हम लोग हमारी यह बहन बेटियां जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, खास करके युवा जो जेंजी लोग हैं वो काफी रुचि दे रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान में। एक
1: बिल्कुल
0: जमाना था जब अमेरिका पर ही हम निर्भर हुआ करते थे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हर चीज हमें मौसम की वह जानकारी हो या फिर किसी भी आने वाली चेतावनी की जानकारी हो तो ये हम बाहर देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज भारत
1: जी
0: के पास ऐसे ऐसे सेटेलाइट और ऐसे ऐसे रॉकेट है जो अन्य देशों के सैटेलाइट स्वयं तो भारत स्पोर्ट करता है अंतरिक्ष ले जाने के लिए। इसमें हमारे भारत का गौरव और बहुत बुलंदियों पर है सर।
1: बिल्कुल।
2: जी हाँ,
1: देखिए
2: बहुत अच्छी बात आपने बताई और आपसे बातचीत करके हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी से आप आए हैं, आपने पूरी तरह से इस बारे में जानकारी हासिल की हुई है। बहुत बहुत
0: सर
2: धन्यवाद। हाँ
0: मैं
2: जी कहिए।
0: जी एक सर एक बात और,
1: हाँ बोलिए।
0: लोग आजकल मोबाइल पे उल्टी सीधी रीले देखते हैं, उससे अच्छा तो ऐसे रील देखे जहां हम कुछ सीख सके। मैं ये
2: हाँ
0: सारी
2: बहुत
0: बातें
2: सुंदर।
0: रील के माध्यम से ही जान पाया हूँ
2: जी
0: सर।
2: जी बहुत सुंदर बात आपने कह दी है। देखिएगा हम हमारे तमाम युवा तमाम वक्त जो है अपना रील्स स्क्रॉल करने में खर्च कर देते हैं, अगर उतना ही समय, इंटरनेट बहुत काम की चीज़ है, जैसी चीज़ आप इसमें देखना चाहेंगे वो आपके सामने आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है ना।
0: जी सर,
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जुड़े रहेगा आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ में और सुनते रहिएगा हमारे तमाम प्रोग्राम और कॉल श्रोता है हमारे जो इस समय फोन लाइन पर हैं। हेलो जागरूक
0: हेलो
2: श्रोता। हेलो जागरूक श्रोता,
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते। आप थोड़ा सा रेडियो सेट से अपना दूर हो जाइए या उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिएगा प्लीज़।
3: जी कर दिया।
2: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है ना। चलिए
3: जी
2: बहुत
3: बिल्कुल,
2: बहुत
3: मैं
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे अच्छा फायदा हुआ है विज्ञान का
2: जी,
3: कि जैसे कि हमें पहले से मानसून के बारे में पता चल जाता है,
2: जी हाँ
3: तो खेतों में जैसे कि स्प्रे का काम हुआ या खरपतवार निकालने का काम हुआ वो हम पहले से कर लेते हैं
2: जी
3: पानी
2: जी
3: के आने से पहले। एक तो ये फायदा हुआ
2: देखिए
3: हमें
2: बहुत आसान हुई है
3: और
2: जिंदगी। जी हाँ
3: बहुत ही बढ़िया आसान हुआ, और इतना आसान हुआ कि यूँ समझिए कि हमें पहले से किसी भी काम के लिए अलर्ट मिल जाता है।
2: देखिएगा कोई ये ना सोचे कि हम किसान हैं, हम अफसर हैं, हम ये हैं, हम नेता हैं, कुछ भी हैं, कोई नौकरी वाले, जो ये अंतरिक्ष विज्ञान है हर एक की जिंदगी में
1: हर
2: बहुत
1: व्यक्ति के
2: महत्वपूर्ण
1: जीवन
2: स्थान
1: से जुड़ा
2: रखता
1: हुआ
2: है ना।
1: है।
2: जैसे कि आपने
3: बिल्कुल
2: बताया कि
3: बिल्कुल,
2: किसानों को
3: और
2: बहुत लाभ मिल रहा है जी।
3: हाँ हर क्षेत्र में लाभ मिला है और मिलता रहेगा। हम तो
2: हाँ
3: अंतरिक्ष में हमारा मंगलयान स्थापित हो गया, अपना भारत का झंडा अंतरिक्ष में ले रहा है, इससे
2: अच्छा,
3: मतलब सबसे अच्छी बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है,
2: सही
3: और
2: बात है, गौरव की बात है हमारे लिए, सीना
3: गौरव
2: गर्व
3: की
2: से
3: बात है
2: चौड़ा हो
3: और हमें
2: जाता
3: गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और जब हम धरती से चांद को देखते हैं और हमारे वैज्ञानिक तो इतने कलाकार इतने होशियार निकले कि
2: है।
3: उन्होंने अंतरिक्ष यान पर ही मतलब अपना झंडा लहरा दिया, तो हम तो उन्हें सल्यूट।

0: करते हैं, सलाम करते हैं।
1: जी हाँ, बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम से आम इंसान की ज़िंदगी में जो अंतरिक्ष विज्ञान है वो किस तरह से उसको सहयोग कर रहा है।
0: जी जैसे कि आपको तो पहले तो मौसम के बारे में जानकारी मिल जाती है,
1: जी
0: इसके अलावा ऐसे कुछ आप प्राकृतिक आपदा आते हैं, भूकंप के बारे में जानकारी मिल जाती है, इसके अलावा कहीं बाढ़ आती है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, ऐसे मतलब तमाम छोटी छोटी बातों की जानकारी मतलब हमें अंतरिक्ष से मिल जाती
1: हाँ,
0: है।
1: और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता
0: जी
1: मालूम नहीं है, तो बहुत आसानी से आज जीपीएस के माध्यम से जो मार्ग खोजते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी अंतरिक्ष विज्ञान की ही देन है, उन सैटेलाइट्स
0: बिल्कुल,
1: की देन
0: अंतरिक्ष
1: है ना।
0: विज्ञान की देन है। और आपको जैसे बता देते वो जीपीएस लगाते हैं ना मोबाइल पे
1: जी
0: गाड़ियों में,
1: जी जी
0: तो वो आगे से मैं बताता कि सामने गड्ढा है, ब्रेकर है, आगे से दाएं
1: बिल्कुल
0: मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, जैसे कि सामने देख के कोई बता रहा है सामने हाथ पकड़ के ले जा रहा हूँ ऐसा लगता है।
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी वही हम कह रहे हैं कि जो है बहुत
0: जी
1: आसान जो है इसने हमें बनाया है अंतरिक्ष की दुनिया ने। तो प्रेम कुमार सिसोदिया जी, चलिए, आप काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर्स भी हैं, जागरूक श्रोता हैं, तो जागरूकता की बातें तो ज़रूर आप करेंगे ही। बहुत
2: शुक्रिया,
1: बहुत
2: आपने हमें
1: धन्यवाद आपका
2: कॉल
1: इस
2: किया।
1: कार्यक्रम में हमें कॉल करने के लिए। एक और श्रोता है हमारे लोकेंद्र जी जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
2: मैं लेता हूँ। हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी, हेलो,
2: बोलिए।
1: आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जागरूक श्रोता,
2: लगता है संपर्क
1: लाइन
2: इनसे
1: में कुछ इंटरप्शन है जिसकी वजह से इनसे जो हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने बताया था कि आज बातचीत का हमारा विषय है आपसे कि अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता, इस विषय पर विचार रखने के लिए हमारे को श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो जागरूक श्रोता,
2: हेलो।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए, थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए।
1: जागरूक
0: मैं
1: श्रोता।
0: तो रेडियो सेट से नहीं हूँ सर, मोबाइल ऐप्स पे सुन रहा हूँ।
2: अच्छा,
1: अच्छा
2: मोबाइल
1: अच्छा
2: ऐप से आप सुन रहे हैं, तो आपकी आवाज़ थोड़ा सा मिलने में असुविधा हो रही है,
1: जी,
2: तो
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर बढ़ापुर पुराने बस स्टैंड से, नगर पंचायत से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
1: बढ़ापुर जनपद बिजनौर से।
0: जी सर,
1: जी ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
0: मैं सर एक ट्यूटर के साथ में एक शॉपकीपर हूँ।
2: अच्छा,
1: तो सर
2: आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता, तो ताहिर
0: जी
2: जी
0: सर,
2: क्या आप उपयोगिता मानते हैं मानव जीवन में अंतरिक्ष विज्ञान की?
0: इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है सर। इसके लिए तकनीकी विकास के लिए क्षेत्र में ले लीजिए आप, या संसाधनों की खोज के बारे में ले लीजिए,
2: जी
0: जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान से हमें जैसे जीपीएस की, उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान और उन्नत चिकित्सा के उपकरणों जैसी तकनीकी विकास भी
1: जी हाँ।
0: हुआ है सर इससे।
1: अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि एक मशीन है एमआरआई की मशीन, जो कि आदमी का पूरा जो है अंदर से एक्सरे कर देती है कि अंदर क्या है, बॉडी में क्या बीमारी है, कैसी है। इसको आप कैसे जोड़ करके चलते हैं कि क्या इसका अंतरिक्ष विज्ञान से क्या ताल्लुक है?
0: बिल्कुल सर, तकनीकी जो मामला है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा ही ये निर्मित हुआ है मसला, और ये तो जगजाहिर है सर, कोई द्वारा जहाँ जिस चीज के फायदे होते हैं अनेक, कुछ उसकी हानि भी होती है, लेकिन इस्तेमाल तो वक्त के हिसाब से करना ही पड़ता है उस चीज को।
1: जी हाँ, देखिएगा ताहिर जी, हुआ क्या था कि अंतरिक्ष से जो आने वाली धुंधली तस्वीरों को साफ करने के लिए एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की गई थी।
2: और उसी तकनीक से
0: जी
2: आज
0: सर,
2: अस्पतालों की जो एमआरआई की मशीन है ना, वो
0: जी
2: इंसानी
0: सर,
2: शरीर के अंदर तक की तस्वीरें लेती है।
1: जी हाँ, देखिएगा वहाँ
0: जगह
1: से जो है एमआरआई की जो मशीन बनी वो किस तरह से, ये सीटी स्कैन एमआरआई की मशीन बनी है, तो अब वो आपको समझ आ गया होगा, यही हम जानना भी चाह रहे थे। इसके अलावा जो
0: आप
1: वायरलेस
0: जैसे
1: हेडफोन
0: समझाने वाला हो तो सर क्यों नहीं आएगा।
1: नहीं तो समझने वाला भी तो होना चाहिए। देखिएगा, वक्ता से बड़ा मैं समझता हूँ श्रोता। जब तक
0: बिल्कुल
1: श्रोता
0: ऐसा
1: सुनेंगे
0: जरूर
1: नहीं, जब तक श्रोता सुनेंगे नहीं, तो वक्ता के वक्तव्य का कोई मतलब
2: महत्व ही
1: रह
2: नहीं,
1: नहीं
2: महत्व
1: जाता
2: ही नहीं रहता।
1: है ना।
0: नहीं सर, कुछ ऐसे भी है जो इस वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा तो सर जैसे सूक्ष्म गुरु तक्षण जैसे प्रयोग करके कैंसर की दवाओं को नई सामग्री का स्वागत भी किया गया है सर। नहीं, आप नहीं मानते इस बात को,
2: नहीं
0: जो
2: नहीं
0: पृथ्वी
2: सही कह
0: पर
2: रहे हैं
0: संभव
2: आप,
0: नहीं था।
2: दोबारा से बताइए क्या कह रहे हैं आप।
1: मैं भी समझ नहीं पाया
0: मैं
1: हूँ।
0: सर ये कह रहा हूँ, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग करके कैंसर की दवाओं की नई सामग्री पर शोध करा गया है वैज्ञानिक
2: हाँ
0: अनुसंधान द्वारा, जो कि
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही बात है। हेलो,
0: और सर दूसरी बात, एक तैयारी और भी चल रही है मानवता का अस्तित्व के लिए, पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से मानव को निर्मित आपदाओं को जोखिम देखते हुए दूसरे ग्रहों पर भी बसने की सोच रहे हैं सर।
2: जी
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दूसरे ग्रहों पर भी मानव जीवन

0: की जो है खोज की जा रही है, क्या वहां पर जीवन संभव है क्या नहीं, और कहीं ना कहीं
1: ब्रह्मांड की समझ
0: सीधे
1: भी, सर
0: सीधे
1: ब्रह्मांड की समझ भी आ रही है लोगों को, पृथ्वी की उत्पत्ति में जलवायु परिवर्तन और ब्रह्मांड के रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, इसी का एक
0: जी
1: उदाहरण ये भी है।
0: जी हाँ बिल्कुल। देखिएगा बहुत सारे हमारे जो जीवन के अंदर बहुत महत्व है, अगर हम जिक्र करना शुरू करें तो सैकड़ों चीज़ें निकल करके ऐसी आ जाएंगी जहाँ पर हम अंतरिक्ष विज्ञान का
2: बिल्कुल सही है।
0: सीधे सीधे
2: हम तो
0: अपने
2: ये कहेंगे
0: जीवन
2: कि
0: में
2: राजवीर
0: उपयोग
2: जी
0: कर
2: की
0: रहे हैं।
2: जो मानव जीवन हमारा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान से ही जुड़ी हुई है।
0: हाँ अब देखिएगा, चलिए ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया और अपने विचारों से हमारे तमाम श्रोताओं को अवगत कराया। इसी के अंतर्गत क्या है कि लोकेन जी आपने देखा होगा कि अभी जब पीछे कोरोना काल आया था तो एक जो थर्मामीटर ऐसा इजाद किया गया था कि जो मानव को टच भी नहीं करना है और उसके नज़दीक जाते ही
2: हाँ
0: हो ना वो उसका
2: उसका
0: टेम्परेचर बताता
2: टेम्परेचर
0: था,
2: माप लेता
0: है
2: था।
0: ना।
2: बिल्कुल
0: तो इसमें भी जो है इस थर्मामीटर को बनाने में भी कहीं ना कहीं जो
2: तारों
0: है,
2: और ग्रहों का तापमान जो नापने की तकनीक है उसका इस्तेमाल करके इनको बनाया
0: हाँ
2: गया था।
0: बिल्कुल, इसमें भी इसी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो एक और श्रोता है जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनका फ़ोन रिसीव कीजिएगा। हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जी,
0: हेलो जागरूक श्रोता
3: हेलो,
0: जी,
2: हाँ आपको हमारी आवाज मिल रही है?
3: हाँ मिल रही है, आशी बोल रहा हूँ।
2: जी कौन बोल रहे हैं?
3: आशी वाली
0: आसिफ अली जी कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ जी
3: चलो
0: आपकी आवाज़ में कुछ इंटरप्शन है।
3: कार्ड से मिलाता हूँ दोबारा।
0: ठीक है, तो किसी कारण से जो है उनकी आवाज़ हमारे जो श्रोता हैं मिल नहीं पा रही है, और एक और श्रोता इस समय लाइन पर हैं। हेलो जागरूक श्रोता
3: हेलो जागरूक होता
0: जी। जी हेलो
3: जी, राजवीर जी और लोकेंद्र को मेरे नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
2: नमस्कार,
0: हमारी भी नमस्कार।
2: अपना परिचय तो दे दीजिए।
3: मैं ग्राम का दौड़ा जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी
2: मदन गिरी
0: जी
2: जी,
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाइए।
0: जी? हम भी बहुत अच्छे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हों। आज वैसे भी जो है वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो खास करके
3: जी,
0: वरिष्ठ लोगों के
3: आज हमारा दिन है
0: सम्मान
3: जी,
0: आज आपका दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
3: आज हमारा दिन है आज जी,
0: हाँ बिल्कुल, हम आपको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: हाँ तो मदन गिरी जी, आज प्रोग्राम आप सुन ही रहे होंगे निश्चित तौर पर, तो आज का जो विषय है हमारा उसके
3: जी।
0: बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए जी, अंतरिक्ष और मानव जीवन में आज जो इसके
0: उसका
3: लिए बहुत ही
0: यूज़।
3: कुछ कहा
2: हाँ
3: जा सकता है।
2: जी
3: 23 अगस्त को, पहली बात तो बताना चाहूंगा कि 23 अगस्त को हमारे अंतरिक्ष यान ने दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा पर झंडा
0: जी
3: गाड़ दिया था, तिरंगा लहरा दिया था।
2: जी
0: हाँ बिल्कुल
3: वो बड़ी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है
2: जी।
0: जी
3: और
0: और
3: आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो मोबाइल से बात कर रहा हूँ, ये सब अंतरिक्ष की देन है मानव जीवन को।
0: जी जी जी बिल्कुल
3: और हमारे जो है MIR जो होती है, शरीर की होती है, पूरी जांच होती है
0: जी
3: और मौसम का हाल सुनाई देता है, मानसून कितना आ रहा है, कितने दिनों तक रहेगा, ये सब जो है अंतरिक्ष की देन है।
0: जी जी बिल्कुल स्वीकार
3: और
0: करते हैं।
3: बाढ़ बाढ़ का भी जो है पूर्व अनुमान लगाया जाता है।
0: जी
3: और यहाँ तक की बात बताऊं मैं आपको कि कोशिश ये हो रही है कि भूकंप का भी जो है वो पूर्वानुमान लगाया जाए।
0: देखिएगा पूर्वानुमान आज भी भूकंप का लगाया जाता है लेकिन एकदम सटीक
3: आज
0: उसकी
3: लगाया
0: खबर
3: जा रहा है,
0: है ना
3: लेकिन
0: नहीं
3: और
0: मिलती है।
3: इससे भी ज्यादा लगाया जाए,
2: हाँ उस
3: ये
2: तरफ आगे बढ़
3: प्रयास हो
2: रहे हैं।
3: रहा है,
0: हाँ
3: प्रयास हो रहा है।
0: ठीक है, प्रयास तो लगातार
3: और
0: हमारे
3: मैं
0: जो वैज्ञानिक है करते ही रहते हैं और करते भी रहना चाहिए। जी हाँ कुछ कहने वाले थे आप
2: जी,
3: जी
2: बोल
3: मैं वैज्ञानिकों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, इसरो का, कि
0: जी
3: जो बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं और अगला कदम हमारा होगा कि हमारा जो है अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे।
0: जी देखिएगा
3: और
0: चंद्रमा
3: बहुत
0: पे
3: भी ज्यादा जो है
0: अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतर चुके हैं, वहां पर सब कुछ देखकर आ चुके हैं,
3: वो तो
0: लेकिन
3: हमारा वो तो उतर चुके हैं जी।
0: हाँ
3: हाँ जी
0: बस वहां पर जीवन की खोज जो का जो है कार्यक्रम चल रहा है, अगर वहां पर पानी और ऑक्सीजन जैसी चीजें वहां पर मिल जाती हैं पर्याप्त मात्रा में तो निश्चित तौर पर वहां पर
3: हाँ
0: भी
3: जी हाँ
0: जीवन संभव हो सकता है,
3: जी
0: और इन सब में अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत योगदान है। और कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, संदेश देना चाहेंगे आज इस खास विषय पर?
3: मैं संदेश यही है कि जो है हमें अपने जो है अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक है उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए
0: जी
3: और वो प्रयास कर रहे हैं, और हमें सरकार का भी धन्यवाद अदा करना चाहिए जो प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमें खबर प्राप्त हो अंतरिक्ष से।
0: जी
3: तो मैं सभी से यही संदेश देना चाहूंगा कि सब जो है उसमें अपना योगदान दें।
0: जी
2: चलिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ थोड़ा सा हम अपने कार्यक्रम के इस

0: टॉपिक से हट के आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से युवाओं को? लगता है इनसे
1: हेलो
0: कनेक्शन हमारा कट चुका है।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
2: नमस्कार जी, मैं नगीना से अनिल बोल रहा हूँ।
0: जी विनोचा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत देर से लाइन में लगा हुआ था, सरकार धक्का भी
1: स्वागत
2: लगे
1: करते
2: आपसे
1: हैं
2: आ
1: हम
2: गए।
1: आपका, अनिल विनोचा जी
2: देखिएगा,
1: स्वागत करते
0: आज
1: हैं।
0: आज भी आपको लाइन में लगना पड़ा, इस बात के लिए हमें कष्ट है, क्योंकि आज वैसे भी वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो हम वैसे भी वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, और आज
2: हाँ
0: वरिष्ठ को ही हमारी लाइन में लगना पड़ा, इस चीज़ के लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। तो कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप सब लोग ठीक होंगे उम्मीद करता
0: हाँ
2: हूँ।
0: जी बिल्कुल, हम ठीक हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आपको मालूम ही होगा।
1: अंतरिक्ष विज्ञान की मानव जीवन में उपयोगिता, हमारे
0: हाँ
1: अनिल विनोचा जी तो हमारे नियमित और बहुत ही जागरूक
0: बहुत
1: श्रोता हैं।
0: जागरूक होता है, और निश्चित तौर पर आज जो भी बातचीत करेंगे, जो भी कहेंगे, वो अच्छा ही कहेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं का आप इस अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में?
2: अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हमारे जीवन में अब तो बहुत ही उपयोगिता बढ़ गई है। हम जितने भी ये डिजिटल सर्विस हैं या नेट की हैं,
0: जी
2: हम जो बात कर रहे हैं, ये सब चीजें, मौसम की जानकारी,
0: जी
2: भूकंप वगैरह की जानकारी, बाढ़ की, कृषि
1: जी
2: के बारे में, ये सब चीजें हमें उससे उपलब्ध हो रही है। और भी बहुत सारी चीजें
0: और भी बहुत सारी
2: जो है,
0: चीजें
2: जैसे
0: हैं। देखिएगा,
2: चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है वो हम इसका लाभ ले रहे हैं। AI है और भी है, सब ये इसी अंतरिक्ष विज्ञान से ही हो रहा है, और आगे भी हम बढ़ेंगे। कोशिशें भी बहुत जारी है हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसमें और भी रिसर्च करने में लगे हुए हैं आगे तक जाने के लिए। गवर्नमेंट भी प्रयासरत है,
1: जी
2: बहुत ध्यान दिया जा रहा है इसमें,
1: हाँ जी। इसके
2: तो
1: साथ साथ
2: बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ गई है अंतरिक्ष विज्ञान की।
0: जी हाँ बिल्कुल बढ़ गई है, और आज अगर हम कल्पना करें कि अंतरिक्ष विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है, और एक
2: हाँ
0: समय
2: बिल्कुल
0: था
2: सही,
0: सब चला करता था, है ना। अब इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ही जानते नहीं होंगे, जो डिफेंस रडार हमारे काम करते हैं फौज के, तो वो भी इसी जो है अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर ही डिपेंड है। और जैसे कि कोई मिसाइल आने वाली है, उसको पहले से ट्रैक करना, उसको वहीं पर फिर नष्ट कर दिया जाता है, इन सब में जो है हमारे अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है।
2: हाँ ये जो सब चीजें जैसे रेडार है या रेडियो है या
0: जी
2: वायरलेस सिस्टम थे, ये सब उसी से, अब
0: कनेक्टेड
2: जैसे हमारा मोबाइल है वायरलेस, ये बहुत पहले हमारे यहाँ आ गया था, पब्लिक को तो अब दिया गया है,
0: है।
2: मतलब काफी साल पहले।
0: जी
2: तो
0: जी
2: जो रेडियो हमारा आविष्कार रहा है या रेडियो धर्मी तरंगे हैं, ये सब बेस यहीं से शुरू हुआ है उसमें
0: एग्जैक्टली
2: जी। तो ये वायरलेस सिस्टम जो हमारा मोबाइल है, तो बहुत पहले शासन प्रशासन यूज करते थे,
0: जी जी जी जी
2: जैसे हम जो सरकारी जीप होती है उनमें लगा रहता था,
1: जी जी
0: आप बिल्कुल
2: सब
0: सही कह रहे
2: चीजें
0: हैं।
2: उसी से आया है। और ये और बढ़ रहा है,
0: हाँ जी, धीरे धीरे उसका
2: अब
0: विस्तार,
2: पब्लिक को दिया गया है, मतलब ये पब्लिक की सुविधाएं पब्लिक आम पब्लिक तक पहुंचा दी गई है, और इसमें अनुसंधान होता रहेगा तो हमारा जीवन और अभी
0: सरल
2: और
0: होता
2: आसान
0: जाएगा।
2: बना हुआ है, आगे वाले टाइम में और आसान हो जाएगा
0: जी हाँ
2: जी।
0: बिल्कुल, तो आज
2: ऐसे
0: हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जो हमारे जितने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उन सब का हम सम्मान करें, उन्हें सल्यूट करें, और उनके
1: उनके
0: काम
1: प्रति
0: की
1: हम
0: सराहना करें।
1: सराहना करें, उनके
2: तो
1: प्रति कृतज्ञ रहें।
2: हमारा भी नमन और आभार व्यक्त करते हैं, हम हमारा पूरा देश है। हम वैज्ञानिक में जितनी हम प्रोग्रेस करेंगे, उतना ही हमारा इंटरनेशनल जो देश का क्रेडिट है वो बढ़ेगा, गुडविल
0: बढ़ेगा,
2: बढ़ेगी,
0: जी सही
2: लोग
0: सही
2: हम पे विश्वास करेंगे, हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और हमारा देश जो है बहुत विकास करेगा,
0: तरक्की
2: उसकी तरफ
0: करेगा।
2: आगे।
0: जी
2: अच्छा
0: बहुत
2: अनिल
0: सुंदर,
2: अनिल जी से हम एक बात और करना चाहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजनों के लिए जो दिवस हम मना रहे हैं, उसके बारे में अनिल विनोचा जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? वरिष्ठ जो नागरिक दिवस है, जो वरिष्ठ जो है, मतलब ये हर घर में होते हैं, तो जो बच्चे हैं आजकल के
1: जी
2: युवा,
1: जी जी जी
2: उनके जो वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने जो जिंदगी लाइफ वो जी रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे,
1: जी
2: वो तो हम जी चुके हैं, उसका जो अनुभव एक इंसान जो है गार्जियन, जो एक बरगद का पेड़ बन जाता है अनुभव का,
1: क्या बात है
2: एक्सपीरियंस का, तो बच्चों
1: जी,
2: को
1: उसका लाभ लेना
2: उसका
1: चाहिए।
2: पूरा लाभ लेना चाहिए। ये जो वरिष्ठ नागरिक है, ये तीसरी आंख है दूरदृष्टि वाली,
1: जी जी जी
2: और वो वैसे खैर बच्चों को पहले ही दूरदृष्टि से उनके फ्यूचर के लिए और

0: लेकर चलते हैं, बच्चों के जो बातें करते हैं उनमें एक मैसेज भी छुपा होता है, एक अच्छा गार्जियन उसे भी समझ जाता है।
1: जी
0: हाँ, क्योंकि जो बच्चा आज हमारा बच्चा हमारे सामने खड़ा है, वो हमसे कम से कम 25-30 साल अनुभव पीछे है।
1: जी जी
0: इसलिए मैं बच्चों से कहूंगा, युवाओं से, वो उनकी बात माने और उनका जो अनुभव है उनका उस लाभ उठाएं, सम्मान करें, उन्हें थोड़ा समय दें, क्योंकि जीवन में अब अकेलापन यूं बढ़ गया है कि हम दो बच्चों तक ही सीमित रह गए ना, तो
1: जी
0: इससे जो है रिश्ते भी बहुत कम हो गए, चाचा
1: जी
0: ताऊ के रिश्ते भी बने ना बने पता
1: हाँ, बस
0: नहीं
1: आगे सब चीज़ें ऐसी हैं।
0: है ही नहीं
1: और हाँ
0: वैसे।
1: विनोचा साहब, अब आपसे बात करने का समय भी जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, अब और इजाज़त समय नहीं दे रहा है, फिर किसी कार्यक्रम में और विषयों पर आपसे बात होगी।
2: लेकिन बहुत ही
1: इस
2: महत्वपूर्ण
1: कार्यक्रम में
2: बात
1: आप, हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे हुई है, इस
2: विनोद
1: कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत
2: जी,
1: धन्यवाद। और दोस्तों, अब इस कार्यक्रम का जो समय बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, आज हमने जाना कि अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ वैज्ञानिकों की लैब तक सीमित नहीं है,
2: बल्कि
1: बल्कि
2: हमारे हर पल की जरूरत बन
1: जरूरत
2: चुका
1: बन चुका है। तो फिर तैयार हो जाओ परसों यानी 23 अगस्त को पूरे गर्व के साथ राष्ट्रीय
2: अंतरिक्ष
1: अंतरिक्ष
2: दिवस
1: दिवस
2: मनाने
1: मनाने
2: के
1: के
2: लिए।
1: लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति।
2: और लोकेंद्र को भी साथ में अनुमति दीजिएगा।
1: हाँ,
2: नमस्कार।
1: और मुझे तो दीजिएगा अनुमति, क्योंकि अब आगे के कार्यक्रम लेकर स्टूडियोज में रहेंगे लोकेन जी। नमस्कार श्रोताओं।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय हमारे श्रोता कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म कुली नंबर 1 में। शब्द रचना इस गीत के लिए समीर की है और संगीत आनंद मिलिंद का है।

अलका याग्निक और कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म कुली नंबर वन में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म राजा का यह गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का है और गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं शान और उदित नारायण के युगल स्वर में फिल्म ओम शांति ओम का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत विशाल शेखर का है।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादल में। गीत समीर का था, संगीत अनु मलिक का। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत, हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के गाए फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नजीबाबाद है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है, और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
2: जी।
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी,

0: बेटा, हम मुर्गियां हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो,
0: जी
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता यह है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: हाँ,

0: तो झुमके क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
3: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
4: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
4: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
4: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
3: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
4: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
2: मेरे पास
0: बहुत
2: बड़ी।
0: अरे वाह,
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
2: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो अब तुम्हारी बारी है।
2: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा।

0: मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
3: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
4: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
5: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
4: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
5: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
6: जी आदाब बजा लाता हूं जनाब, मोहानी की खिदमत में।
7: अरे आप, आदाबर्स आइए आइए, तशरीफ रखिए।
6: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
7: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूं।
6: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
7: जी बस
6: जी।
5: हसरत लिख

0: ले जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
3: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
3: मोहानी साहब
1: जी,
3: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
1: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
3: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
1: ये लीजिए खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
3: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
1: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
3: या खुदा,
1: नौश फरमाइए मियां,
3: लाइए
1: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
5: लिख दिया,
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
6: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
1: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी,
1: चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह,
1: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
5: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत।
6: क्या
5: क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
5: आजना, क्या खूब गजल कहते हैं आप।
2: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
5: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
2: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
1: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। हाँ? नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
5: क्या?
1: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
2: अरे मोहानी साहब,
1: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
5: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
1: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
2: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
1: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
5: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था

0: की टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। सुनते हैं एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: दोस्तों, परवरिश एक ऐसा विषय है जिसको लेकर एक परिवार में बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। परवरिश केवल यही नहीं है कि उनकी जरूरतों को पूरा करें, बल्कि उनके अंदर में और समाज में एक आदर्श बना सकें। और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी एक माता पिता की होती है। बच्चों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा कोई तोहफा है तो वो है पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं। कुछ अच्छा होने पर खुशियां बांटते हैं तो मुश्किल आने पर दीवार की तरह अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि किसी भी इंसान को उनके माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। परवरिश कैसी हुई है उसका आरोप और पुरस्कार दोनों माता पिता को ही जाता है। कई बार आपने ये वाक्य लोगों के मुंह से सुना भी होगा, जब कोई बच्चा गलती करता है तो लोग कहते हैं कि तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया है। और जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि इसके माता पिता ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों को सीखना सिखाना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसकी न्यूनतम समझ माता पिता एवं अभिभावकों को होनी अनिवार्य है। इस समय के अभाव में वे बच्चों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब परिणाम अनुकूल नहीं आते, बच्चे बिगड़ैल निकलते हैं या उद्दंड हो जाते हैं या कहना नहीं मानते, तो फिर अपनी संतानों पर ही वे विश्वास खो देते हैं। उन्हें सबके सामने डांटते कोसते फिरते हैं। ऐसे में स्थिति सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बच्चों के सुधार की संभावनाएं हाथ से निकल जाती है और वे अपने ढंग से मनमाने तरीकों से जीवन बसर के लिए छोड़ दिए जाते हैं।

0: आज के इस कार्यक्रम में इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं इस कहानी को जो माता पिता की परवरिश पर आधारित है।
1: एक मोहल्ले में एक शरारती बच्चा रहता था जिसकी शरारत से पूरा मोहल्ला परेशान था। उस बच्चे का नाम राजू था। बच्चे की शरारतें भी ऐसी थी कि लोगों के झगड़े हो जाएं। राजू कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की बैल बजाकर भाग जाता। हालांकि राजू इतना छोटा नहीं था कि उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। मोहल्ले वाले उसकी शरारतों से काफी परेशान हो चुके थे। राजू की शरारतों पर मोहल्ले वाले उसे डांटते थे और कभी कभी तो मार भी देते थे। राजू के पापा जब ऑफिस से शाम को घर आते तो राजू पड़ोसियों की शिकायत अपने पापा से करता कि आज बगल वाली आंटी ने उसे खूब डांटा, सब्जी वाली बुढ़िया ने झाड़ू मारी

राजू के पापा जब मोहल्ले वालों से बात करने जाते तो वे उन्हें ही खूब उल्टा सीधा सुना देते। राजू के पापा भी राजू की शरारतों से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू के पापा ने खूब सोचा कि आखिर कैसे राजू को समझाया जाए कि उसकी शरारतें सभी को परेशान करती हैं और वह गलत कर रहा है। बहुत सोचने के बाद राजू के पापा ने फैसला लिया कि वे आज दिन भर राजू के साथ रहकर उसकी शरारतों में उसका साथ देंगे। दिन शुरू होते ही राजू की शरारतें शुरू हो गई। सबसे पहले उसने बगल वाले शर्मा जी का अखबार छुपा दिया। जब शर्मा जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आए तो राजू उन्हें देखकर खूब हंसे। राजू के साथ उसके पापा भी खूब हंस रहे थे। उन्हें देख शर्मा जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मा जी ने दोनों को खूब सुनाया पर दोनों हंसते रहे। जब दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो शर्मा जी ही गुस्से से पैर पीटते हुए अंदर चले गए। अब मोहल्ले वाले आपस में चर्चा करने लगे कि पहले तो सिर्फ राजू ही उनकी नाक में दम किए हुए था, अब तो उसका बाप भी शुरू हो गया है। राजू ने अपने पापा के साथ दिन भर खूब शरारत की। राजू के पापा ने शाम को कहा कि आज हमने दिन भर खूब शरारत की, बड़ा मजा आया। राजू ने तपाक से कहा, हाँ पापा। फिर राजू के पापा ने कहा कि आज मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने शरारत की, लेकिन कल मैं शरारत करूंगा और तुम मेरा साथ देना। राजू ने कहा, ठीक है पापा। राजू को बहुत मजा आया कि उसके पापा उसके साथ शरारत कर रहे थे। दूसरे दिन राजू के पापा राजू को उस सब्जी वाली बुढ़िया के पास लेकर गए जिसकी वह सब्जियां फेंक दिया करता था या चप्पल चुरा कर भाग जाया करता था, जिसके बाद बुढ़िया उसे मारने दौड़ती थी। राजू ने सोचा पापा भी वही शरारत करेंगे, लेकिन पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजू के पापा ने कुछ और ही किया। जैसी ही बुढ़िया सब्जियों से दूर गई तो राजू के पापा ने नजर बचाकर राजू के साथ उसकी सारी सब्जियां साफ की और ठीक तरीके से रेडी पर सजा दी। जैसे ही बुढ़िया आई और देखा तो वह बहुत खुश हुई और इधर उधर देखने लगी कि किसने यह काम किया। जब सब्जी वाली बुढ़िया की थोड़ी आंख लगी तो राजू के पापा ने उसकी टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो उसकी खुशी से आंख भर आई। भगवान से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी मेरे लिए इतना किया उसे हमेशा खुश रखना। शाम तक राजू के पापा ने बुढ़िया की खूब मदद की जिसमें राजू ने भरपूर साथ दिया। राजू को छिपकर ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज वह शरारत नहीं बल्कि मदद कर रहा है। दिन ढल गया था। बुढ़िया अपनी सब्जी की दुकान समेट रही थी। तब राजू के पापा उसके पास गए और कहा कि आपको यह नहीं जानना कि आज दिन भर जो हुआ वो किसने किया। बुढ़िया ने तत्काल कहा, हाँ मुझे जानना है कि किसने मेरी मदद की। तब राजू के पापा ने राजू को आवाज दी। राजू जैसे ही आया तो उसके पापा ने कहा कि यह सब इसने किया है। राजू को लगा आज फिर उसकी झाड़ू से पिटाई होगी, तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे कसकर गले लगा लिया और चॉकलेट भी दी। राजू बहुत खुश हुआ। राजू अपने पापा के साथ घर आ गया था। आज राजू चुप बैठा था। राजू के पापा ने पूछा, आज जो भी किया उसमें तुम्हें मजा आया? तो राजू ने जवाब दिया, मजा भी आया और चॉकलेट भी मिली। तब उन्होंने राजू को समझाया कि तुम जब दिन भर शरारत करते हो, लोग तुम्हें डांटते मारते हैं और तुम शाम को उनकी शिकायत मुझसे करते हो, लेकिन आज तुमने शरारत नहीं बल्कि उनकी मदद की।

तो सभी ने तुम्हें प्यार किया और चॉकलेट भी दी। राजू सारी बातें समझ चुका था। आज के दौर के बच्चे बहुत समझदार हैं, बस संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज के दौर के माँ बाप अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों को समय दें और उन्हें अच्छे बुरे की समझ के साथ संस्कार जरूर दें।

0: प्रिय श्रोताओं, परवरिश माता पिता की जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पूरा करते हैं, जिसमें ये चीज महत्वपूर्ण होती है कि जीवन में उन्हें किस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। बच्चों का जो फर्स्ट स्कूल है उनका घर होता है, क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं कि उनके माता पिता किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं। माता पिता का आपस का प्रेम उनको बहुत सी शिक्षाएं देता है, किस तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं, उनका कैसा रिलेशनशिप है, और माता पिता ही उनके लिए उनके जीवन में एग्जाम्पल होते हैं और उसी के द्वारा वो भविष्य में एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोलें, तो आपको भी उनके सामने सच बोलने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के अपशब्द अपने मुंह से ना निकालें, तो आपको भी पहले उन आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे अपने पिता को देखकर या अपनी माता को देखकर गलत चीजों को अपने जीवन में सीख लेते हैं और भविष्य में फिर वो उन्हीं चीजों को करते हैं, तो इसलिए माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनने की आवश्यकता है, ताकि उनके बच्चे भी समाज में एक अच्छा उदाहरण दूसरों के लिए बन सके। इसके साथ साथ बच्चों को स्वयं काम करने के मौके दें, जीवन को समझने व दूसरों के साथ अंत क्रिया का अवसर दें। जीवन में पढ़ाई एवं नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, जैसा कि कुछ अभिभावक मान बैठते हैं, वह बच्चों को इसी दायरे में समेटे रखते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ शारीरिक, मानसिक विकास, बौद्धिक विस्तार, भावनात्मक संतुलन आदि भी महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही जीवन मूल्यों के रूप में आध्यात्मिक पक्ष तो सबसे अहम ही है, जिस और अधिकांश लोग सचेष्ट नहीं रहते। इसलिए बच्चों के वास्तविक विकास के लिए उचित परिवेश देना, वातावरण तैयार करना माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य है। उनके विकास में जो भी अवरोधक तत्व हों, उनसे बचाव करना भी महत्वपूर्ण है।
1: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपको अपने एक श्रोता, जिनका नाम रामदेव प्रसाद है, जो कि नालंदा से है, इन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता से हम आपको रूबरू कराएं। तो आपने हमारा पिछला कार्यक्रम तो सुना होगा, जो कि तलाक के ऊपर था, और ये कविता भी तलाक के ऊपर ही लिखी गई है। तो चलिए आइए सुनते हैं। भारतीय शादी है स्थाई, तलाक न है मानवताई, शादी एक अटूट संस्कार, अपना का पावे सुख सारा। कुवचन नशा पान जब धारण, कुवचन नशा पान जब धारण, तब ही तलाक छूता चरण। आपस में बोल वचन मिठास, पति पत्नी में कभी ना खरास। जो जन कभी ना करे तलाक, उसका पति राम संपाक, राम देव बिनती कर जोरी, तलाक से ही अति दुख तोरी। तो श्रोताओ, सुना आपने। अगर आप भी हमारे साथ चाहते हैं कि कोई कहानी हम अपने कार्यक्रम में सुनाएं, तो आप उस कहानी को, उस कविता को हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर हम आपसे बात करें, तो आप हमें लिख भेजें।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम

अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम श्रोता बहनों को याद दिला दें, आज घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत क्रम रहेगा थारी पसंद, जिसके अंतर्गत हमारी बहनें सुन सकेंगी अपनी पसंद के लोकगीत। तो आप हमें फ़ोन कर सकती हैं, फ़ोन नंबर हमारा आप जानती हैं 9457078288। हमारा दूसरा लैंडलाइन नंबर भी आप नोट कीजिए 01-341-230-105। तो आप हमें फ़ोन करें और अपनी पसंद के लोकगीत सुने। समय दोपहर 1:15 से 1:45 के मध्य है। चूँकि ये कार्यक्रम हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम है, तो हमारी बहनें ही इसमें कॉल करें। समय एक बार फिर से बता देते हैं, दोपहर 1:15 से 1:45 के बीच। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9457078288 01-341-230-105। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं श्याम गोपी राम चौधरी का सरोद वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुवंती। रचना विलंबित व द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत में हैं साबिर हुसैन खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप श्याम गोपी राम चौधरी से सरोद वादन सुन रहे थे। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुवंथी, रचना विलंबित व द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ तबले पर थे साबिर हुसैन खान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वर में, फिल्म बेटा से। गीत समीर का है और संगीत आनंद मिलिंद का है।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोता इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। हम अपनी श्रोता बहनों के लिए एक जानकारी दे दें, आज घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत क्रम रहेगा थारी पसंद, जिसके अंतर्गत हमारी बहनें सुन सकेंगी अपनी पसंद के लोकगीत। तो बहनों फ़ोन करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए 9457078288। लैंडलाइन नंबर हमारा है 01341230105। तो आप हमें फ़ोन करके अपनी पसंद के लोकगीत सुन सकती हैं। समय है दोपहर 1:15 से 1:45 के बीच। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं फिल्म कामचोर का ये गीत, किशोर कुमार और अलका याग्निक के युगल स्वर में। गीत इंदिवर का है और संगीत राजेश रोशन का है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कामचोर में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म गुनाह में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन साजिद वाजिद की है।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुनाह में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में। गीत समीर का है और संगीत निखिल विनय का है।

गुलसुर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म ब्लैकमेल से। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म ब्लैकमेल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य

0: आदित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुदोफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Brazil have signed a memorandum

0: बात की और बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रूहानी सियाहत का मरकज है। उन्होंने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की सकाफती अहमियत का जिक्र किया। वजीर आला ने इसे दो रवायात की मुलाकात करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के वर्क कल्चर और जिंदगी के फलसफे के बारे में जानने का मौका फराहम करता है।
1: यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर वहाँ की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमे समारी बहबूद के कामों और मंसूबों का जायजा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के काम को आसानी से चलाने के लिए जरूरी रहनुमा खतूत फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि कवायद का वाज सेट तैयार करने, खाली तदरीसी योदों का इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के क्याम के लिए जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। वजीर आला ने हिदायत दी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम तलबा के लिए दरखास्त पोर्टल को फौरी तौर पर खोला जाए और स्कॉलरशिप के फंड 2 अक्टूबर तक मुंतकिल किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुँच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे पेशावराना तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और सनअतकारी के एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए आईटीआई को ज्यादा से ज्यादा सनअतों से मुंसलिक करने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि निसाब और तरबियत को सनअत की जरूरियात की बुनियाद पर तैयार किया जाए, साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग को फरोग दिया जाए। वजीर आला ने महारत की तरक्की को रोजगार और आलमी मौके से जोड़ने की जरूरियात पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: अयोध्या राम मंदिर की तामीराती कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, बुनियादी जायजा भगवान के मंदिर और कॉम्प्लेक्स के हवाले से किया गया था। कुल तकरीबन 70 तामीराती मंसूबे हैं, जिनमें से 60 मुकम्मल हो चुके हैं और ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। ट्रस्ट अब उनकी निगरानी करेगा। जनाब नृपेंद्र ने बताया कि हमारे नुक्ते नजर से सबसे अहम बात यह है कि तामीराती काम को हतमी शक्ल दी जाए। बंदिश ऑडिटर के जरिए की जाती है, जहां मजमुई तौर पर हम तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। ऑडिटोरियम और ट्रस्ट ऑफिस को तकरीबन 4 माह का काम दरकार है। म्यूजियम की फीस के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया। ये गैलरी नंबर 7 होगी और इसका खर्च तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। अब ट्रस्ट को यह फैसला करना चाहिए कि यह खर्च टिकटों के जरिए वसूल किया जाए या नुमाइश मुफ्त दिखाई जाए। हुकूमत ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने गुज़िश्ता रोज जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा कि 10 लाख मैट्रिक टन खाम चीनी कुछ शरायत के साथ बगैर ड्यूटी के दरामद की जा सकती है। यह फैसला त्योहारों के सीजन से पहले लिया गया, जब चीनी की मांग में आमतौर पर इजाफा होता है। यह फैसला मकामी मार्केट में सप्लाई के खदशात के बाद किया गया। हिंदुस्तान दुनिया में चीनी पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बदायूं और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाराबंकी, अयोध्या और तीर्थीपार में दरियाए घाघरा। रियासत में सैलाब और पानी जमा होने की सूरत हाल के दरमियान हुकूमत ने मुतासर अजला में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। अयोध्या में कल 283 सैलाब से मुतासर खानदानों में रिलीफ किट्स तकसीम की गई। बारिश की वजह से कल चित्रकूट में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रहे। जिले इंतजामिया ने आज कई स्कूलों को बंद रखने के हुक्म दिया। प्रयागराज में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश से कई इलाकों में पानी भर

0: किया है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर सैलाब की वजह से ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

0: राम राम बहनों, और आज थारे साथ थारी बहन अंजना लेके आ गई है कार्यक्रम घर संसार। और आज तो बहुत ही खास दिन। जी हाँ बहनों, तुम समझ गई होंगी, फिर भी हम दोहरा देते हैं। तो बहनों, आज है माह का तीसरा शुक्रवार और हम लेके आ गए हैं थारा मन पसंद कार्यक्रम थारी पसंद। तो देर किस बात की, तो आकाशवाणी निजी बात पर फोन नंबर डायल करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत। फोन नंबर तो थारे को याद ही होगा, चलिए एक बार हम भी थारे को बताई दें। 94-570-78-288 यानी 9-4-5-7-0-7-8-2-8-8। और दूसरा नंबर भी हमारा नोट कर लें, 0-13-41-230-105। तो बहनों फोन करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत। और देखो बहनों, इतने भारी बहनों के फोन कॉल सामे, इतने थारे से बतिया ही लें। अब बात तो बहनों ऐसी है कि जो हमारे मन को अच्छी भी लगे और अच्छी भी ना लगती। अब सोचे तो अच्छी लगेगी, ना सोचे तो अच्छी ना लगने की, भाई अपने मन की बात है, क्योंकि बात ही ऐसी है। अब बात है रिश्ते की, जिसमें अनुभव भी है, अपनापन भी है, और ऐसा रिश्ता जो हमारे सबके लिए बहुत ही अनमोल है और हमारे जीवन की अनगिनत सीख भी उसी में छिपी है। जी हाँ बहनों, आज हम थारे से बात करने जा रहे हैं अपने घर परिवार के वरिष्ठ यानी वृद्धजनों की, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। और आप सभी जानो हो कि उम्र बढ़ना जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा हुआ है। जिस तरह बचपन और युवावस्था जीवन के मारे पड़ाव हैं, उसी तरह वृद्धावस्था भी जीवन का एक सम्मानित और महत्वपूर्ण चरण है। जरा सोचो, जब हम छोटे थे और हमें किसी बात की समझ ना थी, तब किसने हमारा हाथ थामा? हमारे बुजुर्गों ने ना, हमारी दादी नानी, नाना, दादा, इन सब ने किसी ना किसी तरह से हमारी सहायता करी। किसी ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, किसी ने हमारा हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, किसी ने हमें हमारा बस्ता लेकर स्कूल छोड़ा, और किसी ने हमारे साथ खेला भी। जी हाँ, हमें प्यारी प्यारी कहानियां भी सुनाई, चुटकुले भी सुनाए, और हमारे साथ खूब सारा खेल खेला, और साथ में हमें प्यारा प्यारा सा दुलार दिया, अपना हमारे सिर पर हाथ रखा, वो आशीर्वाद का, जिससे हम आगे बढ़ते चले गए और हम उन खुशियों के बीच पलते चले गए। और हमारा पता नहीं दिन कैसे कट जाता था, उस समय पता भी ना लगता था। और हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे तो हमें अपनापन लगता था, और एक ऐसा लगता था कि एक सहारा हमारे साथ है, और हम सब परेशानियों से दूर उनके साथ रह करके हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझे थे। हम उनके बिना रह भी ना पावे थे। अरे हमारी माँ कहाँ चली गई, हमारी दादी कहाँ चली गई, हम एकदम से घबरा जाते थे अगर हमारी दादी नानी या हमारी माँ हमारे साथ ना हुए थे। लेकिन आज जब हमारी माँ या हमारी दादी नानी बूढ़ी हो गई है, तो हम सोचें कि अरे ये तो बूढ़ी हो गई, खाल देखो इनकी चूरचूरा गई है, कौन बातें करे, ये तो ऐसी बतियाती रहती हैं। देखो बातें तो हम थारे से और भी करेंगे, लेकिन हमारी किसी बहन का कॉल आ रहा है, तो जरा सुन तो ले किसका कॉल आ रहा है। अरे लो, कट भी गया कॉल, कोई बात ना, हम थारे से बतिया ही ले। हाँ तो बहनों, हम बात कर रहे थे अपने बुजुर्गों की। हमारे बुजुर्ग हमारी रीढ़ हुए हैं, जो हमारे साथ हमेशा एक ऐसा रिश्ता बना करके चले हैं कि हमें कभी भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े है। हमेशा हमारे हक पक पर वो हमारा साथ दे रहे हैं। उनके अनुभव अगर हम लें, तो हमें ऐसा लगे है कि उन अनुभवों के साथ यदि हम अपने किसी कार्य को करें हैं, तो हमारे सारे कार्य सफल होते चले जावे हैं। तो बहनों, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो बूढ़े हो चले हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि जिन बच्चों को हमने अपने हाथों में पाला है, वो हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें। उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, माना कि वो घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आप उनके खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी ना है कि सिर्फ खाना दिया और चले गए। उनके साथ थोड़ा सा उनका अकेलापन भी बैठे, उनके साथ बतियावें, उनके साथ बैठे, बस उनसे पूछ लें कोई परेशानी तो ना है, कहीं परेशानी है, खाना पीना अच्छा लग रहा है, कुछ बनवाना है थारे को, कोई खाने की इच्छा कुछ अलग से हो तो बताई दो, हम वही थारे लिए बनवा देंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जावे तो उनका मन खुश हो जाएगा और थारे को खूब सारे आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। तो ऐसे होते हैं हमारे बुजुर्ग। तो बहनों, उनके साथ जरूर अपनापन बांटें। और आप देखो, किसी बहन की कॉल आ रही है, देखते हैं किसकी कॉल है। हेलो हेलो,
1: हाँ जी, हेलो, हाँ हेलो, नजीबाबाद,
0: हाँ जी, हेलो नजीबाबाद, थारी पसंद,
1: हाँ,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम घर संसार में जी। आप बताइए नाम।
1: हाँ, मेरा नाम संगीता टॉक है।
0: अच्छा, संगीता टॉक, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हम नजीबाबाद से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, नजीबाबाद से। तो
1: हाँ
0: संगीता
1: जी,
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा कार्यक्रम
1: हाँ
0: कैसा लगता है थारे को?
1: हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम
0: बहुत
1: ना।
0: अच्छा लगता है। चलिए, हमें भी खुशी होती है जब हमारे श्रोता बहन हमारे कार्यक्रम की तारीफ करती हैं। आप प्रतिदिन सुनती हैं हमारा ये कार्यक्रम?
1: हाँ जी, प्रतिदिन सुनती हूँ मैं।
0: अच्छा, तो चलिए आज हम थारे को कौन सा गीत सुनवा दें?
1: कोई अच्छा हो सुनवा दो। बाबा बैठूंगी मोटर गाड़ी में, ये
0: अच्छा
1: ऐसा सा
0: अच्छा
1: कुछ है, कुछ है इस
0: अच्छा
1: तरह का
0: चलिए,
1: ये
0: हम
1: वाला
0: गीत तो
1: हो।
0: थारे को सुनवाएंगे मोटर गाड़ी का, लेकिन एक बात
1: हाँ
0: तो बता दो, जैसे अब
1: हाँ
0: बरसात का मौसम है तो क्या क्या
1: हाँ जी,
0: सावधानी रखनी चाहिए?
1: बस घर में साफ सफाई रखनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, मच्छर मतलब मच्छर पैदा ना हो, पानी ना भर के रखे किसी बर्तन में। हाँ, पानी को उगड़ा ना रखे। हाँ,
0: और
1: साफ
0: अच्छा,
1: सफाई रखे।
0: हाँ, साफ सफाई रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक
1: हाँ
0: कहा। और
1: हाँ
0: देखिए,
1: हाँ
0: ताजा भोजन
1: हाँ
0: करना चाहिए
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: साफ
1: जब
0: पानी पीना चाहिए। कटे फटे फल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, उसी
1: खाना
0: समय आप बिना रो
1: भी
0: और अपना,
1: हाँ तो हाँ खाना भी, अब जब खाना हो तभी बनाओ और तभी खाओ, तो
0: हाँ
1: ताजा ही
0: बहुत,
1: सही रहता है
0: हाँ
1: खाना भी।
0: बिल्कुल सही कहा
1: हाँ
0: आपने
1: हाँ
0: कि जिस समय आपको खाना हो उसी समय यदि ताजा भोजन बना लिया जाए तो वो
1: हाँ
0: स्वादिष्ट
1: हाँ
0: भी लगेगा और
1: हाँ और
0: हमारे
1: हाँ
0: स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी
1: मेरे लिए,
0: रहेगा।
1: हाँ अच्छा भी रहेगा।
0: अच्छा, बारिश कैसी हो रही है इस बार?
1: बारिश तो बस ज्यादा तो नहीं पड़ रही, हाँ इधर की साइड तो कम ही पड़ रही है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी होती है थारे यहाँ?
1: नहीं, खेती बाड़ी तो नहीं होती।
0: अच्छा, घर में और कौन कौन है जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं?
1: बस क्या, मेरे मेरे पति हैं, वो भी सुन लेते हैं कभी कभी।
0: अच्छा
1: हाँ, और बच्चे आ जाते हैं तो वो भी सुन लेते हैं।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यानी हमारा कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, बहुत अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: चलिए, आपने आज
1: हाँ
0: हमसे बात की तो
1: हाँ
0: हम जरूर आपके पसंद का गीत सुनावेंगे। आपने हमें कॉल
1: हाँ
0: किया, इसके लिए बहुत बहुत
1: हाँ
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: Nima Sangi, har pal chandan ka ehsaas.
1: Hello? Hello? Hanji, kaun bol rahe hain aap? Hello?
2: अविता रानी बोल रही हूँ।
1: अविता रानी, अविता जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम थारी पसंद में। अविता जी कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ।
1: और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: महावतपुर से।
1: अच्छा महावतपुर, अच्छा महावतपुर कहाँ है ये?
2: ये नजीबाबाद के पास है।
1: अच्छा नजीबाबाद के पास, वहाँ की थोड़ा सा बताइए क्या पहचान है, हम जानना चाहेंगे।
2: वहाँ पे सुल्तान डाकू का किला है।
1: अच्छा अच्छा सुल्ताना डाकू का किला, वहाँ से बात कर रही हैं आप। अरे बात, कैसा है वो सुल्ताना डाकू का किला? वो तो बड़ा फेमस है।
2: जी बहुत फेमस है वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं अविता जी?
2: मैं ये समूह सखी हूँ।
1: अच्छा समूह सखी हैं आप।
2: आजीविका मिशन में जॉब करती हूँ।
1: अच्छा आप जॉब करती हैं आजीविका मिशन में।

0: समूह सखी के रूप में। अच्छा, कौन सा गीत सुनवा दें आपको आज?
1: रूपा जी की आवाज में सावन का।
0: सावन का गीत रूपा रानी की आवाज में।
1: जी।
0: अच्छा, तो ये तो गीत सुनवाएंगे हम थारे को। अच्छा थारे को, ये हमारा ये जो घर संसार कार्यक्रम है कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं इसको।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं आप
1: जी।
0: अच्छा, जैसे अब इस समय बरसात चल रही है, तो बरसात के मौसम में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें?
1: मतलब आज घर के आसपास में साफ सफाई, गंदगी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा, और
1: गड्ढों में, ये आसपास में हमारे सब में साफ सफाई होनी चाहिए, अपना खाना स्वच्छ में रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा कि हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए, और अगर आसपास गड्ढे हैं उनमें पानी भर गया है तो उनमें मिट्टी डाल देनी चाहिए या रेत बजरी डाल करके उसे भर देना चाहिए, जिससे कि मच्छर मक्खी पनपे ना, क्योंकि इस समय मच्छर मक्खियों का जो प्रकोप होता है वो पानी अधिक बरसने के कारण या गंदा पानी जमा होने के कारण होता है। तो बहुत अच्छी बात कही रूपा जी, और आपने हमें कॉल किया, हम आपको गीत भी सुनवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।

नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। बहनों, अभी आपने इतना प्यारा सा मधुर आवाज में ये गीत सुना स्वर था रूपा रानी का, और उम्मीद करें कि सभी को पसंद आया होगा। और देखिए बहनों, कार्यक्रम है थारी पसंद, और हमें कॉल करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत। मोबाइल नंबर तो थारे को याद ही है, वही 94-570-78-288, और दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लें, 230-105, और एसटीडी कोड है 01341। तो बहनों, हमें कॉल करें और सुने अपनी पसंद के लोकगीत, क्योंकि ये थारा अपना कार्यक्रम है। जल्दी से कॉल करें और अपनी पसंद के लोकगीत सुने। और देखो बहनों, मौसम है बरसात का, और ये मौसम हम सभी को बहुत अधिक भावे है, क्योंकि जब उमस भरी गर्मी पड़ती है तो सभी हम चाहते हैं कि भाई बरखा रानी आ जाए, बरखा रानी आ जाए, क्योंकि बरखा रानी आती है तो हरियाली भी छाती है, साथ ही ठंडक भी लाती है, और मिट्टी की जो सौंधी सुगंध होती है वो भी हमको खूब भाती है। अरे भाई, मिट्टी की सुगंध, इस समय भी देखो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि काश बारिश आ जाए और फिर मिट्टी की सुगंध मिल जाए। वो सुगंध वाकई बहुत निराली होती है। मिट्टी तो मिट्टी है, जिसमें हम पल बढ़ते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरा होता है। और ये प्रकृति जब फलीभूत होती है इस बरसात के मौसम में, तो हम सभी का मन सुखद अनुभूति करता है, क्योंकि जब इस समय हरियाली हमें चहुं ओर दिखाई देती है, खूब सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, हमारे लहलाते खेत दिखाई देते हैं, तो मन तो खुश हो गई। और हमारे किसान भाई जब अपने खेतों में इस पनीर लगा लेते हैं, मूंजी का पनीर, तो उससे वो जब लहलाता है पानी के बीच, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बहनों, वर्षा तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन कुछ सावधानियां रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बरखा जब आती है तो इस समय सड़कों पर या आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ जाता है, और वो मच्छर मक्खी हमें काट के हमें परेशान करती हैं और हमें बीमार डालती हैं। इसलिए जहाँ पर भी गड्ढे हो, वहाँ पर सबसे पहले अच्छा होगा कि वो पानी निकालने का प्रयास करें, और साथ ही वहाँ पर मिट्टी, रेत या बजरी से उन गड्ढों को भर दें। और छत पर भी बहनों, टायर है, ट्यूब है या फिर खाली डिब्बे हैं, वहाँ पर हटा दें। यदि उनमें पानी भर गया तो उसे हटा दें। कभी कभी गमलों में नीचे पानी नहीं निकल पाता बहनों, तो उनमें पानी भरा रहता है, जो हमारे पौधों को भी नुकसान पहुँचाता है। तो उन गमलों में से पानी निकाल दें, जिससे कि मच्छर मक्खी ना पनपे। और साथ ही बहनों, अधिक देर तक बारिश में ना रहे। गीले कपड़े हो गए हैं तो जल्दी से अपने को सुखा लें, अगर आप बाहर गए हैं तो जल्दी से सूखे कपड़े पहन लें। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें बहनों, इससे बिजली के उपकरण अगर खराब हो गए हैं, उसमें चिंगारी निकल रही है, तो उन्हें भी हाथ से ना छुएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं असुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम सुरक्षा रखेंगे तो हम अपना फायदे में रहेंगे। और कभी भी खंभों के आसपास से ना निकले, और साथ में ये एहतियात रखें कि अगर बिजली कड़क रही है, बरखा तेज हो रही है, तो कभी भी खुले मैदान में ना जाएं, किसी ऐसी जगह शरण लें छत के नीचे, जहां आप सुरक्षित महसूस करें। पेड़ों के नीचे भी ना खड़े हों, क्योंकि वहां पे बिजली गिरने का अंदेशा रहता है। और बहनों, जो खाना है वो ताज़ा भोजन खाएं, साथ में ताजे फल, कटे फटे जो फल होते हैं उन्हें

बहनों आप सुन रही हैं प्यारा सा लोक गीत रजनी टोंक की आवाज में। जरूर बताना थारे को कैसा लगा। और देखो बहनों घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बस और बात ना, लेकिन चलने से पहले थारे को बता देते हैं अपना पता। तो पता नोट करें, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467 63। तो बहनों इस पते पर चिट्ठी पत्री जरूर डालियो, क्योंकि थारा अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को थारे अनुरूप बनाने के लिए थारे को लिखनी पड़ेगी चिट्ठी पत्री। और चिट्ठी पत्री थारी बहुत ही कंजूसी से आम है, भाई कारण क्या है ये तो तुम ही जानो हो। तो इसलिए बहनों चिट्ठी पत्री जरूर डालो, जिससे थारे अनुरूप हम इस कार्यक्रम को बना सकें। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन अंजना को दे अनुमति। बहनों राम राम।

अभी हमारी श्रोता बहनें सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लोकधारा कार्यक्रम में श्रोताओं अब सुनते हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं भागीरथी देवी।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत गढ़वाली लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं भागीरथी देवी।
1: राजा तरणी उमर

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय गढ़वाली लोकगीत सुन रहे हैं भागीरथी देवी के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: displayed remarkable grit and fighting spirit. Coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yifan and Chang Shu Shihan of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces three-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ।

0: समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की

0: मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्सटरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी।

0: ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। श्रोताओं स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं लोकेंद्र उपस्थित हूँ कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां लेकर। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म रॉक स्टार से ये पहली कव्वाली, एआर रहमान, मोहित चौहान और साथियों के स्वर में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत एआर रहमान का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और

और साथियों के सर में फिल्म अमर अकबर एंथोनी से ये कव्वाली। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अभी आपने फिल्म अमर अकबर एंथोनी से ये कव्वाली सुनी। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एआर रहमान के स्वर में फिल्म जोधा अकबर से ये कव्वाली। शब्द रचना जावेद अख्तर साहब की है और संगीत एआर रहमान साहब का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और कव्वाली फिल्म फिजा से। शब्द रचना शौकत अली की है और संगीत एआर रहमान का है। गायक कलाकार हैं कादर गुलाम मुस्तफ़ा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफ़ा।

अभी आप फिल्म फिजा से ये कव्वाली सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारे केंद्र की आज की इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण सभा के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारे द्वितीय सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आप सभी का स्वागत है। सामाइन, एक ऐसा भारत जहां देश का हर कोना विकास की रोशनी से जगमगाए, जहां आम नागरिकों की उम्मीदों को पंख मिले और भारत की प्रगति की रफ्तार गांव-गांव तक पहुंचे, यही हमारे विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। इसी सपने को जमीन पर उतार रही है सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनके बारे में आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे। पहली है उड़ान योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे ये योजनाएं देश के कोने कोने में बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं। एक समय था जब हवाई यात्रा को केवल खास लोगों तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज भारत का आम नागरिक भी हवाई जहाज के सफर का आनंद ले रहा है। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना से, जिसने देश का क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करके देश के विकास को एक नई रफ्तार दी है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना की आधिकारिक घोषणा 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस योजना के तहत पहली व्यावसायिक उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच शुरू की गई थी। ये योजना भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे शहरों और गैर सेवा वाले हवाई अड्डों को आपस में जोड़ना और रियायती दरों पर आम जनता को हवाई सफर की सुविधा प्रदान करना है। इसी क्रम में 4 जुलाई 2026 को शुरू की गई संशोधित उड़ान योजना भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। ये योजना 2026 से 2035 तक चलेगी। इसका उद्देश्य उड़ान योजना की अब तक की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए उभरती क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाना है। संशोधित उड़ान योजना में नई गैर परिचालित हवाई पट्टियों पर 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ना, यात्रियों और माल परिवहन को

सुगम बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देना है। उड़ान योजना के तहत 15 जुलाई 2026 तक पूरे देश में 679 क्षेत्रीय मार्गों के माध्यम से 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरड्रोमों से जोड़ा जा चुका है। उड़ान योजना से अब दूरियां कम हुई हैं, जिससे इस योजना से देश भर के लोगों के लिए यात्राएं और ज्यादा आसान हो गई हैं। ये थी जानकारी उड़ान योजना की, और अब जानकारी ग्रामीण उजाला योजना की। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई रोशनी दी है। इस योजना से ग्रामीण परिवारों के बिजली के बिल में कमी आई है और पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत भी हो रही है। 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत लाखों भारतीय घरों को किफायती दरों पर LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे प्रदान करके घरेलू प्रकाश व्यवस्था में क्रांति आई है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL और डिस्कॉम के संयुक्त प्रयास ने उच्च विद्युतीकरण लागत और कार्बन उत्सर्जन जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों को सुलभ बनाने पर बल दिया है। उजाला योजना को पहले बचत लैंप योजना के नाम से जाना जाता था। ये योजना यानी बचत लैंप योजना फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। उजाला योजना में दिए जाने वाले बल्ब काफ़ी बिजली बचाते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, और इस योजना की खास बात यह है कि ये योजना सरकारी सब्सिडी के जरिए वित्त पोषित की जाती है। श्रोताओं, जब हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलेगा, तभी हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद शाम 5:15 पर पेश किया जाएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम रहेगा लव स्टोरीज, ये शाम गजलों के नाम और आपका सितारा में आज आप सुनेंगे अलीना से जोरेद की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर चर्चा होगी नवरोपित फल वृक्षों की देखभाल विषय पर और गन्ना किसान भाइयों की गन्ना संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान का प्रसारण आप सुन सकेंगे।

कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज एडवोकेट समसपाल सिंह से एसके नौटियाल की बातचीत का विषय रहेगा मृत्यु भोज निषेध अधिनियम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत का वक्त रहेगा शाम 7:32 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में नात।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे गीत संध्या कार्यक्रम में। रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत। और रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम रात के हम सफर। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजी पपाद आप सुनेंगे रात 9:30 पर।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस गान का संगीत में प्रसारण आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर।

अभिषेक भारद्वाज का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में। कल सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा कान के रोग और बचाव। खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुबह 7:10 पर जानकारी दी जाएगी दलहनी फसलों में सामयिक कार्य विषय पर। जानकारी और गीत संगीत से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज की तरह सुबह 7:31 पर।

जिले की हलचल का वक्त रहेगा कल सुबह 9:15 पर। विविध कलाकारों के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। कल सुबह 9:25 पर कार्यक्रम होगा धरती गाती है। कल दोपहर 12:05 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम जिंदगी लाइव। महिला जगत का वक्त रहेगा कल अपराह्न 1:15 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा में कल दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे लता कुंजवाल के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। कल अपराह्न 2:30 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम आधारित होगा शकील बदायूनी पर। और कल शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी।

इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: दिन की भाग दौड़ और रात की खामोशी के बीच ठहरा हुआ ये खूबसूरत एहसास जिसका नाम है शुक्रवार की शाम।
1: जी हाँ, इस शाम को आपके साथ महसूस करने के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट अलीना।
0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, अलीना के साथ प्रोग्राम में हाजिर हो चुकी हूँ मैं एक बार फिर, आपकी साथी वंशिका सोती। तो आइए इस हसीन शाम को कुछ मीठे सुरों, खूबसूरत अल्फाज और दिलकश गजलों के नाम करते हैं।
1: अभी रुकिए मोहतरमा, पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर लें, यानी कि दोस्तों से बुझो तो जाने का सवाल पूछ लें।
0: अलीना बात तो सही गई, तो देर नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, बूझो तो जाने का आज का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
1: और आप जानते ही हैं इसका आपको सही जवाब देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
0: और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हम करेंगे इस शाम को गजलों के नाम।
1: तो दोस्तों आइए सुनवाते हैं आपको आज की शाम की ये पहली खूबसूरत गजल।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेहमान

0: जाएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
3: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
2: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
3: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
2: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
4: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
6: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
5: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
6: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
8: अलक निरंजन।
9: बाबा बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ।
8: क्या हुआ बालक? हमारा बालक और परेशान क्यों?
9: बाबा मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए।
8: बस इतनी सी बात? पैसा तो हाथ का मैल है बालक, ले जा दिया तुझे पैसा, ये रखा देख।
9: हाँ बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।
8: इसे रख दे साइड में और मुझे ये बता कि अब तुझे और क्या चाहिए।
9: बाबा मुझे यही साइड में रखे पैसे चाहिए।
6: जी हाँ, मजा आ गया।
8: एज इज जस्ट अ नंबर। जो मायने रखता है वो है आपके अनुभव।
10: जी हाँ दोस्तों, उम्र बढ़ती है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरकर जो सीख मिलती है वो किसी बुकिश नॉलेज से नहीं मिलती।
8: जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए हर साल आज ही के दिन यानी 21 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है।
10: दोस्तों ये वो लोग हैं जो केवल हमारी फैमिली मेंबर ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की भी धरोहर है, रूट्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी।
8: उन्होंने बदलते समय को देखा है, मुश्किलों का सामना किया है, साथ ही आने वाली जनरेशन्स को रास्ता दिखाया है। उन्हें हर चैलेंज को पार करने का हौसला भी दिया है।
10: और दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अपना पूरा समय अपने दोस्तों या फोन के साथ ही बिताएं, कुछ वक्त अपने सीनियर्स के साथ बिताया कीजिए और फिर देखिए अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस।
8: जी हाँ फ्रेंड्स, वे हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उन्हें जीवन मूल्यों की समझ है, तभी तो वे हर मुश्किल वक्त पर हमें अपनी नसीहत से रास्ता दिखा देते हैं।
10: इसीलिए दोस्तों रेस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन, उनकी छांव में अपने जीवन को समृद्ध बनाइए और साथ ही साथ ये अगली गजल गुनगुनाइए।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है खूबसूरत सी लव स्टोरी सुनने का, तो बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट लव स्टोरीज की ओर और सुनते हैं एक मुलाकात जो जिंदगी बन गई का एपिसोड 5।
1: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
2: दोस्तों कल आपने सुना कि कुणाल डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे कहते हैं, कुणाल शायद ये तुम्हारी दुआओं का असर है, जानवी अब पहले से ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तुम अब उससे मिल सकते हो। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। कुणाल बिना एक पल गवाए जानवी की ओर दौड़ा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने सामने कुणाल को देखा। कुणाल की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। जानवी कहती है, तुम अब तक यहीं हो? कुणाल उसे कहता है, मैंने सोचा जाने से अच्छा तुम्हारा इंतजार ही कर लेता हूँ, और अब मुझसे कुछ मत छुपाना, जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है ना दोस्तों, मोहब्बत साथ जीने का नाम ही नहीं, साथ निभाने का नाम भी होता है। कुछ महीनों बाद दोनों उसी बस स्टॉप पर खड़े होते हैं जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कुणाल अपनी जेब से वही छोटी सी रिंग निकालता है जो जानवी ने पुल पर छोड़ी थी। वो कहता है, ये अंगूठी तुमने मुझे उस दिन माफी के लिए दी थी, लेकिन आज मैं इसे एक वादा बनाने आया हूँ। जानवी, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? जानवी ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ा दिया और कुणाल ने प्यार से उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। कहते हैं सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, वो इम्तिहान होता है, लेकिन अगर दो लोग हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहें तो अधूरी लगने वाली कहानी भी एक दिन मुकम्मल हो जाती है, और शायद इसी का नाम मोहब्बत है। आप सुन रहे थे सेगमेंट लव स्टोरीज। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
3: जी हाँ, लव स्टोरीज, यही सेगमेंट अभी आप सुन रहे थे। और अब प्रोग्राम में वक्त है अगले दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जो है आपका सितारा। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम आपको सुन

0: वाले हैं अंकित गौतम से सिमरन की बातचीत। तो आइए सुनवाते हैं कि सिमरन ने क्या बातचीत की हमारे आज के सितारे अंकित गौतम से।
1: तो दोस्तों, हम एक बार फिर मिलते हैं आपसे हमारे सेगमेंट आपका सितारा में। आप जानते हैं कि सारे सितारे आसमान में ही नहीं चमकते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस धरती पर चमकते हैं और अपनी रोशनी से हमारी इस पूरी धरती को रोशन कर देते हैं। ऐसे ही हम हर बार आपको मिलवाते हैं एक नए सितारे से। तो चलिए आज जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन सितारा, ऐसा कौन सा सितारा हमसे जुड़ने वाला है। तो जानते हैं उनसे उनका नाम, आपका नेम।
2: जी नमस्कार, मेरा नाम है अंकित गौतम।
1: जी अंकित जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए।
2: सबसे पहले मैं यहाँ पर आने के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद का। तो अगर मैं अपने बारे में बताने की स्टार्ट करूँ तो फ़िलहाल मैं अपने करंट जो मेरी सिचुएशन है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। फ़िलहाल मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में कार्यरत हूँ। एक सरकारी प्रोजेक्ट है हमारा अर्बन फ्लड, और मैं लखनऊ में कार्यरत हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारा बेसिकली उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी हमारे ज़िले हैं उनमें जल निकासी के लिए मतलब प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है। और ये पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पर बरसात से जो जल भराव हो जाता है उससे छुटकारा पाने के लिए पहला प्रोजेक्ट है हमारा।
1: जी जी अंकित जी, तो अभी आप अपने उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो
2: जी
1: अंकित जी, आप हमें बताइए कि आपकी स्टडी की शुरुआत कहाँ से हुई।
2: जी अगर मैं बात करूं अपनी बेसिक मतलब मेरी जो एजुकेशन है वो मेरी मेरठ से हुई है।
1: जी
2: वहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल और मैंने अपना इंटर किया। मैंने अपना साइंस साइड से पीसीएम से मैंने अपना इंटर किया। उसके बाद मैं अपना इंजीनियरिंग करने के लिए मेरठ में ही राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग में अपना मैंने 2012 में अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे एमटेक करने का भी मौका मिला और मैंने ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एमटेक 2016 में कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं विभिन्न कंपनीज़ में अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसलमेर, आजमगढ़, इसके अलावा देहरादून, रुड़की, इटावा, मैनपुरी, काफ़ी जगह पर मतलब मैंने काम किया। काफ़ी अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इन सभी सफ़र के दौरान मैं जो एक चीज़ थी जिससे मैं जुड़ा रहा वो था संगीत। तो आज मैं चाहूँगा बस उस संगीत के बारे में उसकी कहानी मैं आपके सामने रख पाऊँ।
1: जी जी जरूर अंकित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक प्रोजेक्ट के में भी काम कर रहे हैं। आपने इतनी सारी अपनी डिग्रियां भी की हैं, बीटेक किया, एमटेक किया, एंड साथ ही आपको संगीत का भी शौक है। क्योंकि देखिए अंकित जी, आप भी जानते हैं कि संगीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
2: जी जी जी बिल्कुल
1: क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है ना कि जिससे हमें हमारी मन की शांति मिलती है।
2: जी
1: क्योंकि जब हम दुखी हों, खुश हों या कुछ भी हों, तो हमारे हमें अगर एक अच्छा मधुर संगीत सुनने को मिल जाए तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है।
2: जी बिल्कुल
1: अंकित जी, हम आपके संगीत के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते थे। मीन्स अभी जो आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वही आपका एम है या फिर आपकी लाइफ में कुछ और एम भी रहा है।
2: देखिए अगर मैं बात करूं एम की तो हमेशा से ही मतलब संगीत के प्रति मेरी एक रुचि रही है। और क्योंकि एक मैं मिडिल क्लास परिवार से हूं तो वहां पर आप सिर्फ एक कला के क्षेत्र में रहकर अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो
1: जी जी बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें काफी सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है।
2: जी, तो उसी के साथ मेरी जो फ्लो के साथ मैं जब मैं रहा तो बीटेक एमटेक जो मेरी टेक्निकल एजुकेशन मैंने गेन की तो उसी के बदौलत आज मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी अच्छे वर्क प्लेस मुझे मिला है, लोग वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। और इत्तेफाक से मेरी ये जो कला है मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की वहाँ छुपी रहे लेकिन कहते हैं ना वो सामने आ ही जाती है। तो
1: जी जी
2: लगभग
1: बिल्कुल अंकित जी, क्योंकि एक कलाकार अपनी कला को छुपा नहीं सकता। तो आप, इट मींस कि आपका जो मेन मोटिव है वो संगीत से जुड़ा था और साथ ही आपने अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा।
2: जी,
1: अब हम थोड़ा आपके रुचि की तरफ चलते हैं। आपने अभी हमें बताया ना कि आपको संगीत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है,
2: जी
1: तो क्या आप हमें बताएंगे कि संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई।
2: देखिए शुरुआत बताते हुए मुझे हमेशा मतलब दो तरह की फीलिंग में एक साथ ही मुझे होती है।
1: जी जी
2: एक हमेशा हंसी भी आती है और थोड़ा सा एक वैसा वाला फील आता है जब आप कभी किसी किसी मूवी में या किसी आप नाटक में जब आप कहानियां सुनते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बहुत फिल्मी लग रहा है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ मेरे साथ हुई है। तो इसलिए मुझे बताते हुए काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं अगर आपको अपने वर्तमान का सिचुएशन बताऊं तो काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और मतलब बताते हैं कि मतलब जो आज के समय में मेरी आवाज़ है या मतलब

0: फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को लगा कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इतना ख़राब गाता था कि मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, मतलब जैसे आप बोलते हैं कि खिल्ली उड़ाना, और इस तरह से मतलब मेरे साथ रहा कि अरे नहीं, मतलब तुम कुछ और कर लो। और उस वक्त कि मैं आपको बताऊं, मैं मिमिक्री करता था। मिमिक्री आप सभी जानते होंगे, मतलब अलग अलग कलाकारों की मैं आवाज़ निकालता था, और उस वक्त मेरा वो जो लेवल था मिमिक्री का, वो इतना अच्छा था कि मतलब लोग मतलब आके पास में बार बार, एक बार यार, एक बार नाना पाटेकर की, एक बार
1: जी
0: राजकुमार की, तो वो चीज़ें इतनी
1: बिल्कुल
0: ज़्यादा मेरी थी कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि वो एक ट्रांजिशन फेस आया।
1: जी अंकित जी, तो होता है फ्रेंड्स में कि अगर किसी की कोई कला हमें पता चल जाए तो हमें रहता है कि उससे जाके पूछे कि भाई एक बार और सुना, एक बार और सुना, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। और
0: जी
1: जैसे आप बता रहे हैं कि डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो आपकी जो संगीत की रुचि है उसको डिमोटिवेट किया गया?
0: जी एक्चुअल में मेरे को ये भी, मेरे एक दोस्त ने, अवधेश कुमार हैं, वो भी मेरे साथी थे बीटेक में, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो सुनकर,
1: जी
0: कि अंकित एक चीज़ होती है टैलेंट और एक चीज़ होता है पैशन। तो
1: बिल्कुल
0: उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि टैलेंट वो होता है जो बचपन से आपके अंदर होता है। तो वो उसने बताया कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमिक सेंस आपका बहुत अच्छा है, मतलब आपके अंदर जो मिमिक्री की कला है, ये टैलेंट है आपके अंदर, मतलब इसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। तो वो चीज़ मतलब मैं मतलब एकदम ईजिली करता था, और बहुत अच्छा लगता था मुझे भी जब मैं देखता था लोगों को, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन
1: बिल्कुल
0: पैशन मेरे लाइफ में आया, मैंने जैसे कि आपको बताया 2009-10 के बाद, तो
1: जी
0: पैशन में किसी ना किसी से आप इंस्पायर होते हो। जैसे मैंने बताया, मैंने आकाश को सुना, तो मैंने, मुझे लगा बहुत अच्छा गाते हैं आकाश, के बाद मैंने शोभित शर्मा जी को सुना, वो भी मेरे मित्र हैं, और बीटेक में वो मेरे साथ थे, वो भी बहुत ही अच्छा गाते हैं दोनों। तो मैंने उन दोनों को सुना, मतलब मैं उनके आसपास भी कहीं नहीं गाता था, मतलब मेरे को लगता था कि ये लोग कितना अच्छा गाते हैं।
1: सर, अगर हम आपसे कहें कि अगर आप अभी भी उस टैलेंट को आपके अंदर वो जो है, अगर वो अभी भी जागरूक है, तो क्या आप हमारे लिसनर्स को एक छोटी सी मिमिक्री करके दिखाएंगे?
0: जी जी बिल्कुल। लेकिन इत्तेफाक से क्या है, जैसे आपने कहा मिमिक्री के लिए, तो बहुत सारे कलाकार थे उस वक्त में जिनकी करता था, लगभग 8 से 10 कलाकार
1: जी
0: की।
1: जी
0: लेकिन
1: आप कोई भी एक, अगर
0: जी जी
1: आप,
0: जी
1: आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आप हमारे लिसनर्स को प्लीज
0: जी
1: करके
0: जी जी
1: दिखाइएगा ये चीज।
0: तो बस मैं वही करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि इत्तेफाक से ईश्वर ने वो केवल एक ही मिमिक्री मेरे अंदर छोड़ी है, बाकी वक्त के साथ साथ वो सभी मिमिक्री या आवाज़ मेरे अंदर से पता नहीं कैसे गायब हुई,
1: नहीं
0: उसको
1: सर,
0: भी
1: वो
0: मैं
1: तो हो जाता है जब लाइफ चेंज होती है, टाइम चेंज होता है हमारा। आपने कहा ना कि हमारा टैलेंट तो है जो हमारे अंदर बच जाता है, जो बचपन से होता है, लेकिन जो हमारा पैशन होता है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, तो
0: जी
1: ये टाइम के अकॉर्डिंग चीजें प्रिपेयर होती रहती हैं।
0: जी जी जी तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा, मैं जिस कलाकार की आवाज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही पॉपुलर कलाकार है मिमिक्री वर्ल्ड में, मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट अगर कोई भी होंगे तो इनकी आवाज़ ज़रूर वो निकालते होंगे।
1: जी
0: और चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि
1: जरूर सर।
0: जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: वाह वाह अंकित जी, ये तो काफी, मैं समझती हूँ कि इतने टाइम बाद भी ये चीज आपके अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। तो
0: जी
1: आप
0: जी
1: हमें
0: जी
1: बताएंगे ये किसकी मिमिक्री थी, हमारे लिए समझना थोड़ा।
0: जी जी जी मैं समझ सकता। तो ये राजकुमार साहब थे हमारे, जो पुरानी मूवीज में तिरंगा में हमने सुने
1: जी,
0: थे।
1: मुझे थोड़ा मैं उसको रिलेट कर पा रही थी, लेकिन एक्चुअल नेम मुझे याद नहीं आ रहा
0: जी जी
1: था।
0: जी उसमें वो कई बार तिरंगा में उनका ये वाला भी बहुत ज्यादा फेमस था कि गेंडा स्वामी हम तुम्हारे सिगार को, इस तरह से मतलब कुछ था उनका। तो मैं उस वक्त
1: बिल्कुल
0: में बहुत ज्यादा मतलब फ्लो में, और डायलॉग भी बहुत सारे याद थे मुझे, तो
1: जी,
0: बस अब यही इतना ही बचा है, मतलब वो बहुत अच्छा था एक वक्त पे।
1: तो अंकित जी हम ज्यादा तो नहीं, पर हम आपसे थोड़ा सा कुछ सुनना चाहते हैं। आप हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे अपने संगीत से कुछ
0: जी जी
1: कुछ
0: बिल्कुल
1: लाइनें
0: बिल्कुल
1: जो आप शेयर करना चाहें?
0: जी जी जी मैं लाइंस भी मतलब मैं हमेशा यही मैं अपने खुद के लिए भी गुनगुनाता हूँ, जब मैं कभी
1: जी
0: बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ या परेशान होता हूँ, तो यही मैं आज उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लिसनर्स व्यूअर्स के लिए मैं सुनाना चाहूँगा, जो कभी ना कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा लाइफ
1: जी
0: में।
1: बिल्कुल
0: तो जो जर्नी मैंने बताई, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के लिए उस लेवल से स्टार्ट होती होगी जिस लेवल से मैंने किया था। मतलब मुझे मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था कि मतलब तुम नहीं गा सकते, तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब है, तो जब मैं गा सकता हूँ तो मुझे लगता है आप सब कुछ वो काम कर सकते हैं अगर आप ठान लें, आप कोशिश करें।
1: जी,
0: तो ये लाइंस हैं, ये किशोर कुमार जी का बहुत ही पॉपुलर गीत है, तो मैं कोशिश करूंगा ये मतलब गीत आपको ने सुना हो या तो रुक।

0: थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत ही मतलब साफ दिख रहा है कि जो आपने प्रैक्टिस की है इन 5 साल अपने अपने गवाए हैं, वो अंधेरा कमरा, वो हारमोनियम, वो पसीना, वो सब आज आपकी आवाज में हमें दिखाई दिया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि हमारे लिसनर्स अगर आपको सुन रहे होंगे तो वो जरूर इंस्पायर्ड होंगे आपसे।
0: जी, बहुत बहुत
1: लेकिन
0: शुक्रिया।
1: एक इन सब में एक चीज ना मेरे मन में है, एक सवाल कि होता ना, देखिए हर चीज के पीछे हमारे पास एक इंस्पिरेशन होती है, हमें को इंस्पायर कर रहा होता है। सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है आपकी, जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं? कभी कभी इंसान डिमोटिवेट होता है, कभी मोटिवेट होता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है हमारी लाइफ में जो हमें कहता है नहीं भाई कि तू कर ही लेगा, तू कर।
0: देखिए, मैं इस सवाल के लिए, मैं आपको एक इस तरह का, मेरे पास हमेशा से जवाब तैयार रहता था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा होता है।
1: जी
0: मेरी लाइफ में ऐसे 4-5 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं हमेशा से ज़्यादा खुद को इंस्पायर्ड फील करता था, या मतलब मुझे लगता था कि मुझे मतलब रुकने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर था वो थी मेरे घर के सरकमस्टेंसेस, मतलब
1: जी
0: जो मेरे घर के हालात थे वो ऐसे थे कि मतलब मैं हमेशा से देखता था, मैंने सबसे पहले जो देखा है अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ही मेहनती रही हैं, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एकदम रिग्रेसली मेहनत करना और कभी हार ना मानना। तो ये चीज़ सबसे पहले मैंने मम्मी से सीखी कि मैं मतलब देखता था कि बहुत ज़्यादा, कभी एक हाउस वाइफ को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, एक अभी मूवी भी आई थी अंडरकवर एजेंट शायद एक आई थी, बहुत ही अच्छी थी, तो उसमें भी बताया गया था कि हाउसवाइफ का काम आसान नहीं है। तो मैं मम्मी को वही देखता था कि बहुत सारा प्रेशर होता था, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, लेकिन फिर भी मम्मी ने वो चीज़ें बहुत मेहनत करके और मतलब अपना फोकस करके सारी चीज़ों को हटा के मतलब वो करा। तो सबसे पहले तो मैं मम्मी का नाम मैं बोलना चाहूँगा जिनसे मैं
1: जी
0: मोटिवेट
1: जी
0: हुआ। दूसरा, मैंने आपको बताया मेरे परिवार के हालात, जो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ करूँगा तो शायद मेरे परिवार की जो एक स्थिति होगी वो बेहतर होगी, और हर एक बच्चा चाहता है वो
1: जी
0: अपने
1: ये
0: परिवार को एक
1: तो
0: अलग लेवल पे लेके जाए।
1: बिल्कुल अंकित जी, तो आपने सही कहा कि ये बात तो सभी के अंदर होती है। जब हम अपने घर की परेशानियों को देखते हैं तब हमारा जो किसी चीज को पाने का, हमारे एम को पूरा करने का जो जुनून होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: जी
0: और तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा मेरे लाइफ में, और वो हर किसी की लाइफ में रहते हैं, और वो हैं क्रिटिक्स। तो काफ़ी
1: जी
0: सारे लोग मेरे बहुत करीबी ऐसे थे, मतलब मैं नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगा, लेकिन सभी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं
1: जी
0: जो
1: जी
0: आपको बोलते हैं कि यार मतलब तुझसे नहीं होगा, मतलब यार छोड़, मतलब तू नहीं कर पाएगा।
1: जी
0: ऐसे लोगों को आप जरूर अपनी लाइफ में रखिए। आप अगर ऐसे लोगों को अपने पास रखेंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अगर
1: जी
0: आप
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: वही होता है जो हमें पुश कर रहे होते हैं
0: जी जी
1: पीछे
0: जी
1: से।
0: अगर
1: जी
0: वो
1: जी
0: लोग नहीं होंगे, सिर्फ आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले लोग होंगे, हमेशा तारीफ करने वाले लोग होंगे, तो शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं।
1: जी ओके,
0: जी
1: तो अंकित जी बहुत अच्छा लगा हमें आपके लाइफ के बारे में जानकर, और आपको सच में हम देखे तो एक उभरता हुआ सितारा जो हम कह सकते हैं, वो आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको आज आकाशवाणी परिवार से आप जुड़े हैं, आपको यहाँ आने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा है?
0: जी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद का भी।
1: जी
0: और मैं, जैसे कि आपने अभी वो मेरा सवाल था जो आपने पूछा था, उसमें एक व्यक्ति और जो कि अभी रिसेंटली मेरी लाइफ में जुड़ी है, मेरी धर्म पत्नी
1: जी
0: एकांकी
1: जी
0: शर्मा, वो भी आज की मतलब आज के वक्त में सबसे ज़्यादा मुझे पुश करती हैं, और वो भी खुद एक मतलब पोइट्री मतलब करती हैं, और वो पेशे से जर्नलिस्ट हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई पुश करने वाला साथी मिल जाए तब भी आप अपने लक्ष्य को बहुत ज्यादा पाने के लिए सीरियस हो जाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, कहते हैं ना कि हम सफर अगर अच्छा हो तो सफर काटना मुश्किल आसान हो जाता है।
0: जी।
1: जी बिल्कुल, तो हम बहुत खुश हैं आपके लिए एंड हमारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप अपनी इस कला को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो अंकित जी हम आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने थ्रू की, आया फिर आपके मन में कोई बात है जो आप हमारे लिसनर्स से लास्ट में शेयर करना चाहेंगे?
0: जी, ज़रूर। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम पे, म्यूजिकल सोल_007, और आप मेरे को अंकित गौतम म्यूजिकल सोल के नाम से यूट्यूब

0: भी सर्च कर सकते हैं। ये मैं चैनल आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे आकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब शायद मेरा ठीक चल रहा है, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला हुआ है, लेकिन आप इसलिए मेरा चैनल आकर देखें जिससे मैंने आपको ये जो अपनी कहानी बताई कि जिस लेवल से मैंने शुरुआत की थी, जब लोगों ने मुझे कहा था कि आप नहीं गा सकते, आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है, और मतलब मैंने जब शुरू किया तो मेरे लिए कितना इम्पॉसिबल जैसा था वो, और आज की डेट में मैं कहाँ हूँ, तो पिछले 15-16 सालों में जो भी मेरी प्रोग्रेस हुई है वो देखें, और आप देखने के बाद खुद से अपने आप से सवाल करें कि क्या जो लक्ष्य मैंने बनाया है मैं भी इतने टाइम में हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते आपके पास एक और रास्ता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ और मैं पैरेलली अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपना जीवन यापन के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप वो भी करते रहें, और अगर आप फुल टाइम इसको देंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मुझे लगता है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: यही बस मेरा मैसेज है कि आप अपने किसी भी पैशन को अगर आप पाने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप उसको जरूर पा
1: तो
0: सकते
1: उसमें
0: हैं।
1: आप सफल हो
0: जी
1: जाएंगे।
0: जी जी
1: आपका मीन्स कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम किसी चीज़ को करना चाहें तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो
0: जी
1: अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
0: जी थैंक यू सो मच।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: अरे अरे अरे, ये देखना जरा, मेरे पैर के पास ये नागिन कुंडली देकर बैठी है।
6: अरे कहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा इस रात के अंधेरे में।
5: अरे अरे अरे, देखो।
6: अरे नागिन, तू क्या कर रही है यहाँ पे? चला गई है तो डसले डसले डसले।
5: अरे चरण स्पर्श करने आई हूँ, गुरु है हमारी।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बूझो तो जाने के अंतर्गत आपसे किया था सवाल कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, और इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद।
8: तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि है सुदर्शन शाह, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, जॉन डी कैस्ट्रो, अशोक सिंह, हिमकेश्वर साहू, राहुल बंसूद, भाई रफत साहब, बालकरण वर्मा, अनिल विनोचा, मोहम्मद रफीक पवार, गुरप्रीत सिंह तंगोड़ी, नवाबुद्दीन, दोमन ठाकुर, फागुराम यादव, नंदन कुमार सिंह, राघव बघेल, उदयबन ठाकरे, आर्यन राज, ताज अंसारी, अनिल बी घोड़के, दीपेश वर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, जाकिर मंसूरी, और है नदीम सलमानी, धर्मेंद्र छीपा, हुकुम करमारकर, वीरेंद्र भयान, नाना डोंगरे, निसार सलमानी, उमेश कुमार, राजेश, सदाशिव थौरात, शकील अहमद इदरीसी, मसरूर हसन, मोहम्मद जाहिद अली, इरशाद अहमद, मुजफ्फर अली खान।
7: तो आइए अब चलते चलते एक और गजल का लुत्फ उठाते हैं।

0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का युववाणी प्रोग्राम. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें बता सकते हैं अपने खत के जरिए. खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 246763.
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288. आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद. हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद. साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं. आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी अलीना और वंशिका को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत.
0: नमस्कार.

0: अभी आपने सुना युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत

0: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्सटरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और भैया प्रमोद जी, कैसे हाल चाल है भाई थारे?
1: बस भैया हाल चाल तो सब ठीक ठाक है। तुम अपने सुनाओ भैया, सब ठीक है ना?
0: बस भैया देखो, हम भी ठीक ठाक हैं। और भैया अपनी खेती किसानी में लग रहे थे।
1: बहुत जरूरी है भैया, आप देखो बरसात भी बतेरी हो रही, गर्मी भी बतेरी हो रही, और भैया फसल की देखभाल करने की जरूरत भी बतेरी इस टाइम पे।
0: बिल्कुल भैया, देखो जो ऐसा मौसम हो रहा है ना, यो उमस भरा कि भैया अभी तो बारिश हो गई
1: जी,
0: और अभी भैया धूप निकल गई और गर्मी हो गई खूब, तो भैया ऐसे मौसम में हमारी फसलों में काफी रोग और बीमारी ऐसी फैल जा है जो कि भैया हमें पता नहीं लगता।
1: सही कह रहे भैया, ऐसा ही है। और देखो इस मौसम में हम देखो बार बार अपने सब सुनने वालों को ये बताते रहे कि भैया सावधानी बरतो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहने के प्रयास करते रहो, और भैया खेती बाड़ी में अपने काम करते रहो।
0: बिल्कुल भैया, देखो थारी बात एकदम सही है भाई, अपनी फसलों के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना।
1: बिल्कुल
0: भाई
1: बिल्कुल
0: इस टाइम देखो वायरल चल रहा बहुत,
1: हाँ भैया
0: भैया बुखार में जहां तहां देखो तुम भैया, कोई घर खाली नहीं होने का, भैया कोई ना कोई बुखार में पड़ा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और भाई इस बुखार से हम अपनी देखभाल रखनी है, अपना बचाव रखना है, और भैया समय से भैया अपने पूरे बांव के कपड़े पहनने।
1: ठीक कह रहे भैया। अब देखो जहां तक वो पूरी बांह के कपड़े पहनने वाली बात है, अब भाई यो तुमने बड़ी अच्छी बात कही। इस मौसम में मक्खी मच्छर ज्यादा पनपे कर रहे हैं,
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया इतने खतरनाक मच्छर रहे हुए हैं कि अगर वो कहीं काट लें तो भाई यूं समझो वो जो संक्रामक रोगों की हम बात करें करें ना भैया, उनके फैलने का खतरा बना रहा है इस टाइम पे, चाहे वो डेंगू बुखार हो या भैया कोई दूसरी चीज हो।
0: बिल्कुल
1: भाई इन सब से बचने के प्रयास करने बहुत जरूरी हैं, और वो तभी हो सके जब हम साफ सफाई बरतेंगे।
0: बिल्कुल भैया, थारी बात एकदम सही है। हमारे किसान भाई जागरूक भी हैं कि
1: हाँ
0: भैया वैसे तो सभी त्याज्य बरते ही हैं भैया, है ना,
1: जी
0: और पूरे गांव के कपड़े भी पहनना है, और भैया अपना बचाव भी रख रहे हैं।
1: जी
0: भाई हमारे किसान भाई खेती किसानी तो कर रही है ना भैया, हम भी कर रहे हैं खेती किसानी, आप
1: अच्छा
0: भी कर रहे हो, है ना भैया।
1: बिल्कुल
0: और भाई देखो हमारे किसान भाई जागरूक भी हैं, तो भैया देखो हमने थोड़े से एक पौधे लगाए थे,
1: कहीं के भैया,
0: फलदार पौधे लगाए थे भैया।
1: ओहो भैया बाग रोपित कर दिया आपने।
0: हाँ भैया
1: अच्छा
0: देखो बाग रोपित कर दिया कि भैया हम भी फल खावेंगे और हमारे जो बालक होंगे भैया, भविष्य है हमारा, वो भी फल खावेगा।

0: बिल्कुल ठीक बात है भैया। देखो, फल अगर हमारे ठीक ठाक होंगे तो भैया स्वाद भी बढ़िया आएगा, पैसे भी बचेंगे और पैसे की कमाई भी होगी।
1: बिल्कुल
0: तो भाई यो काम तो जब ही होगा जब जो पौधे आपने लगाए उनकी ठीक तरीके से देखभाल करोगे। देखभाल कैसे कर रहे हैं तुम?
1: बिल्कुल भाई, थारी बात एकदम सही है भैया। देखो, देखभाल की जब बात आवा है भाई, चाहे फसलों की देखभाल हो या भैया नवरोपित फल वृक्षों की देखभाल हो, है ना भैया,
0: हाँ
1: हमें देखभाल सभी की करनी है। और समय से नियमित देखभाल यदि करेंगे तो भाई तभी हम अपनी खेती किसानी में लाभ उठा सकें,
0: ठीक कह रहे
1: है ना
0: हो,
1: भैया।
0: बिल्कुल।
1: अब बात जब देखभाल की आवा है तो भाई देखो, बरसात का मौसम तुम बता ही रहे हो, तो भाई बरसात के मौसम में जो भैया नवरोपित पौधे होते हैं तो भैया उनकी जड़ों में भैया पानी ना भरने दें किसी तरह भी।
0: बढ़िया तरीके से थाला बना के पानी की निकासी करते रहे हमें।
1: बिल्कुल भैया, क्योंकि अगर जल भराव हो जाता है तो भैया उससे जड़ गलन होने की संभावना रहे, है ना भैया। दूसरे भाई, हमारे किसान भाई इस समय देखो देखते भी हैं, है ना, कि भैया अपने पौधों में और आसपास भैया जंगली जानवर घूमा,
0: हाँ
1: है ना भैया,
0: हाँ हाँ
1: काफी ऐसे पशु घूमे हैं जो भैया हमारे जो नए पौधे हैं उनको खाकर नष्ट कर दें।
0: अब भैया यो तो तुमने जानवरों की बात करी, भाई कुछ कीट भी तो होए करें जो हमारे पौधों को लग जाए, और भैया उन कीट के लगने से जो है हमारा पौधा पूरा पूरा नष्ट हो जाए।
1: बिल्कुल भाई, देखो तुमने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, जब हम फसल लगाओ ना तो भैया हमारी फसल में रोग और कीट तो लगने ही
0: बिल्कुल
1: है ना भैया। अब बात जब रोग और कीट की तुमने करी है तो भाई कीट में एक होता निमेटोड।
0: हाँ, नाम हमने भी सुना भैया, नु कह रहे हैं कि वो धागे के जैसा रह रहे।
1: बिल्कुल भैया, धागे के जैसा पतला बारीक भैया बेलनाकार हो वो, उसकी पहचान की अगर हम बात करें तो।
0: अच्छा
1: और भाई
0: अच्छा
1: देखो, कुछ निमेटोड तो हमारे लिए लाभदायक होते हैं,
0: अच्छा जी
1: लेकिन भाई लाभदायक के साथ साथ कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो भैया हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए, हमारे पशुओं के लिए और साथ ही साथ भैया हमारी फसलों में हमारे पौधों के लिए बड़े हानिकारक होते हैं।
0: यही तो बात है भैया। आप देखो जब ये इतने हानिकारक हैं फसल के लिए भी, मानव स्वास्थ्य के लिए भी, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी, तो भैया यो निमेटोड हमारे पौधों को लगे ही ना, इसकी तो भैया कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना।
1: भाई देखो, जो निमेटोड हो ना ये भैया, ये परजीवी हो भाई,
0: हाँ
1: ये परजीवी होता है जो भैया दूसरे के शरीर पे या भैया दूसरे से भोजन लेता है
0: भाई, सूत्र कृमि के नाम से भी तो जाने जाए ये।
1: भैया। ये सूत्रकृमि के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन सूत्रकृमि के नाम से इनकी पहचान हो है ना भैया, ये जानने जाते हैं निमेटोड के नाम से। और भाई ये जो हमारे पौधे होते हैं नवजात वाले, छोटे पौधे होते हैं भैया, ऐसे मौसम में, नमी वाले मौसम में ये पौधों की जड़ों में लग जाए, और जड़ों में भैया जब लग के उसमें एक गांठ रमा बना ले हैं, मोटी सी गांठ। तो भाई देखो, जो हमारा पौधा होता है उसका जीवन चक्र चलता है भैया जाइलम और फ्लोएम से।
0: अच्छा
1: यानी जाइलम होता है जो जड़ों से भैया पोषक तत्व ऊपर पौधे में ले जाता है, और फ्लोएम होता है जो पत्तियों से बना हुआ भोजन भैया नीचे जमीन जड़ों तक हमारे पौधों में लाता है।
0: अच्छा
1: तो भाई जब जड़ों में ये जाइलम की क्रियाशीलता रोक देते हैं तो भाई मारा जो पौधा होता है ना भैया, वो सूख जाता है पूरा।
0: अनु भी कह रहे हैं छोटी छोटी सी गांठ सी बनने लगे हैं।
1: बिल्कुल भैया, छोटी छोटी गांठें सी बन जा पौधे में। तो भाई ये निमेटोड जो होते हैं, इनके अगर रोकथाम की हम बात करें तो भाई देखो, अपने खेतों में हम देखो नीम की खली
0: अच्छा
1: डालनी है। यदि हम नए पौधे लगा रहे हैं, जैसे फलदार वृक्षों की बात है, छोटी
0: जी
1: सी,
0: जी
1: यानी भैया
0: जी
1: नवजात पौधे हैं, तो भाई जब भी हम पौधे लगावा तो भाई अपने जो थामले हैं या थाले हैं हमारे पौधों के भैया, उसमें नीम की खली आप आवश्यक रूप से डालना,
0: बहुत जरूरी।
1: है ना भैया। दूसरे भाई, आपको अपने खेत में फसल चक्र जरूर अपनाना।
0: यो सबसे जरूरी है भैया। देखो एक के बाद एक फसल हमें वही नहीं बोनी चाहिए, बल्कि फसल को अदल बदल के बोवेंगे तो
1: बिल्कुल
0: ज्यादा अच्छा रहेगा, और फसल चक्र अपनावेंगे तो भैया यो निमेटोड लगने का ही ना।
1: बिल्कुल भैया। और दूसरे भाई, एक ट्राइकोडर्मा आयकर भैया, ट्राइकोडर्मा को यदि आप अपने खेत की मिट्टी में मिला देंगे ना, वो हमारा मित्र फंगस होए करे, तो
0: अच्छा
1: भाई ये जो है इस निमेटोड को नुकसान पहुंचाता है। तो भैया ये जब नुकसान पहुंचेगा इसे, तो ये हमारी फसल में नहीं लगेगा और हमारे किसान भाइयों को अच्छा अपनी फसलों से लाभ होगा।
0: और भैया एक तरीके से लाभ और होगा, जो हम फसल लगा रहे हैं ना उसके बीच में अगर हम गेंदे के फूल लगा देंगे
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया,
0: भैया निमेटोड जो है बिल्कुल नहीं आने का, यो गेंदे से दूर भागे करा है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल। देखो, गेंदे खुशबू से दूर भागा है ये, और गेंदे के जो फूल होते हैं ना, जैसा किसी आदमी को किसी चीज से एलर्जी हो ना, ऐसी भैया इसे एलर्जी होगा।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो भाई देखो, बातचीत तो हम कर ही रहे हैं,
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: नहीं,
0: हाँ
1: और भैया संदेश भी सुनेंगे, विराम भी लेवेंगे, लेकिन भाई पहले किसान भाइयों को एक चीज बता दें।
0: अरे जल्दी बताओ आज के दिन के बारे में और कार्यक्रम के बारे में, तुम तो भैया बातों में हर बात भूल गए।
1: बिल्कुल भैया, देखो आज दिन है शुक्रवार, और वो भी भैया माह का तीसरा शुक्रवार।

0: तो आज किसान भाइयों को सुनवावेंगे कार्यक्रम हेलो गन्ना किसान।
1: बिल्कुल भैया, तो हेलो गन्ना किसान भी सुनवाएंगे कार्यक्रम। लेकिन भाई, कार्यक्रम में पहले ले लेते हैं छोटा सा विराम और
0: ठीक है
1: सुन
0: भैया,
1: लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
0: ठीक है जी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: तो भैया, संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में।
0: हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बात है। तुमने भैया यो तो बता दिया कि आज हम अपने किसान भाइयों को हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम सुनवाएंगे। तो भैया देखो, इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को अपने नंबर भी बताओ दे रहे हैं। हमारे नंबर हैं 94570 78 288।
1: बिल्कुल भैया, एक हमारा लैंडलाइन नंबर है जो कि भैया नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाना है भाई, 013-41 और भैया 230-105।
0: तो देखो, यू कार्यक्रम तो हम अपने किसान भाइयों को सुनवावेंगे, पर भैया उससे पहले एक विशेष कार्यक्रम भी तो आज हम अपना लेकर आए ना।
1: बिल्कुल भैया, हम लेकर आए हैं भैया कार्यक्रम मन्ने लाजमी जाना, है ना भैया।
0: और भैया देखो, यो कार्यक्रम भला किस पर आधारित है?
1: बिल्कुल भैया, ये कार्यक्रम आधारित है सुविख्यात नाट्यकर्मी व भैया रेडियो कलाकार श्रीपाल सांगवान जी को विनम्र श्रद्धांजलि पर आधारित है ये कार्यक्रम।
0: तो भैया अब सुनते हैं यू कार्यक्रम मन लाजमी जाना।
4: आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो झाड़िया चमन की वो मेरा आशियाना है, आबे रूद गंगा वो दिन याद तुझको, जब तेरे किनारे उतरा था कारवा हमारा।
0: ये आवाज थी श्रीपाल सांगवान की। श्रीपाल सांगवान आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत पुराने कलाकार थे। सांगवान जी ने वर्ष 1955 से आकाशवाणी को अपनी सेवाएं देनी शुरू की। रेडियो पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली से कृषि और ग्रामीण कार्यक्रमों की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई। कृषि एवं ग्रामीण कार्यक्रमों की शुरुआत के श्रीपाल सांगवान जी साक्षी बने और आकाशवाणी के स्टॉक कैरेक्टर के रूप में देहाती कार्यक्रमों का संचालन भी किया।
4: देहाती रेडियो गोष्ठी आया करती थी रेडियो पे और लोग बाग नाम भी अच्छे थे उसमें, क्योंकि उसमें मैंने भी 20-25 साल उद्घाटन हुआ जब देहाती रेडियो गोष्ठी का सन 1962 में, तो डॉक्टर राम सुबक सिंह थे कृषि मंत्री सेंटर में, कंट्री रूम के साथ मैं बैठा था रेडियो पे। 1962 की बात है देहाती रेडियो गोष्ठी, क्योंकि पहले पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, वो थे क्या मुंशी, वो बोल रहे भाई इनको इस बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो को, तब ये देहाती रेडियो गोष्ठी प्रोग्राम चलाया गया था और उसका पहला आदमी मैं था।
0: आकाशवाणी के वरिष्ठ कलाकार श्रीपाल सांगवान जी का जन्म 6 मार्च 1932 को जनपद मेरठ के ग्राम कलंजरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चौधरी नैन सिंह सांगवान और माता का नाम बलदेवी सांगवान था। इन्होंने 10वीं की शिक्षा लाहौर से प्राप्त करी और दून स्कूल देहरादून से 12वीं की कक्षा पास की। श्रीपाल सांगवान का विवाह 19 मई 1954 को श्रीमती प्रकाशी देवी से हुआ। दुर्भाग्यवश 1971 में गंभीर बीमारी के चलते इनकी पत्नी का निधन हो गया। इनकी दो संतानें बेटा कुसुमपाल सांगवान और बेटी कुसुम मलिक हैं। अपने सौम्य व्यवहार और प्रतिभा के धनी श्रीपाल सांगवान श्रोताओं के दिलों पर राज करते थे। उनकी लेखनी और प्रस्तुतिकरण श्रोताओं के दिलों पर छाप छोड़ने वाला था। वो बातों बातों में महाकवि घाघ की कहावतों का बड़ा सटीक और अकाट्य प्रयोग किया करते थे।
4: कलसा पानी गरम हो, चिड़िया नहावे धूल, और अंडा ले चींटी चढ़े, वर्षा हो भरपूर। किसान के लिए बड़ी वो करी उन्होंने कि सुतना पहर के हल जोते और पोना पहर निरावे, और घाघ कहे चीनो मोर का सुर बोझा और गावे।
0: श्रीपाल सांगवान समाचार।

0: पत्रों से भी जुड़े रहे। उन्होंने जागो किसान समाचार पत्र का कुशल संपादन किया, जिसमें उन्होंने किसानों और ग्रामीण समस्याओं को उजागर किया। लगभग 26 वर्षों तक आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य रहे। संगीत के क्षेत्र में भी श्रीपाल सांगवान का विशेष योगदान रहा है। ये आकाशवाणी रोहतक की संस्थापक समिति के सदस्य के रूप में भी जुड़े रहे। श्रीपाल सांगवान जी ने हरियाणवी सिनेमा में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन्होंने हरियाणवी फिल्म चंद्रावल और लीलो चमन के आलेख लेखन में भी अपना सहयोग दिया है।
1: लीलो चमन नाम थे दो जो हीरो थे, वो मैं एक हमने भी उसका लिखा, लीलो चमन बनाया, लिखा ड्रामा। हमारे एक दोस्त तो निकलने के बुजुर्गवार थे मेरे, पंडित सिद्धाराम शर्मा, बहुत बड़े कवि थे हरियाणा के। उसमें बोल ले भाई एक बात बताओ, समझ में नहीं आया, ड्रामा तो लिख दिया, बस तू बता, तेरा दिमाग भी काम करता हो, मका जी हैगा, अरे गंगा नहाई गंगा दे, जमुना नहाई जमुना दे।
0: विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीपाल सांगवान जी ने लगभग 70 वर्षों तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवा की। आप लंबे समय तक आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी नजीबाबाद से संबद्ध रहे। 19 अगस्त 2026 को सुबह 8:18 पर अपने पैतृक गांव कलंजरी में उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वर्ग गमन से पूर्व अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए अपने अंतिम समय में भी उन्होंने आकाशवाणी को याद किया। उनके संबंध में बता रहे हैं उनके बेटे कुसुमपाल सांगवान।
2: हमारे जो पिताजी थे जी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही उनार आदमी थे जी, वे सबसे बहुत प्यार करते थे जी। वे 72 साल काम फिरा जी जोड़ी मैंने आकाशवाणी दिल्ली से जी, अपने बलबुत्व गए थे दिल्ली, उन्होंने लिखा भी। उनके प्रताप सिंह थे जी, होंगे पहले प्रोड्यूसर ताऊ झगड़ू प्रताप सिंह, उनकी उन्होंने प्रेरणा मिली थी, उन्हें अपना बच्चा मानते थे। अभी डेली रेडियो सुनते थे वे, शाम को नजमाबाद का सुनते थे, फिर सुबह में दिल्ली का सुनते थे। तो उसमें तक ठीक थे जी, अचानक ही सब कुछ आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो गया जी। 93 साल उम्र थी जी उनकी। पढ़ाई के बारे में बहुत करते थे सबके, पढ़ो पढ़े बिना कुछ नहीं जिंदगी में। आकाशवाणी की पहले की वो होती थी दो मंजिले बस, आकाशवाणी दिल्ली की, वे तो उसमें रहते थे 24 घंटे, गाँव गाँव फिरते थे, हरियाणा पंजाब राजस्थान उसमें घूमते थे। तो देहाती प्रोग्राम में बनते थे जी, वे कृषि जगत में सरपंच जी बहुत हिट हुए जी अपने जमाने में। ब्याह शादियों में जाते थे, लोग उन्हें देखने आते थे। एक वे पूरी बारात आई थी यहाँ, यहाँ पूरी बारात आगे चौथे पर हम उनसे मिलाओ। बहुत सी जगह तो ऐसी होती थी जी, उन्हें हमारा भागना पड़ता था, पब्लिक नहीं जा होती पहले जमाने भाई, अब सब 50 साल पहले, बस शिवपाल सामान कौन है, पब्लिक ने आके घेर लेती थी। बहुत ही नेक इंसान थे ये, तो लोग ने देवता कहते थे, ये लोग कहते थे मेरे लिए लिखाई को पूछते, मुझे पूछते मैं लिखाई को पूछते। उन्होंने ऐसे काम कर दिए मेरठ में, सर 75 में जब एक्सीडेंट थे रोड के ऊपर, पूरे मेरठ में रेड लाइट लगवा दी थी उन्होंने। पेपर था जागो किसान, उनका बहुत हिट हुआ उस जमाने में।
0: श्रीपाल सांगवान शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे। हर समय लिखना और किताबें पढ़ना उनका शौक था। अपने पिताजी के निधन पर उनकी पुत्री कुसुम मलिक बताती हैं।
3: मुझे उन्होंने कदम कदम पर बहुत समझाया क्या सही है क्या गलत है। तो कहाँ कहाँ से लोग आकर उनको ढूंढ के पहुँच जाते थे, गांव में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग पहुँच जाते थे। जब हम छोटे होते थे तो हमें छोटे छोटे जो आती थी बुक्स में हमें पढ़ने को देते थे कि इनको पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हमें आदत है, मेरे को भी है मेरे भाई को भी है। हम भाई दो ही बहन भाई थे, जब किस जमाने की बात है, उनके ऐसे विचार थे उस जमाने में भी कि ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। जब मेरा भाई हुआ तब फैमिली प्लानिंग चली थी, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अपनाया, इसीलिए हम दो ही बहन भाई हैं। मुझे कई बार कहते थे देख मेरे जीवन में कितनी बड़ी कुर्बानी मैंने की है कि मेरा आजकल जमीन जायदाद घर वो का वो ही है, इसके कोई बंटवारे नहीं हुए आज तक, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये सोच लिया था। आज मेरे पिताजी को मैं जाते देख रही हूँ।
0: सांगवान जी अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके पौत्र प्रपौत्रों से भरा उनका परिवार उनकी पारिवारिक खुशहाली की गवाही देता है। बता रही हैं श्रीपाल सांगवान की पौत्र वधु जॉली सांगवान।
4: 20 साल रही हूं मैं उनके साथ यहाँ। जितने बुजुर्ग थे तो पुराने ख्यालों के थे, और पुराने ख्यालों के होते हुए भी बहुत जल्दी, जैसे उनकी पड़ोती आई हैं जैन जी हैं वो इस समय, और उसमें काफी उन्होंने मतलब वो इतने ढल गए इनमें कि हाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे परिवार में कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ और ये बच्चियाँ इस उम्र में हैं तो मैं

0: कोई दखल करूं इनकी लाइफ में नहीं। उन्होंने हमेशा इस उम्र को देखते हुए बच्ची को बाहर जाने के लिए भी बोला जब से मेरी बेटियां बड़ी हुई हैं, और उन्होंने बहुत सहयोग किया इसकी, हाँ आप बाहर निकलो पढ़ो। तो हमें कभी उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, और उन्हें हमारे साथ ढलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और जाते टाइम भी वो इतना सब कुछ हमें बता के गए कि आगे तक तुम्हें क्या करना है। मुझसे कह के गए अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करना, उनके बिना हम बहुत अकेले हो जाएंगे। अगर हाँ पूरा भरा परिवार है, लेकिन यादें तो हैं कि हाँ हम अपने बच्चों को कहेंगे कि हाँ भी कुछ थे।
1: अपने मित्रों और नाते रिश्तेदारों में भी श्रीपाल सांगवान विशेष पहचान रखते थे। उनके व्यक्तित्व और स्मृतियों को याद करते हुए सांगवान जी के एक रिश्तेदार का कहना है।
2: मेरा नाम चेतन नाठी है जी, और वाइफ के बाबा जी थे। बहुत अच्छा, जब से मैं इस परिवार में आया हूँ बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, मतलब बड़ा सम्मान देते थे। जब भी मैं आता था हर बार कुछ नया जो है लेख अपना जरूर देते थे, कैसे पढ़ना देखना, और बहुत अच्छे लेख उनके थे। तो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करे गए हैं, कोई बीमारी नहीं थी। जब मृत्यु हुई है उनकी, उससे दो मिनट पहले उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि आप बहुत फूलो फलो, मेरा जो परिवार है सब बहुत अच्छा, और मैं भी वैसे ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं ईश्वर क्या करेगा क्या होगा। और दो मिनट बाद ही मेरे पे फोन आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छा इंसान जो है वो हमारे बीच से चले गए।
1: श्रीपाल सांगवान जी मेहनत और ईमानदारी से काम करते थे। सांगवान जी का कहना था कि मनुष्य की पहचान उसके पद और उपलब्धियों से नहीं होती, उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वो कठिन परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को संभालते हुए अपना काम सही तरीके से करता है। आकाशवाणी और रेडियो में सांगवान जी के प्राण बसते थे। सांगवान जी की प्रपौत्री मानवी सांगवान भावुक होते हुए बताती हैं,
3: आज बहुत ज्यादा हमें बुरा लग रहा है कि इतना टाइम हम उनके साथ रहे, इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ उन्होंने सिखाया, और एकदम अचानक से बस अब वो नहीं है, हमारे साथ चले गए। अभी बिलीव भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी आवाज लगाएंगे पर अब नहीं है वो हमारे साथ। जिस जनरेशन के वो थे उनकी मेंटालिटी बहुत एडवांस थी, वो बहुत ज्यादा सोचते थे चीजों को, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और हम तीन बहन भाई हैं, मुझे सबसे ज्यादा वो बहुत अफेक्शन शो करते थे मेरे लिए। अभी एक महीना पहले मुझे अपने साथ नसीबाबाद लेके गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ पे युवानी में मेरा प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और आज लास्ट टाइम भी स्पेशली बोला था कि अब तो कुछ नहीं होगा तो तुम नसीबाबाद जरूर कॉल करते ना, लास्ट टाइम भी बोल के गए थे, याद करके गए थे। बिना नेट को यूज करे, बिना किसी AI को यूज करे, इतना परफेक्ट वो चीजें लिख देते थे, इतना परफेक्ट बोलते थे। आज भी उनके पास फोन भी अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा रेडियो में ही सारे प्रोग्राम सुनते थे। घर के बाहर बैठ के रेडियो चलाते थे कि सब सुनेंगे, सब अपने आप नहीं सुनते, मैं सुनाऊंगा, बुला के लाते थे, देख मेरा रेडियो पे प्रोग्राम है, देखिए उसका प्रोग्राम आया रेडियो पे सुनो, हमेशा रेडियो पे सुनते थे। आज भी उनकी रेडियो रखी हुई है, उनके कुछ जो आगे वो कुछ बोलने वाले थे आधी लिखी हुई चीजें रखी हुई है, वो मैंने उठाई है, आधा लिखा हुआ आर्टिकल है उनका, बहुत सारी चीजें है, इतनी सारी किताबें है, शायद 100 से ज्यादा किताबें उनकी रखी हुई है यहीं पे। बल्कि वो कल भी मैं जब कॉलेज से आई तो बुक ही रीड कर रहे थे एक, और बिना चश्मे के इतनी एज में भी इतनी आराम से बुक रीड कर लेते थे, एक दिन में दो दो बुक पढ़ लेते थे, पूरा दिन बस रीडिंग करते थे या लिखते थे। तुम्हें गलत नहीं करना हमेशा, ये उनकी एक टीचिंग बहुत जो हमारे साथ रहेगी, और आगे सबको अपने लाइफ में ये सीखना चाहिए।
1: परिवार के एक अच्छे मुखिया, समाज सेवी, ग्रामीण पत्रकार और संपादक और एक अच्छे लेखक श्रीपाल सांगवान भले ही आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन और कुशल व्यक्तित्व हमें हमेशा याद आता रहेगा। संपूर्ण आकाशवाणी परिवार श्रीपाल सांगवान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात नाट्यकर्मी व रेडियो कलाकार श्रीपाल सांगवान को श्रद्धांजलि पर आधारित विशेष कार्यक्रम मने लाजमी जाना। वाचन स्वर प्रमोद सिंह।

0: प्रस्तुति सहयोग धीरेन्द्र धारीवाल, सुवेंद्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा।
1: तो भैया जितेंद्र जी,
0: बिल्कुल हाँ भैया,
1: देखो भैया ये विशेष कार्यक्रम तो हमने सुन लिया। और भाई देखो, अब आपको पता कि आज भाई कौन सा दिन है?
0: बिल्कुल भैया, आज देखो माह का तीसरा शुक्रवार है। तो भाई तीसरे शुक्रवार को हमारे सभी किसान बहन भाइयों को इंतजार रहता है अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम का, हेलो गन्ना किसान का।
1: बिल्कुल, तो हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम अब हम अपने किसान भाइयों बहनों को शुरू करते हैं। तो भैया अब देर किस बात की है, जरा नंबर बता दो।
0: बिल्कुल भैया, नंबर बता देता हूँ, 94-57-07-82-88। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम
1: हेलो गन्ना किसान।

0: तो स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम में।
1: और भैया आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया प्रमोद सिंह।
0: और मैं हूँ भैया जितेंद्र कुमार। और भैया प्रमोद जी,
1: हाँ
0: देखो
1: भैया।
0: जैसे ही हमने किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम शुरुआत किया और भाई नंबर बताया, तो भाई वैसे ही किसान भाइयों का फोन आ रहा है।
1: बिल्कुल, देखो भैया फोन आने शुरू हो गए हैं, तो आप जरा देखो तो सही भला कौन है लाइन पर।
0: बिल्कुल। हेलो।
2: हेलो गन्ना किसान।
1: हाँ
2: हाँ जी,
1: जी, हेलो
2: हेलो
1: गन्ना
2: गन्ना
1: किसान में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
2: जी, पहले तो प्रमोद सिंह जी और जितेंद्र कुमार को मेरी राम राम।
1: राम राम
2: राम
1: जी,
2: राम
1: हमारी भी राम राम
2: जी। मैं ग्राम धरना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ
1: जी
2: जी।
1: जी जी
0: मदन गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
2: हाँ जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ
1: हाँ जी, हाँ
2: कि
1: जी,
2: बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और मैं आपका खत मिला में भी लिख चुका हूँ कई बार कि
0: जी बिल्कुल
2: इसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं और मैं कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल
2: इसकी
1: बिल्कुल
2: पूरी टीम जो है 7 सदस्यीय टीम है और बहुत ही लगन और मेहनत से जो है कृषि जगत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
0: जी
2: मैं
0: जी
2: उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत ही मार्गदर्शन होता है हमारा और मैं सुनता हूँ और आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ कृषि
1: जी
2: में।
1: बहुत
2: हाँ
1: बहुत धन्यवाद जी। आप भी देखिए,
2: जी
1: हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही सुनते रहिए, अपना स्नेह बनाए
2: बिल्कुल
1: रखिए और हमें बताते रहिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो बताइए,
2: जी, मैं तो
1: आज क्या
2: बताया
1: जानकारी
2: देखो,
1: लेना चाहते हैं आप?
2: गन्ना तो बढ़िया खड़ा है 118 है और वो जो है वो गेहूं का आटकर बोया था 75 है,
0: अच्छा अच्छा
2: लेकिन उसमें जो है वो जो है बेल उग वाली है। हाँ
0: अच्छा अच्छा बेल उग रही है, खरपतवार हो रहे
2: जी
0: हैं।
2: हाँ जी हाँ,
0: अच्छा
2: तो
0: अच्छा तो
2: उसके बारे में सुझाव मांगना चाहता हूँ मैं
1: बिल्कुल
2: आपसे।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके जो गन्ना है वो खरपतवार उग रहे हैं, बेल उग रही है, और यदि बेल को आप समय से नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो बेल आपके गन्ने पर इस तरह से एक छतरी नुमा बना लेगी, जिस तरह से हम बारिश में एक छतरी लगा लेते हैं,
2: हाँ जी
0: और वो
2: हाँ
0: हमारी गन्ने की फसल को ना तो बढ़ने देती है, ना ही उसको जो है अच्छा फसल उत्पादन होने देती
2: हाँ जी हाँ
0: है ना। तो हमें, या
2: जी
0: तो यदि आपके पास जो श्रमिक हैं, तो श्रमिक यदि हैं तो आप उसको मैन्युअली उखड़वा दें।
1: इस समय तो काफी फैल गई होगी।
2: हाँ जी, फैल ली काफी फैल ली।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो इस समय आप यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहते हैं, यानी कि रासायनिक खरपतवार नाशी
2: हाँ जी
0: आप
2: जी
0: अपने खेत में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप इस समय 2,40 58% में ले सकते
2: अच्छा
0: हैं,
2: जी
0: है ना।
2: अच्छा जी
0: 2,40 58% में लिक्विड में लेकर के एक
2: अच्छा जी
0: एक कैन, यानी 14 लीटर या 15 लीटर की कैन होती है आपके यहाँ,
2: हाँ जी हाँ
0: है
2: हाँ
0: ना,
2: जी
0: उसमें
2: हाँ जी
0: लगभग आप 20 ml दवाई 14-15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करा सकते हैं,
2: 20 ml
0: 20 ml।
2: अच्छा
0: यदि
2: जी
0: आपके खेत में और भी खरपतवार हैं बेल के अलावा, यानी बेल तो चौड़ी पत्ती की होती है ना,
2: हाँ जी
0: यदि
2: हाँ हाँ
0: आपके
2: जी
0: आपके खेत में संकरी पत्ती वाले खरपतवार भी उग आए हैं, जैसा मोथा है या अन्य कोई खरपतवार हो, तो आप
2: जी
0: उसके
2: जी जी
0: लिए अल्ट्राजीन जो होती है, एट्राजीन 50 WP में पाउडर आता है, उसका पाउडर
2: अच्छा
0: मिला
2: जी
0: लें
2: अच्छा
0: आप, एक तरह एक जगह घोल बना लें उसका, और
2: जी
0: हर कैन में लगभग आपको जितनी कैन करनी है उसी हिसाब से आप उसका पाउडर का घोल बनाएं, और आधा गिलास या 1 गिलास के हिसाब से आप उसमें कर लें,
2: जी जी
0: है
2: जी
0: ना। तो वो उसके उससे आपके जो है, जो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे,
1: और देखिए
2: वो भी
1: ये
2: खत्म हो
1: काम,
2: जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, ये काम समय रहते आप कर लेंगे तो आपकी जो गन्ने की बढ़वार है वो सही तरीके से हो जाएगी और खेत भी आपका खरपतवार मुक्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल। तो
2: जी जी
0: प्रमोद भैया, देखो इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: भाई,
0: और भाई देखो, हमारा कार्यक्रम

0: आज चल रहा है हेलो गन्ना किसान।
1: और
0: और
1: नंबर हम एक बार फिर बता देते हैं भैया,
0: बिल्कुल
1: अपने सभी किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारे नंबर हैं 94-570-78-288,
0: बिल्कुल भैया,
1: और दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5। और देखो भैया, कोई भाई लाइन पर है।
0: बिल्कुल भैया, देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर हमारे कार्यक्रम में कौन है।
1: हेलो,
0: हेलो गन्ना किसान।
2: हेलो गन्ना किसान,
0: हाँ
2: मुझे
0: जी,
2: हमारी आकाशवाणी पहचान है जावेद अख्तर, जिला सरायमा,
0: जी
2: डिस्ट्रिक्ट।
1: जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। रेडियो सेट से दूर हो जाइए और दोबारा से अपना नाम और पता बता
2: जी, हम
1: दीजिए।
2: तो रेडियो से दूर है, अभी फोन
1: जी, बताइए,
2: कर
1: आपकी आवाज
2: लगाएंगे।
1: क्लियर नहीं आ रही है। बताइए कौन बोल रहे हैं।
2: जी, हम जावेद अख्तर बात कर रहे हैं।
0: जावेद अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम में। बताइए आज, जी,
2: हाँ,
0: सराइम्मा से बताइए, क्या आज जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी।
2: गन्ना में जो 38 का गन्ना है उसमें सूख है।
0: 38 का गन्ना
2: जी
0: है आपने, 238 गन्ना प्रजाति बो रखी है, और हम
2: हाँ, वो पुराना
0: पिछले दो सालों से हम
2: जी।
0: CO0238 गन्ना प्रजाति में रेड रोट, एक भयंकर महामारी से गुजर रहे हैं, जिससे हमारी जो फसल है या हमारा पूरा खेत कह लो, वो नष्ट हो जाता
1: जी
0: है।
1: सर,
0: और किसान भाइयों को काफी
2: नहीं
1: नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अभी जैसे आपने कहा जावेद जी कि आपके इस गन्ने के खेत में सूख है, मतलब गन्ना सूखने लगा है।
2: सर, हाँ जी हाँ।
1: अच्छा
0: अच्छा तो बिल्कुल, हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ना कई तरह से सूखता है, असल में कभी कभी इसमट लगता है उससे भी सूख जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि गन्ने में सूखने में यदि आपकी जो पत्ती है गन्ने की, तीसरी या चौथी पत्ती, उस पर जो है घेरे से बने हुए हैं लाल रंग के या काले रंग के, जैसा माला होती है ना, इस तरह के
2: हाँ
0: बीच
2: जी, मुझे
0: बीच की
2: बताइए।
0: सिरा पे एक तरह का एक निशान से बन जाते हैं।
2: जी सर,
1: दिखाई दे रहा
2: हाँ
1: है आपको ऐसे निशान, कोई लक्षण दिखाई दे रहा है इस तरीके का।
2: जी प्रमोद
0: अच्छा, जी, बिल्कुल। तो आपकी जो CO0238 प्रजाति है उसमें मुख्य रूप से रेड रोट जो रोग है वो लग गया है। यदि आपके खेत में रेड रोट महाभयंकर बीमारी लग चुकी है, यानी कि गन्ने का कैंसर लग चुका है, तो आप यदि हो सके तो उसमें जितने पौधों में ये रोग लगा हुआ है, जितने मेहड़ों में कह लो एक तरह से, या जितने
2: जी
0: थान कह लो, जितने थानों में लग चुका है, आप उसको उखड़वा करके जमीन से, और उसमें जो है आप उसके गड्ढे में आप कोई भी फफूंदी नाशक पाउडर आप डाल दें,
2: अच्छा
0: ताकि आगे
2: सर,
0: बढ़ने ना पाए। नहीं तो
2: ताकि
1: देखिए, इस रोग से होता क्या है कि हमारे खेत के खेत बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और किसान भाइयों को नुकसान होता है।
0: ये देखिएगा, रेड रोट जो
2: जी
0: बीमारी है ये फफूंदी जनित रोग है। ये एक कोलेट्रोट्राइकम फाल्गेटम, एक फफूंद होता है जो कि इस गन्ने में आ गया है, और उसके कारण ही ये जो है हमारे गन्ने की फसल में लगता है
2: जी
0: ना।
2: सर,
0: तो आप इसके लिए या तो COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अच्छी कंपनी का लेकर के उसका स्प्रे करा दे अपने खेत में।
2: जी हम नजीबाबाद गन्ना सोसाइटी में जाते हैं, वहां से जानकारी भी मिलती है।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, वहां से जानकारी लीजिए। और देखिए, जो अभी
2: जी
1: आपको कार्यक्रम में हम बता रहे हैं ये आप नोट कर लीजिए, इन उपायों को
2: अच्छा
1: अपनाइए
2: सर,
1: और अपने खेत से इस बीमारी के बाद में देखिए निजात आपके खेत को जरूर मिलेगी।
0: देखिएगा, या तो
2: बिल्कुल
0: COC
2: जी
0: का
2: सर,
0: आप स्प्रे कराएं, या एक और दवाई आती है बहुत अच्छी है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डेफिकोनाजोल, एक ही सीसी में आपको मिलेगा, लगभग 200 ml की,
2: अच्छा सर,
0: वो 5 बीघे के यानी कि एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। उसका स्प्रे आप अपनी फसल में करा देंगे तो आप जो अगले आने वाली फसल है या जो आने में यानी रोग फैलने के लक्षण जो है वो कम हो सकते हैं।
2: ये 18 भी उसमें खड़ा है, वो तो अच्छा खासा है।
1: जी, ये जो
2: बिल्कुल
1: रोग है ये 238 में ही ज्यादा आता है।
2: जी सर,
0: बिल्कुल। तो भैया प्रमोद जी, देखो इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा, और जो रेड रोट बीमारी है, हम तो अपने सभी किसान बहन भाइयों को एक
1: बिल्कुल
0: छोटा सा संदेश ये भी देंगे कि भाई आप जो है CO0238 प्रजाति अपने खेत में ना लगाएं।
1: बिल्कुल भाई। देखिए, हम बार बार अपने सभी कार्यक्रमों में ये बताते हैं किसान भाइयों को कि इससे किसान भाइयों का काफी नुकसान होता है, इस प्रजाति को थोड़ा कम कीजिए और दूसरी प्रजाति गन्ने के अपने खेत में लगाएं।
0: बिल्कुल भैया, देखते हैं अगले कॉलर हमारे कौन है।
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो गन्ना किसान,
2: हेलो
0: हेलो गन्ना किसान में स्वागत है। कौन साहब बोल रहे हैं अपना।
2: हेलो, जय
0: हाँ जी,
2: भीम साहब।
1: जय भीम जी, बताइए कौन बोल रहे हैं।
2: आसाराम साहली प्रकोड़ा सा,
0: आसाराम जी,
2: तहसील
0: बहुत बहुत
2: नगीना, थाना बड़ापुर।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे।

0: कार्यक्रम में आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आसाराम जी?
1: गन्ने के बारे में नहीं
0: गन्ने
1: पता
0: के या
1: है।
0: मुंजे के, एक हमारा वो पपीता सूख रहा, तो
1: अच्छा, बिल्कुल, पपीता
0: इसका
1: सूख
0: क्या
1: रहा
0: उपाय
1: है।
0: करना चाहिए?
1: गन्ने के लिए बताइए, गन्ने की फसल है आपकी कैसी है? पपीता भी बताएंगे।
0: गन्ने की तो सही खड़ी है।
1: जी, गन्ने की सही खड़ी है। कौन कौन सी प्रजाति लगा रखी है गन्ने में?

0: वैसे तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो हेलो गन्ना किसान है, और गन्ना किसान भाइयों की जो हमारी समस्याएं होती हैं उनसे उन पर आधारित कार्यक्रम है। और जब आपने बात पपीते की है, तो पपीते की जो फसल है, देखो वो पपीता सूख रहा है आपका, तो हो सकता है आप उसके जड़ों में जो है कोई
1: कोई पत्थर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे
2: भैया लाइन शायद इनसे हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन फिर भी इनको बताना जरूरी है।
0: तो भैया देखो, जो पपीते की जड़ होती है उसके नीचे हो सकता है कोई ईंट या कोई किसी तरह का कोई पत्थर हो,
2: हाँ
0: नीचे है ना, तो भैया आप उसके जड़ के आसपास एक थामला बना करके देख सकते हैं।
2: और ये भी ध्यान रखें कि बरसात हो रही है भाई, उसकी जो जड़ है उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, थामला ठीक होना चाहिए, इस वजह से भी ये सूख सकता है क्योंकि इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल भैया, देखो पपीता जो फसल है हमारी, वो उसका जो तना होता है वो बहुत कोमल होता है,
2: बिल्कुल
0: और जो
2: बिल्कुल
0: जड़ें होती हैं बहुत दूर तक फैली हुई नहीं होती है। तो भाई हम अपने किसान भाइयों को, जो पपीता इन्होंने लगा रखा है, तो भाई हो सकता है पपीते की जो फसल है उसमें खेत में, उसमें फसल में या उस पौधे में पानी भर गया हो, तो कभी कभी जड़ गलन होने की समस्या भी रहती है। तो
2: जी।
0: आप अपने जो पपीता है उसकी निगरानी करते रहें।
2: और देखो भैया, ये इनकी समस्या का समाधान लगभग हो गया होगा, देखते हैं आगे कौन भाई लाइन पर हैं।
0: बिल्कुल भैया, देखो अगले कॉलर देख लेते हैं हमारे कौन है भाई।
2: हेलो,
3: हेलो गन्ना किसान।
0: हेलो गन्ना
2: हेलो गन्ना
0: किसान,
2: किसान में स्वागत है आपका, नाम बता दीजिए।
3: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, मैं
2: नमस्ते
3: उत्तराखंड
2: जी।
3: सेनेखाल सेनेगांव फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ।
0: जी
2: प्रकाश
0: जी
2: चंद्र
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
3: साहब, आप यहाँ आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रोग्राम सभी अच्छे लगते हो, किस जगह तो बहुत ही अच्छा लगता है
2: जी,
3: जी।
2: अच्छी बात है।
0: धन्यवाद
2: तो देखिए प्रकाश जी, आज आप बताइए, गन्ने की फसल आपने लगाई होगी तो उसकी क्या जानकारी आप लेना चाह रहे हैं?
3: साहब। गन्ना गन्ने की पत्ती मुड़ रही है और सिकुड़ रही है, और उसमें चींटी भी लग रही है। वो एक वो जो मुड़ते नहीं है वो काटने के लिए आते हैं, वो भी लग रहे हैं उनसे।
0: गन्ने की
2: अच्छा,
0: फसल आपकी बढ़ने की बजाय नीचे को बैठ रही है,
3: मैंने पत्ते पत्ते मुड़ रही हैं, पत्ते
2: पत्तियां
3: पत्ते मुड़
2: उसकी मुड़
0: रहे
2: रही
3: हैं।
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
3: आपने
0: आपके गन्ने की फसल की,
3: बोल रहे हैं वो
0: आपकी गन्ने की फसल
3: जैसे
0: जी।
3: जैसे नमी कमी हो रही ना, नमी तो वो सिकुड़ रहे हैं और मतलब सूख के जा रहे हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिएगा आपके जो पत्ते सुकड़ रहे हैं ऊपर से गोप के, तो वो जो है हो सकता है आपकी फसल में पोका बोइंग रोग आ गया हो,
3: हाँ जी,
0: है ना। तो आपकी फसल में यदि पोका बोइंग रोग के लक्षण हैं, यानी जो पत्ती सुकड़ रही है, कटी कटी सी हो रही है, जहाँ चाकू से काट देते हैं, तो आप उसके लिए टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का स्प्रे अपनी फसल पर आवश्यक रूप से कर दें।
3: अच्छा छिड़काव करना है उसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बिल्कुल
0: आप छिड़काव करें और अपनी फसल पर निगरानी बनाए रखें, क्योंकि ये जो रोग है पोका बोइंग का, ये फफूंदी जनित रोग है। और एक दवाई और आपको मैं बता देता हूँ, यदि ये दवाई टेबुकोनाजोल और सल्फर ना मिले तो आप एजोक्सिस्ट्रोविन प्लस डेफिकोनाजोल, ये
3: ये भी
0: हाँ
3: घोल के लगानी पड़ेगी।
0: हाँ बिल्कुल, ये घोल के स्प्रे करना पड़ेगा। 200 ml दवाई मिलेगी, एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, और उसका स्प्रे कर दें आप, तो इस रोग से आप निजात पा सकते हैं।
2: जितेंद्र भैया देखिए, ये जो समस्या इनकी थी इनका समाधान हो ही गया होगा, और हमारे और भी बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या देखिए होती ही है,
0: बिल्कुल
2: और
0: भैया, और
2: उनकी भी संबंधित जो समस्या होगी उसका समाधान हो गया होगा। अब भाई देखो, ये तो हमारे किसान भाइयों ने आज का कार्यक्रम सुना, हेलो गन्ना किसान।
0: बिल्कुल भैया, तो देखो हेलो गन्ना किसान हमारे किसान भाई सुन रहे थे और बार बार हमें लगातार अब भी फोन कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें तो कार्यक्रम घड़ी को देखकर करना होता है ना भैया।
2: बिल्कुल भाई, देखिए हम अपने सभी किसान भाइयों को अब बता देते हैं कि भैया देखिए, आप हमारे पास में फोन कर सकते हैं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर आप जानते ही हैं, हमारे नंबर हैं
0: 9457-07-82-88, और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है 013-41-230-105। और भाई अगला हमारा जो हेलो किसान होगा वो होगा 4 4 सितंबर को।
2: बिल्कुल भाई, देखिए हमारे सभी किसान भाई बहनों ने ये सब नोट कर लिया है, और भैया देखो मौसम की जानकारी देनी किसान भाइयों को
0: बिल्कुल
2: बहुत जरूरी
0: भैया,
2: है।
0: देखो मौसम की जो चिट्ठी है हमारे पास भैया, इस मौसम की चिट्ठी

0: या आप अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ लें।
1: बिल्कुल, और हमें ये बताते रहें कि भैया आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। पता आपको हम एक बार फिर बता रहे हैं, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246-73।
0: भैया इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं 9457-07-82-88 पर।
1: और जितेंद्र भैया देखो, ये सारे काम किसान भाई करेंगे, और अब हमें जो काम करना है भाई, घड़ी देख के करना।
0: बिल्कुल भैया, आप कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार
1: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों,
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह।
1: कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर आपके साथ एस के नोटियाल। हर सप्ताह इस प्रोग्राम में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं और आपको कुछ कानून संबंधी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम में हम एडवोकेट यानी कि जो कानून के जानकार हैं उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे कुछ कानून संबंधी जो जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट समसपाल सिंह और आपसे बातचीत करने का आज का हमारा विषय है मृत्यु भोज निषेध अधिनियम क्या है। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इंसान सामाजिक ताने बाने में बंधा होता है और समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं या जो रीति रिवाज हैं, कुछ रीतियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, वो इंसान के साथ आगे बढ़ती रहती हैं, समाज के साथ आगे बढ़ती रहती हैं और कभी कभी उन पर प्रतिबंध लगाना मुनासिब भी समझा जाता है और कभी कभी उन पर कोशिश भी नहीं की जाती है। कुछ जो प्रथाएं हमारे समाज में चलन में रहती हैं उनको हम आगे बढ़ाते रहते हैं और उनको मानते रहते हैं और मानने के पीछे हम कभी भी ये जानना नहीं चाहते हैं कि ये प्रथाएं क्यों चल रही हैं, उनका चलना जरूरी है या नहीं है, या इनका चलन आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे साथ में रहती हैं। मृत्यु भोज भी एक ऐसी प्रथा हमारे समाज में आज भी प्रचलित है, बड़े लंबे समय से प्रचलित है, जिसको हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सब लोग जानते हैं इसको कि जब मृत्यु भोज होता है उसमें बहुत से लोग शामिल भी होते हैं और करना होता है या नहीं करना होता इस पर कोई विचार नहीं करता। इसमें चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, समर्थ हो असमर्थ हो, सब लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज जो हमारे सामने सवाल है वो सवाल यह है कि मृत्यु भोज निषेध अधिनियम कब बनाया गया।
2: जी जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मृत्यु भोज निरोध अधिनियम 1960 में बनाया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि किसी का बेटा अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसके ऊपर एक एक प्रकार की जो एक रिवाज चला आ रहा है उसको फिर जबरन उसको क्या करना होता था कि सब वो मृत्यु भोज कराए। उसकी आर्थिक स्थिति अपने बेटे के इलाज के दौरान इतनी वीक हो जाती थी कि वो इसके लिए सक्षम भी नहीं होता था और ऐसे बहुत लोग पीड़ित होते थे जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित रहते थे और उसके ऊपर एक नाजायज यानी कि आप ये समझिएगा कि एक जबरन एक बर्डन जो था, बोझ जो था उसका अर्थ का आर्थिक का, उस पर डाला जाता था कि वो मृत्यु भोज कराए। जबकि मृत्यु भोज का उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। हिंदू धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की ये एक परंपरा है जिनको इन्होंने मृत्यु भोज का नाम दिया है, लेकिन मृत्यु भोज किसी शास्त्र में नहीं है, वेदों में कहीं मृत्यु भोज का उल्लेख नहीं है।
1: एक शंकराचार्य महोदय हैं, उन्होंने शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों के प्रश्नों के जवाब में कहा है कि किसी यदि वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु होने के बाद 11वें दिन महापात्र को भोजन कराया जाता है, ये शास्त्र के अनुसार है, और

0: वे दिन तेरा ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ये भी शास्त्र के अनुसार है। और 13वें दिन जिसको हम 13वीं भी कहते हैं, उसमें उसकी यानी कि जिसके घर का जो सदस्य है वो कम हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, तो वो कराए या किसी को भोजन ना कराए, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, वो ऐसा ना रीति है, ना रिवाज है और ना ऐसी कोई प्रथा है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि कोई इस प्रकार की कोई रीति रिवाज नहीं है। एक संस्कार होता है जिसमें 5 या 7 ब्राह्मणों को भोग लगा करके और मतलब उनका संस्कार पूरा किया जाता है। प्रथा ये थी कि अगर मान लिया किसी के घर पर या कोई व्यक्ति अगर मृत हुआ है उसकी, तो उसको तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती है जब तक ये भोग न लगाया जाए। लेकिन वो भोग सिर्फ ब्राह्मणों को था, ब्राह्मणों को की बात की गई थी कि एक बहुत बड़े सामूहिक स्तर पर आसपास के लोगों को प्रतिष्ठा दिखाने के लिए मृत्यु भोज कराए, इस प्रकार का कोई चलन जो था हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू सनातन धर्म में नहीं था।
0: जबकि वकील साहब होना ये चाहिए था कि जिस व्यक्ति के घर में शोक हुआ है, उसको दुख हुआ है क्योंकि उसके परिवार का एक सदस्य चला गया है संसार को छोड़कर, उसको सांत्वना देने की बात थी, उसको धीरज बंधाने वाली बात थी, उस धीरज बंधाने की बजाय वो एक प्रथा का रूप उसने ले लिया है और वो प्रथा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और उसका जो रूप है, स्वरूप है, वो और बड़ा होता गया। लोग बड़े बड़े आयोजन करने लगे। कभी कभी तो वर्तमान समय में ऐसा भी लगता है कि हम शोक मना रहे हैं या खुशी मना
1: जी,
0: रहे
1: जी,
0: हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरा सवाल ये उठता है कि मृत्यु भोज जो रीति है या कुरीति है, इसको हम क्या कहें?
1: देखिए ये कोई रीति नहीं है, ये कुरीति है। क्यों? जिस चीज का उल्लेख धर्म शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है, तो हम उसे एक रीति नहीं कह सकते।
0: बिल्कुल,
1: हम कुरीति कहेंगे। कुरीति का मतलब यह है कि जो एक लोगों ने स्टार्ट किया, चलन किया, गलत बातों को स्टार्ट किया और उसे हम एक दूसरे पर थोपते चले गए, तो हम इसे कुरीति कहेंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे है भाता। भाई जिसके बेटा मरा है उसकी इच्छा किसी को कुछ खिलाने की नहीं है। मैं ये कहूंगा उस समाज ने सिर्फ इस कुरीति के दबाव में, इस कुरीति को चलन में रखा जाए, एक दबाव डाला और उसको ये कहा कि आपको मृत्यु भोज कराना ही होगा।
0: बिल्कुल,
1: ये बेटे के ऊपर है, पत्नी के ऊपर लिखा है कि पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती। तो बेटा मरे, पति मरे, लेकिन वास्तव वही है कि जो जिसका खोता है दुख उसी को होता है, बाकी समाज केवल कुरीतियों को बढ़ाने वाला।
0: बिल्कुल सही कहा आपने वकील साहब, क्योंकि समाज की जब हम बात करते हैं, किसी प्रथा को थोपने की जब बात करते हैं, जब समाज इसी प्रथाओं को थोपता है, वो ना गरीब को देखता है, ना अमीर को देखता है, ना समर्थ को देखता है, ना असमर्थ को देखता है, उनको बस केवल और केवल एक ही काम दिखाई देता है कि आपको ये काम करना है।
1: जी जी जी।
0: और ऐसी प्रथाओं को जबरदस्ती आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो ये अधिनियम बनाया 1960 में, इसको बनाने के पीछे भारत सरकार का जो उद्देश्य था, वो क्या था?
1: भारत सरकार का उद्देश्य यही था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने देखेगा इस पर जब कोई लॉ क्रिएट होता है तो विधि मंत्रालय में भी ये सारी चीजें देखी जाती है, फिर धर्मशास्त्र भी देखे जाते हैं कि वास्तव में ये कोई रीति है, संस्कार है या कुरीति है। जब भारत सरकार इस चीज से संतुष्ट हो गई कि ये कोई शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, कोई रीति नहीं है, सिर्फ कुरीति है, चलन है। और शास्त्रों में सबसे बड़ी बात तो मैं क्योंकि गीता का ही उदाहरण दूंगा, उसमें लिखा है, श्री कृष्ण जी भी कहा है कि जहाँ खिलाने वाला खुश ना हो वहां खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। क्योंकि वकील साहब एक बात बताइए कि जब ये कानून बना, अधिनियम बना, हमारी जो संसद है सर्वोपरि होती है, उसमें कोई भी जब नियम बनता है और पास होता है, वो फिर लागू होता है, लागू होने के बाद वो हमारी जो देश की जनता है या हमारे जो नागरिक हैं उनको मानना होता है।
1: जी,
0: और जो अधिनियम में बनने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, और क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने में कुछ डिले हुआ है या जो भी समस्याएं रही होंगी वो समय की बात है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस कानून को अपने राज्य में लागू किया है।
1: जी
0: क्या कारण हो सकता है वहां पर मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने का?

0: कारण सर, जो राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम जो इम्प्लीमेंट किया है उसे 2020 का नाम दे करके, क्योंकि 2020 में उन्होंने लागू किया, तो उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम होता था
1: बड़े स्तर
0: जिस
1: पर।
0: बड़े स्तर पर होता था, जिस तरह से शादी समारोह हो, कोई अच्छा कोई और खुशी का माहौल हो, तो ऐसी ही स्थिति में एक जो समाज में जो कुरीति थी कि उन्होंने बड़े स्तर पर यानी कि अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदारों को सबको बुलाना है, तो एक कुरीति को केवल कुरीति का पालन करने के लिए
1: जैसा
0: एक
1: कि है।
0: हाँ एक आर्थिक दबाव उस व्यक्ति पर पड़ता था जो मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परिपक्व नहीं होता था।
1: बिल्कुल, क्योंकि वकील साहब मैंने राजस्थान को बहुत नज़दीक से देखा है और लंबे समय तक मैंने उसको देखा है, और वहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, जिनको समाज जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर थोपता है। यानी कि मृत्यु भोज में यहाँ तक समाज प्रतिबंध करता है उसको कि यदि तुम मृत्यु भोज नहीं करोगे तो तुम्हें
0: जी जी जी जी जी
1: समाज से बाहर कर दिया जाएगा।
0: उसमें उनका कहना ये होता है कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यदि मरने के बाद दसवा दसवा 10वें दिन दसवा कहते हैं या 13वां कहते हैं, 13वें दिन कहते हैं उसे,
1: अलग-अलग जगहों
0: अलग
1: पर
0: अलग अलग अलग परंपरा अलग अलग माना जाता है,
1: बिल्कुल
0: तो अलग अलग होता है, कहीं 10वां माना जाता है, कहीं 11वां माना जाता
1: कहीं
0: है, कहीं
1: बारवां होता है, कहीं
0: बारहवां
1: तेरहवां होता है।
0: तेरहवां होता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो उसमें कहा कि मरने वाले को यदि मोक्ष प्राप्त कराना है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि अगर आप मृत्यु भोज नहीं कराओगे तो जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा भटकती रहेगी,
1: उसको शांति
0: अब
1: नहीं मिलेगी।
0: उसको नहीं शांति नहीं मिलेगी, और भय देखिएगा कहां दिखाया, उसको शांति नहीं मिलेगी तो वो हमारे समाज में हमारे रिश्तेदारों में हमारे गांव में सबको परेशान करेगा भूत प्रेत बन करके, इस तरह का भय दिखा करके उनसे जबरन मृत्यु भोज कराया जाता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि जब किसी चीज का डर होता है इंसान तभी कोई काम करता है, और बिना डर के प्रीत भी नहीं होती है,
0: जी जी जी
1: और डर
0: जी
1: से ही प्रीत भी होती है। और ये इस तरह की जो कुप्रथाएं या रीति रिवाज होते हैं, जहाँ कहीं जो शास्त्रार्थ नहीं होते हैं उनका चलन होता है, उनको धीरे धीरे जब शिक्षा का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे की पहचान होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, जब शिक्षा का ज्ञान हो जाता है तो लोग जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने का प्रयास करते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: क्या शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे हमारी जो ऐसी प्रथाएं हैं, ये जिनको हम कुप्रथाएं कहते हैं, वो कम हों?
0: जी। देखिए जहां तक आपने शिक्षा वाली बात की, शिक्षा को मैं मानूंगा शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए या जो पाठ्यक्रम में दी गई है उनका ज्ञान नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है हमारे सामाजिक शिक्षा, हमारी राजनीतिक शिक्षा, हमारी आर्थिक शिक्षा और हमारी नैतिकता शिक्षा, जिसमें हमारी कुरीति और रीतियां शामिल हैं। तो हमें शिक्षा का ज्ञान होने के बाद हमें अपने जो रीति रिवाज हैं यदि वो कानून सही है धर्मशास्त्र के अनुसार सही है तो उसे हमें मानना चाहिए, और अगर वो कुरीतियां हैं जबरन पे थोपे गए हैं तो हमें उसे कंटिन्यूटी नहीं रखना चाहिए, बड़ी आसानी से उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: यही
1: जहाँ
0: हमारी शिक्षा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, जहाँ हमें आर्थिक नुकसान हो या हमारा जो सामाजिक पतन हो, ऐसी चीज़ों को हमें त्यागना ही अच्छा है। और यदि हम तरक्की करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जो कुरीतियाँ हैं उनको हमें त्यागना
0: जी जी
1: बहुत ही जरूरी है। एक सवाल वकील साहब यहाँ ये आ रहा है कि वर्तमान समय में कुछ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक पंचायतें हैं, कुछ
0: जी
1: इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, यदि कोई आसानी से नहीं मानता है तो फिर सामाजिक जो पंचायतें होती हैं, संस्थाएं होती हैं, जो संगठन, तो उनके द्वारा इन जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है,
0: जी जी जी
1: क्या
0: जी
1: ये उचित है या नहीं? वो
0: वो
1: प्रतिबंध
0: बिल्कुल
1: लगाना उचित है
0: बिल्कुल
1: या?
0: प्रतिबंध लगाना उचित है, कुरूतियों को बंद करना उचित है। और मैं इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। अभी हाल की बात है, उत्तर प्रदेश में ये निवारण अधिनियम लागू नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है उसमें एक उल्देन गांव है, उल्देन गांव में बाकायदा इसको प्रतिबंध कराया गया है, और उन्होंने एक कि हम गांव गांव जाकर के इसको प्रतिबंधित करने के लिए सुझाव देंगे, क्यों प्रतिबंधित कर रहे हैं इस बारे में बताएंगे, और वहां पर लोगों ने मैं शपथ हस्ताक्षर किए हैं कि हम आज से मृत्यु भोज को समाप्त करते हैं और समाज से मृत्यु भोज समाप्त कराएंगे, इस बात का भी हम प्रण लेते हैं और लोगों को जागरूक करेंगे।
1: अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: अच्छा निर्णय लेने के लिए हम

0: ये कहेंगे कि वो समाज में आगे बढ़े और जो ऐसी चीजें हैं उन पर रोक लगे। अधिनियम बना हुआ है, कोई भी जब कानून बनता है यदि कोई उस कानून को नहीं मानता है, जब वो कानून लागू हो जाता है और नहीं मानने पर उस कानून में दंड की प्रक्रिया का प्रावधान होता है, तो इस अधिनियम में दंड का क्या प्रावधान है?
1: दंड का प्रावधान जो ये मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 है, इसका एक सेक्शन है 3(3), उसमें लिखा है स्पष्ट कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ किसी की मृत्यु होने पर यदि मृत्यु भोज कराता है तो उसे 1,000 रुपये का अर्थदंड और 1 साल की उसे सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने सेक्शन 4 में लिया, मृत्यु भोज में शामिल अगर कोई व्यक्ति होता है, मृत्यु भोज करने जाता है उसके आवास पर, उसके घर पर, तो वो भी 1,000 रुपये के अर्थदंड से प्रत्येक व्यक्ति और 1 साल की सजा का भोगी होगा।
0: कराने वाला और शामिल होने वाला,
1: बिल्कुल दोनों
0: दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और क्योंकि अभी पूरे भारत में ये लागू नहीं है, और जब ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा तो ये प्रावधान हो जाएगा कि यदि कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती है, कहीं होती है, कोई करता है, शामिल होता है, तो उनको दंड का प्रतिभागी होना पड़ेगा। जन जागरूकता की कभी कभी कमी भी होती है, उसका प्रचार नहीं किया जाता है, प्रचार की जब कमी होती है तो जानकारी लोगों को नहीं होती
1: जी
0: है।
1: जी
0: प्रशासन के लिए इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं कि वो कैसे इसको कंट्रोल कराए, या फिर जो कोई आयोजन करता है या शामिल होता है वो उनको कैसे रोकें, या फिर यदि कोई करता है तो उसकी शिकायत कहाँ की जाए?
1: जी जी इसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है ग्रामीण स्तर पर सरपंच को दी गई है, जिसे हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं।
0: हाँ
1: ब्लॉक स्तर पर जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनको दी गई है।
0: अच्छा
1: वो लोग इसकी जो सूचना देंगे, अगर यदि उनके क्षेत्र में इस तरह से मृत्यु भोज कराया जा रहा है या लोग शामिल हो रहे हैं, तो उसकी शिकायत, उसकी सूचना तुरंत वो अपने उपखंड मजिस्ट्रेट को देंगे। और इतना ही नहीं, क्योंकि इसको प्रभावी बनाने के लिए एक काम बहुत अच्छा किया गया है कि जिन लोगों को इसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है, सरपंच है, सेक्रेटरी है ब्लॉक स्तर पर, तो यदि वो लोग इसकी सूचना नहीं देते हैं और वो लोग ऐसे में शामिल, यानी कि गोपनीय रूप से यदि शामिल रहते हैं और सूचना नहीं देते, तो उन्हें भी 1,000 रुपये अर्थदंड और 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। और इसकी जो आप जुडिशरी के स्तर से अगर आप देखें, तो इसको जो हमारे यहाँ चलता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जागरूकता फैलाने के लिए, तो अब हम उसकी जिला स्तर पर होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
0: बिल्कुल
1: जिसका काम ही केवल लोगों में जागरूकता फैलाना है,
0: कानून के प्रति,
1: कानून की जानकारी देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इसकी शिकायत हम डायरेक्ट जो है विधिक सेवा प्राधिकरण जो जिला स्तर पर बनी है उसमें हम इसकी शिकायत कर सकते हैं।
0: अच्छा
1: और इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रभावी बनाया गया है इसे DIG साहब को दिया गया है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है, इनके प्रशासन स्तर पर बहुत अच्छे इसमें प्रावधान किए गए हैं।
0: बिल्कुल वकील साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसमें क्या दंड का प्रावधान है, करने और कराने और शामिल होने वालों के लिए सबके लिए प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है, और ऐसी जो समस्याएं हैं या ऐसी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको हमें त्यागने की आवश्यकता है, छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। एक गरीब आदमी होता है, वो जिंदगी भर अपने बच्चों का पालन करने के प्रयास करता है, उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, अच्छा उनका जीवन स्तर उठाने की कोशिश करता है, और इन कुप्रथाओं में फंसकर वो इंसान कर्जे में बंध जाता है और जिंदगी भर वो कर्जा नहीं
1: जी
0: उतार
1: जी
0: पाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हमें जरूरी है कि हम ऐसी प्रथाओं से बचने का प्रयास करें, कोशिश करें कि जो ऐसी कुप्रथाएं हैं हमारे समाज में चल रही हैं, धीरे धीरे हम उनको
1: त्याग
0: त्यागने
1: दें।
0: का प्रयास करें।
1: जी जी
0: वकील
1: जी
0: साहब, इस कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर।
0: मृत्यु भोज निषेध अधिनियम, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ थे एडवोकेट समसपाल सिंह। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए इसके नोटियाल को। नमस्कार।
2: कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी सलाह, यह आकाशवाणी का नचिपाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

छाया गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत। कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना था आराधना फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार एसडी बर्मन। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत, जिसका फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। शब्द रचना है आसरत जयपुरी और शैलेंद्र की, और संगीत है शैलेंद्र का।

इसी गीत के साथ फिल्मी नगमों का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कार्यक्रम विवरण पर। श्रोताओं, आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में नात। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं रात 8 बजे गीत संध्या कार्यक्रम में, और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत, और रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात के हम सफर। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का वक्त रहेगा रात 9:30 पर। कल प्रातः 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसारण आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। अभिषेक भारद्वाज का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में।

कल सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा कान के रोग और बचाव। खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुबह 7:10 पर जानकारी दी जाएगी दलहनी फसलों में सामयिक कार्य विषय पर। जानकारी और गीत संगीत से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज की तरह सुबह 7:31 पर जिले की हलचल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9:15 पर। विविध कलाकारों के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे कल सुबह 9:25 पर। कार्यक्रम होगा धरती गाती है। कल दोपहर 12:05 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम जिंदगी लाइव। महिला जगत का वक्त रहेगा कल अपराह्न 1:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा ऐसी स्किल और वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो समेत दुनिया भर में हो।
1: हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने जापान की कंपनियों को यहां निवेश करने और बिजनेस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री योगी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानाशी डेस्क स्थापित की जाएगी जो यामानाशी सरकार और वहां के उद्योगों और निवेशकों के साथ निरंतर समन्वय करेगी। इससे पहले यूपी जापान हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी पार्टनरशिप के सेक्टोरल सेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जापान और भारत की क्षमताओं को जोड़कर हेल्थ केयर और केयर इकोनॉमी में बड़ा मॉडल तैयार किया जा सकता है। वहीं आज यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली ऑफ जापान और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एमओयू हुआ। एमओयू के तहत दोनों विधानसभाओं के बीच म्यूचुअल विजिट्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और एक्सचेंज एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही दोनों अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सेमीकंडक्टर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के शामिल होने की संभावना पर भी चर्चा हुई। जापान की ओर से सेमीकंडक्टर सेक्टर में मौकों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक टीम भेजने की इच्छा जताई गई। श्री योगी ने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस अहम क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और राज्य की औद्योगिक क्षमताओं के बीच सहयोग की काफी संभावना है। साथ ही जापान के अनुरोध पर सितंबर में होने वाले टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में उत्तर प्रदेश के शामिल होने पर भी सहमति बनी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम अ डायलॉग विद द

0: लेक्चर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के सिलसिले में इस समय जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने आज लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल की चतुर्थ वाहिनी मोहनलालगंज में जवान बैरक, अधीनस्थ अधिकारी मेस और आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, संयुक्त चिकित्सालय गोरखपुर और 22वीं वाहिनी महाराजगंज के विभिन्न भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए कार्मिक कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक हैं।
2: हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी केंद्र अर्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण और नई तकनीकी शिक्षण के साथ साथ सैनिकों के परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सैनिकों के परिवार के उचित स्वास्थ्य, आधुनिक आवास होमेस और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मॉडर्न स्कूल तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि मंदिर परिसर में तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 काम पूरे हो चुके हैं और उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सावन में अब तक 53,69,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि हर सोमवार औसतन 5 से 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि सावन समाप्त होने तक ये संख्या करीब 80 लाख तक पहुँच सकती है।
3: 5.5 लाख का एवरेज हमारे पास सोमवार का है। उस 19 दिनों में 53,69,634 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जो बचे हुए हमारे 9 दिन और हैं उनको मिलाकर आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा हमारा आकलन है और यही आकलन शुरू में व्यक्त भी किया गया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP जो हमारा बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एंड टू एंड बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र, मेडिकल हेल्प काउंटर इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में हो रही तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्ती पार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं फरुखाबाद में गंगा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिन रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है वहां राहत और बचाव कार्य में PAC की मदद ली जा रही है। उन्होंने आम जन से सतर्कता बरतने की अपील की है।
4: विभिन्न जगह हमारी सभी तहसील प्रशासन, मेडिकल टीम, सिंचाई टीम सभी एक्टिव हैं और सभी को ये एहतियातन बार बार बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा नदियों नालों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें।
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं

पश्चिमी जनपदों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में हुए शामिल जापान की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रदेश का दौरा करेगी जापान की टीम। टूरिज्म एक्सपो जापान 2026 में हिस्सा लेगा उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर किया 1 वर्ष। और राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में नात।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिपापात केंद्र से, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के स्वर में नाथ।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुने विविध कलाकारों के स्वर में नाथ। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिभाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें,

रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत। रात 10:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम रात के हम सफ़र। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का वक्त रहेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का वक्त रहेगा रात 9:30 पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या।

अब लौट चलें। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर की शब्द रचना को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है रूप कुमार राठौर और जय श्री शिवराम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार संजीव दर्शन।

गंगा जमुना सरस्वती, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल थे हिंदी वर के और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम की अगली पेशकश हमने ली है कमाल खान की आवाज़ में डर्टी पिक्चर से। गीतकार हैं रजत अरोरा, संगीतकार विशाल शेखर।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोंसले की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार खय्याम। इसी के साथ कार्यक्रम गीत संध्या भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत।

ये गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म थी हीर रांझा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत।

ये गीत था रेशमा की आवाज़ में। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिब आपात केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा के कुछ गीत।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चूर

0: चुनकर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
3: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
4: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
5: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
6: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने

0: फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख

0: launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तश्वीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। हुकूमत का कहना है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा जखीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फरोग दिया जा सके। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और हॉकी में FIH आलमी कप के सेकंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में तरक्की के मुतालिक और वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के बारे में तश्वीश पाई जाती है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जाने का सिलसिला जारी रखेगा और इस्लाहात उनकी हुकूमत का अज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत पिछली हुकूमतों के दौरान पैदावार से वाबस्ता सजा के मॉडल से हटकर अब पैदावार से वाबस्ता तरगीबात में बदल चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमतों की यह पॉलिसी थी कि लोगों को महरूम रखा जाए ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए भी हुकूमत के आगे हाथ फैलाएं। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों को लाइसेंस राज बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था जबकि उनकी हुकूमत का पैदावार से वाबस्ता तरगीबाती मॉडल मौके तख्लीक करता है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ जाब्ते ही तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक मुश्तरका मुस्तकबिल के जज्बे में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि यही सबब है कि भारत की G20 की सदारत के दौरान उसका रहनुमा उसूल एक कुर्राए अर्ज एक खानदान एक मुस्तकबिल था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दुनिया ने कई नशेबो फराज देखे हैं और इन तजर्बात ने एक बात को बहुत वाजह कर दिया है कि हर मुल्क का मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 20 खलाई स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान CEO और बानियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने जोर दिया कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने वाजह किया कि मुल्क का खलाई शोबा आलमी सतह के बासलाहियत अफराद कंपनियों और सरमायाकारी को रागिब कर सकता है। उन्होंने तजवीज किया कि एक ऐसा इको निजाम और माहौल वजह करना चाहिए जहां जब भी दुनिया खला के बारे में सोचे तो वो भारत की तरफ देखे। खलाई सनत और दीगर समाजी तरक्याती शोबों के दरमियान वसी तर तआवुन पर जोर देते हुए वजीर आजम ने खला के लिए नौजवान जहनों में जस्तजू और दिलचस्पी पैदा करने की गरज से अटल टिंकरिंग लैब के साथ ज्यादा से ज्यादा

0: 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए होगी। इस स्कीम का मकसद दायरा कार में मजीद इजाफा करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और बेहतर करके नीज अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाकर आलमी मुकाबला आराई में इजाफा करना है। ये स्कीम भारतीय मोबाइल ब्रांड्स तैयार करेगी और रोजगार भी वजह करेगी। MPMS के 2 हदफी जुमरे हैं, जिनमें मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलतें फराहम करना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड्स की मदद करना शामिल है। ये आकाशवाणी है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने आज मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। बिलखसूस कौमी राजधानी पर तवज्जो मरकूज की गई। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया कि जनाब नड्डा ने कौमी सतह पर निगरानी और वबा की तहकीक से मुतालिक सूरत हाल, IL और SARI रुझानात, जांच लेबोरेटरी की निगरानी और हिफ्जान सेहत की सहूलियात के लिए सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया ताकि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलात का बंदोबस्त किया जा सके। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने लगातार निगरानी, वसी तौर पर नजर रखने और सरगर्म तौर पर तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें इन्फ्लुएंजा के रुझानात पर करीबी नजर रखना शामिल है। उन्होंने अवामी बेदारी और रोकथाम से मुतालिक तरीक़ाकार, जिसमें साफ निजाम तनफ्फुस शामिल है, पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर और सीनियर BJP लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर एहतजाज करने पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि यह एहतजाज न तलबा के मफाद के लिए है, न ही इंसाफ के लिए है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की सियासी मायूसी की और जनाब गांधी के मीडिया की तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश की एक अलामत है। जनाब नड्डा ने कहा कि अदालत आलिया ने पहले ही 20 जुलाई के वाक़े का नोटिस लिया है और साबिक जज की सरपरस्ती में 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी कायम की है।
1: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
0: मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत एक मज़ाहिम भरोसेमंद इख्तिराआत पर मबनी बा इख्तियार और सबकी शमूलियत वाले डिजिटल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद रखता है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के तसव्वुर से रहनुमाई मिलती है। वो पुणे में आज ब्रिक्स ममालिक के वज़राए मवासलात की 12वीं मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए मवासलात और सीनियर नुमाइंदों ने इत्तिलाआत और मवासलाती टेक्नोलॉजीज, डिजिटल तब्दीलियों, इख्तिराआत और मज़ाहिम डिजिटल बुनियादी ढांचे में तआवुन को मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अपनी तवानाई की शराकत दारी को रिवायती पेट्रोलियम मसनूआत से आगे बढ़ाकर साफ और पायदार ईंधन तक वसत देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई का तआवुन मुस्तकबिल में तवानाई की यकीनी फराहमी और साफ तरीन ईंधन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगा और ये पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी मौजूदा शराकत दारी पर तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने आज एक बार फिर कहा है कि भारतीय मल्लाह बिरादरी की बहबूद और सलामती भारत की आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में रूनुमा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने का सिलसिला जारी रखे हुए है। 2 गैर मुल्की झंडे वाले जहाजों के ताल्लुक से हुए एक वाक़े के बारे में बातचीत करते हुए जनाब जायसवाल ने बताया कि तमाम 22 मल्लाह महफूज हैं और हुकूमत इस सिलसिले में मुतालिका अहलकारों के साथ राबते में है ताकि उनकी हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाया जा सके। हॉकी में FIH आलमी कप के सेकंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तश्वीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو

0: पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिर खा जखीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फरोग दिया जा सके। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: कार्यक्रम हेलो नजी पपद सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं विवेक प्रताप सिंह। श्रोताओं, कार्यक्रम है आपकी फरमाइशों का और हम करेंगे उनको पूरी। तो उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9457078288 और दूसरा हमारा नंबर है 01341230105। तो ये दोनों नंबर हैं जिनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मिला सकते हैं हमारे हमारे पास फ़ोन और पूरी करवा सकते हैं आपकी फरमाइश। तो देखते हैं किन की कॉल है हमारे पास सबसे पहले। हेलो नजीब आबाद।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार सर, कौन सर बात कर रहे हैं?
1: सर जी, ग्राम सनोतिया, जिला गुना, प्रदेश से विवेक प्रताप सिंह जी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा सर जी।
0: अरे सर नमस्कार। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: सर जी आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ।
0: अरे,
1: और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: जी जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और हमारा आकाशवाणी परिवार भी बहुत अच्छा है। तो क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमें।
1: हाँ सर जी, मैं एक किसान हूँ, खेती किसानी करता हूँ
0: जी,
1: और साथ साथ मैं रेडियो भी सुनता हूँ, क्योंकि खेती किसानी वालों को रेडियो सुनना बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से।
0: तो क्या क्या जानकारी मिलती है आपको?
1: क्या, अरे सर जी, उससे तो रेडियो से तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं खेती किसानी के बारे में। और खेती किसानी क्या, सभी को रेडियो, कोई भी वर्ग हुआ, रेडियो तो सुनना बहुत जरूर है। क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि हमको देखो शिक्षा मिलती है, सूचना मिलती है और मनोरंजन से तो अवगत कराता ही।
0: जी जी जी, तो मौसम कैसा है वहाँ का आज?
1: सर जी, मौसम बढ़िया है, दो चार रोज से बारिश नहीं हो रही और मौसम, धूप तो नहीं है लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूर्य नारायण नहीं दिखते हैं, छुपते रहते हैं और बढ़िया ठंडा मौसम है लेकिन बारिश नहीं हो रही।
0: बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल हो रहे हैं।
1: जरूरत भी नहीं है सर जी, जरूरत भी नहीं है अभी बारिश की।
0: अच्छा, तो कब पड़ी थी बारिश?
1: अरे अभी चार रोज भाई, चार रोज पहले भयंकर बारिश थी मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: और अभी भी है कुछ कुछ भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश है। हमारा क्षेत्र क्या है, हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अभी बारिश की जरूरत नहीं है तो बारिश नहीं पड़ रही है, ये तो
1: नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: नहीं है सर, नहीं,
0: लेकिन
1: नहीं।
0: मौसम ठंडा है, ये बड़ी
1: हाँ,
0: राहत
1: मौसम
0: की बात
1: ठंडा
0: है।
1: है बिल्कुल जी जी, ठंडा ही रहना चाहिए।
0: जी
1: धूप
0: जी
1: निकलती है तो पसी आता है, बहुत गर्मी लगती है,
0: जी जी जी
1: इतना मौसम सही है, सुहावना, बहुत भयंकर।
0: तो आज अपने आपने हमें कॉल किया है, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सर जी, फिल्म का नाम है दिल ही तो है
0: जी,
1: और मन्ना दे की आवाज में एक इसमें एक गाना है, लागा चुनरी में।

0: डाल छुपाऊं कैसे, ये सॉन्ग सुनवा देना।
1: ठीक है, ये
0: बहुत
1: गीत हम
0: दिनों
1: आपको
0: से
1: सुनवाएंगे।
0: हाँ बहुत दिनों से सुना नहीं सर ये गाना।
1: ठीक है, आज सुनवा देते हैं।
0: और हाँ, और सर जी इसी सॉन्ग को सुनने वाले कुछ मेरे मित्र हैं,
1: जी बताइए।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, और बक्कर फरीदी जी हैं, विष्णु अग्रवाल जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, सुरेश कुमार सैनी जी हैं, और मिंटू लाल तिवारी भी हैं साथ में। इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा सर।
1: ठीक है सर, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पड़ेगी।

0: श्रोताओं कार्यक्रम है हेलो नजीबाबाद, जिसमें आज आप हमें कॉल करके सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। हमारा नंबर है 9457078288 और दूसरा नंबर है 01341230105। तो उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए हमारा नंबर, हम कर रहे हैं आपका बेसब्री से इंतज़ार। देखते हैं अगली कॉल हमारे किन श्रोता की है। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी सर नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर, मैं सागर अली, जिला मुरादाबाद, ग्राम ध्यानपुरा के पास। और सर कैसे हैं आप?
0: जी सर मैं ठीक हूँ, शायद आप बिजी हैं इस समय।
1: नहीं मैं बिजी नहीं हूँ सर,
0: अच्छा तो सारे
1: मैं तो
0: काम
1: बहुत
0: छोड़कर
1: देर से
0: आप
1: वेट
0: हमारे से
1: कर
0: बात कर रहे हैं? जी
1: मैं तो आपसे तो बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, मेरी मेहनत से कॉल लगी यार, मैं बिजी हूँगा, मैंने सारे काम रोक दिए।
0: जी जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और ये तो देखो प्यार है, हमारे श्रोता इतना प्यार करते हैं और हमें कॉल लगाते हैं, इतनी मेहनत से कॉल भी लगती है।
1: हाँ मैं
0: जी
1: तो आज सुबह से सोच रहा आ गया कॉल लगाऊंगा, लगेगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कल्पना कर रहा था दिन दिन में।
0: जी तो कुछ तो सोचा होगा कि कॉल लगेगी तो ये बातें करूँगा और वो बातें करूँगा, ये बताऊँगा वो बताऊँगा, क्या क्या सोचा था?
1: सोचा तो बहुत कुछ है सर, ये है कि अब जरा कौन से टॉपिक पे बात शुरू हो जा।
0: मौसम पर करते हैं,
1: हाँ मौसम तो करते हैं,
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम तो आज 2 दिन से गर्मी बहुत है।
0: अच्छा मौसम देखिए, बरसात का मौसम है, हर जगह पानी भरा रहता है, मच्छर इस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किस तरह से हमारे श्रोताओं को सावधानी रखनी चाहिए इस मौसम में जिससे वो बीमार ना पड़े, और ख़ास तौर से इस समय बुखार उखार भी चलता है, किस तरह
1: हाँ कुछ
0: से?
1: ज्यादा चलता है सर,
0: जी, तो किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए?
1: देखो हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, अभी तो मैंने मच्छर नहीं लगाई है, मगर कार्यक्रम सुनकर पूरा मच्छर लगा कर जगित होंगे हम।
0: जी, अच्छा तो
1: हाँ
0: मच्छर जो है कार्यक्रम के बाद लगेंगे क्या?
1: नहीं मच्छरदानी लगाई नहीं है, मैं क्या कुछ डिस्टर्ब होगा, पंखा चल रहा है उसके नीचे बैठे हैं सर।
0: अच्छा, मतलब पंखे के सामने बैठे हैं तो मच्छर नहीं लग रहे हैं।
1: हाँ मच्छर
0: जी
1: नहीं लग रहे हैं
0: तो कुछ
1: हम
0: अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं?
1: सर। ये हम थोड़े किसान हैं, कुछ मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, एक हमारे घर मावे का काम होता है, मावा बनता है दूध से। हाँ
0: तो आप थोड़े से किसान हैं और कुछ आप किराने की दुकान चलाते हैं और मावे का काम भी करते हैं?
1: हाँ हमारे काम भी होता है।
0: जी अच्छा,
1: आज थोड़े से यो है कि हमारे हम दो भाई हैं, हम पे 20 बीघा जमीन है, तो 10-10 बीघे हैं, तो थोड़ी तो हो गए।
0: अच्छा तो थोड़े से
1: हाँ
0: किसान हो गए आप,
1: हाँ थोड़े से किसान।
0: वाह वाह वाह, कितनी आसानी से मतलब आपने इतनी बड़ी बात कह दी।
1: नहीं सर जो सच
0: ये
1: है वो
0: सादगी
1: कह
0: होती है
1: रहा
0: कुछ लोगों में।
1: हूँ। हाँ मैंने जो सच है
0: जी
1: वो कहा, मैं मतलब 20 बीघा भी बता सकता था, मगर नहीं जितनी है उतनी बताते।
0: जी अच्छी बात। अच्छा मावे का काम किस तरह का है?

0: आपका थोक का काम है या दुकान है जो मावे
1: नहीं,
0: के
1: मावा
0: आप
1: हमारे घर
0: उत्पाद
1: पर
0: बनाते
1: बनता
0: हैं?
1: है।
0: अच्छा।
1: हाँ, हमारे घर मावा दूध खरीदते हैं हम, उसका मावा बनता है, बाजार में कार्ट जाता है, हमारे दुकानों पर लगा हुआ है, कार्ट में डेरी भी है हमारी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: अच्छी बात है। तो
1: उस
0: दूध
1: टाइम
0: का
1: पर
0: जो
1: मावे खपत
0: सिर्फ
1: ज्यादा
0: मावे का
1: कर
0: ही
1: रहे थे।
0: काम है या घी वगैरह का भी करते हैं?
1: हाँ, घी का भी काम है हमारा।
0: अच्छा,
1: हाँ, कभी
0: चलिए।
1: आए तो तुम हंडिया का

0: जा रहे हैं गाना।
1: ये हमारी ताली है कि वो थोड़ी काली की है तो उनके लिए।
0: डर नहीं लगता आपको?
1: नहीं
0: डर नहीं लगता आपको?
1: नहीं वो आई हुई है यहाँ ही जरा, वो भी हंस हंस रही है, हम बात कर रहे थे।
0: चलिए अच्छी बात है, सुनवाते हैं गाना आपको आपके परिवार
1: हाँ
0: वालों के साथ।
1: ठीक है सर,
0: ठीक है सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजी, आवाज सर जी, नमस्ते।
0: जी। सर नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अभी तो कल देव 17 तारीख को गए थे भिलाई छत्तीसगढ़, क्यों श्रोता सम्मेलन था, रेडियो श्रोता सम्मेलन बहुत बड़ा था, सम्मेलन था तो उसी में मैंने काफी जितने रेडियो श्रोता सम्मेलन होते हैं उसमें सब मैं जाता हूँ, तो उसमें भिलाई छत्तीसगढ़ में मैं गए थे रेडियो श्रोता सम्मेलन, बहुत अच्छा लगा था। तो
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपके पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही है,
1: क्यों
0: ट्रेन
1: भाई,
0: में
1: ट्रेन
0: सफ़र
1: में
0: कर रहे
1: वहां
0: हैं क्या?
1: से जब श्रोता सम्मेलन में खत्म हुआ था तो मैं कल होते थे रवाना हुए थे, तो अभी मथुरा आगे, मथुरा से ट्रेन से जा रहे थे, इसलिए मैं फोन भी लगा रहे थे, तो फोन भी लग गया था।
0: अरे वाह, मतलब नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं आपके,
1: हाँ
0: नेटवर्क आ रहे हैं और ट्रेन से आपने कॉल भी लगा लिया और कॉल देखिए आपकी ऑन एयर भी जा रही है।
1: ऑनर भी जा रही है और श्रोता सम्मेलन में आप आ जाते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने जैसे बीज भारती के श्रोता आरजे वगैरह जीते, आकाशवाणी का आरजे आए सब छत्तीसगढ़ से, हर जगह का राज्य है, सब लोग आए थे तो बहुत अच्छा लगा, क्यों रेडियो वेडियो मामले में बोला गया था तो बहुत अच्छा लगा था,
0: जी,
1: राय दी थी।
0: तो क्या खास बात
1: आपका
0: रही
1: कैसा
0: श्रोता
1: उसका
0: सम्मेलन की इस बार?
1: खास क्या बात, जैसे मिलने जुलने थे जो रेडियो को लगाते हैं और श्रोता मिलते हैं तो वन भाई सा आए, श्रोता सम्मेलन ही बनाया जाता है, क्यों सब लोग मिले जुले हैं और
0: जी
1: परिचय हो गए, इसलिए श्रोता सम्मेलन बनाया। कोई विषय जैसे कोई प्रोग्राम नहीं है चल रहा है, बीज भारती कहीं भी किसी केंद्र का नहीं चल रहा है, तो उनसे ऐसा राय रख ली जाती है, उनसे प्रोग्राम चलाया जाए, जो प्रोग्राम
0: जी
1: पिछड़ा हुआ है वो बंद पड़ा है तो उससे दोबारा करते फिर से चलाया जाए, ये राय रखी जाती है।
0: अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?

0: सर ये कितने खेती बाड़ी करता हूँ प्लस और सिलाई करता हूँ जींस पैंट में।
1: अच्छा, सिलाई भी करते हैं और खेती भी करते हैं।
0: हाँ
1: जीन्स पैंट की, जीन्स पैंट की
0: हाँ
1: आप सिलाई करते हैं?
0: हाँ जींस पैंट जैसे अभी तो घर पे जैसे घर पे खेती बाड़ी घर पे घर वाले खेती बाड़ी करते हैं जो खाली टाइम रहता है तो उसके बाद फिर हम दिल्ली चले जाते हैं ऐसा होता है।
1: तो वहाँ किसी कारखाने में काम करते हैं या अपना ही खुद का काम है?
0: कारखाने हैं एक तरह कंपनी सी है तो अपना ठेका वाला काम है जो पीस रेट पे तो वही काम करते हैं अपना।
1: अच्छा, आप ठेके लेते हैं।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ऐसे निकल
1: अच्छा
0: जाती है सैलरी कम से कम 18-20 हज़ार निकल जाती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, आपका जो आमदनी है वो ऐसे ही, आपकी जो आमदनी है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करिए आप।
0: और
1: हाँ
0: न्यूज़ एप्लीकेशन से आपका प्रोग्राम से आनंद उठाता रहता हूँ तो
1: जी
0: बहुत अच्छा लगता है। नजीबाबाद में अभी तो फोन प्रोग्राम इसमें तो कम लगाता हूँ लगता नहीं है और सोमवार को आता है तो उसमें लग जाता है और एक खेती किसानी वाले में आता है 6 बजे शनिवार को 15 से आता है तो उसमें भी मैं कई बार भाग ले चुका हूँ और उसमें खेती बाड़ी की बातें सुनाता रहता हूँ सर जी। तो और रागनी वगैरह फोने फोने प्रोग्राम उसमें रागनी वगैरह सुनाई जाती है तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम
1: जी
0: को
1: जी जी
0: वो तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है खेती बाड़ी वाला।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
0: हाँ सर जी बस खाली दिलवाले का जीता था जिसके लिए वही
1: जी
0: गाना
1: सर
0: प्ले कर दीजिए इसमें और
1: जी
0: जितने सुनने वाले हैं भारतवासी हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी सर, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है हेलो नजीबाबाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम से तो उठाइए अपना फोन और मिलाइए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन से हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जिसका लगता है नजीबाबाद ने फोन वो अपनी किस्मत पे नाच करता है।
0: बिल्कुल करना भी चाहिए, इतनी मेहनत से हमारे
1: जी,
0: कॉल लगाते हैं हमारे सुनने वाले और इतना प्यार देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये किस्मत पे नाज हम करते हैं आकाशवाणी वाले।
1: जी आप कैसे हो सर?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना परिचय तो दीजिए।
1: जी अच्छा ही रहना, कि हमारी दुआ है आप लोग हमेशा ही ऐसे सलामत रहें।
0: जी बिल्कुल
1: हसीना भी मंसूरी बोल रहे सर, पालदाना का इंदौर से।
0: जी, इंदौर से आपने कॉल किया है हसीना जी ने। क्या करती हैं आप?
1: मैं सिलाई करती हूँ सर,
0: क्या सिलती हैं?
1: घनी बेग का काम करते, जूट का,
0: क्या चीज?
1: जूट जूट का
0: अच्छा, जूट से क्या बनाती हैं?
1: बोरे बनते ना सर, इनसे रिपेयरिंग होता है हाथ से।
0: अच्छा, रिपेयरिंग करती हैं बोरों की।
1: हाँ
0: अच्छा, या नए नए बोरे भी बनाते हैं?
1: नहीं, नए पुराने अभी तो चल रहे, नए बंद हो गए सर थोड़ा बनना,
0: अच्छा, तो घर
1: जूट
0: पे
1: बन ही
0: ही।
1: नहीं रहा ज्यादा।
0: अच्छा, तो घर पे ही ये काम करती हैं?
1: नहीं जॉब पे जाते हैं।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि आप आत्मनिर्भर हैं और महिला हैं, एक सशक्त
1: जी अरे
0: महिला हैं।
1: बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है सर, सुबह 6 बजे उठ के खाना ही बनाना पड़ता है, फिर जॉब पे जाना पड़ता है, फिर वहां से आके आके करना पड़ता है, सब जेंट्स से ज्यादा काम नहीं करती सर।
0: तो एक एक बात तो ये हो गई कि काम से लौट के काम पे ही लौटना पड़ता है।
1: जी और
0: जी,
1: काम पर भी सब जितने पुरुष हैं ना उनसे ज्यादा काम करना करती हूँ मैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही मेहनती महिला हैं आप।
1: जी जी
0: इसके अलावा क्या करती हैं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में क्या किया आपने?
1: पढ़ाई वढ़ाई में तो थोड़े हालात ऐसे से तो नहीं किया था, वो घर में ही थोड़ा सा पढ़े, भैया ने पढ़ाया था।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो इंदौर में मौसम कैसा है?
1: मौसम तो बहुत सुहाना रहता है मैडम सर, पर बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर। मौसम तो रोज ठंडा ही मौसम रहता है, और ऐसा लगता है कि बादल अभी बरस जाएंगे अभी बरस जाएंगे, मगर पता नहीं कहाँ निकल जाते हो।
0: निकल लेते हैं, मतलब बादल रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती।
1: हाँ नहीं होती सर, वो जो मोटे मोटे बादल उड़ के आते हैं ना तो पता नहीं कहाँ चले जाते, जैसा लगेगा अभी यही बरसेंगे।
0: अच्छा, बरसेंगे। अच्छा, आखिरी बार बारिश कब हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी?
1: ये अभी 2-3 दिन पहले हुई थी सर, हल्की
0: अच्छा, तो अभी इंतजार करो।
1: हल्की हुई थी, मगर जितनी बारिश हर साल होती इतनी नहीं हुई।
0: अच्छा, तो बिल्कुल होगी कुछ दिन बाद बारिश, लेकिन मौसम सुहावना है।

0: ये थोड़ी राहत
1: हाँ
0: की बात
1: ये
0: है।
1: एक महीना बचा है ना अभी सर भादों, तो देखते हैं इसमें क्या होता है।
0: जी जी जी
1: और फिर
0: बिल्कुल
1: ऊपर वाले को जो मर्जी है उसने सबको मर्जी में रहना पड़ेगा,
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि
0: आज
1: अपनी गलती की सजा तो मिलती है, जिसने जो किया है ना उसको सजा तो मिलेगी जरूर,
0: ऊपर वाले के पास
1: क्योंकि
0: सबका हिसाब है।
1: पक्के रोड बन रहे हैं सर, पर्यावरण बिल्कुल खत्म हो रही है।
0: जी जी जी सबका हिसाब है ऊपर वाले के पास। आज आपने हमें कॉल किया है,
1: सर
0: कौन सा गाना सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है बरसात की रात एक रात, और मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में गाने के बोल है, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, तेरे सदके बलम तुले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया रे, मैंने तुझको सनम चुन लिया। ये सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। किन किन को सुनवाना चाहती हैं ये गीत आप?
1: अभी घर में तो भाई सुन रहा है मोहम्मद रफी मंसूरी, और अमीना भी मंसूरी अम्मी है, बाकी सभी सोता हूँ फिर सर आपके लिए भी, आप भी सुन रहे हैं।
0: जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: हेलो
1: हेलो।
0: नजीबाबाद
1: हाँ सर नमस्कार,
0: जी। सर नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं रानी कोटा से राजेंद्र बोल रहे हैं।
0: रानी कोटा नजीबाबाद के पास से बात कर रहे हैं आप
1: जी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। जी
0: मैं भी ठीक हूँ। राजेंद्र जी क्या करते हैं?
1: ये बस यही खेती बाड़ी का काम करते हैं।
0: खेती बाड़ी में आजकल क्या बोया हुआ है आपने?
1: जी पग्यार बो रखा है।
0: पझार बो रखा है। पजार में क्या बो रखा
1: जी यही लौकी तोरी
0: है? अच्छा।
1: जो भी आया है।
0: तो बारिश में आपकी फसल को नुकसान तो नहीं हुआ?
1: जी नहीं अभी तक तो नहीं है।
0: जी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अपनी आमदनी का जरिया बनाए रखिए। और कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मौसम मतलब बारिश का तो है, लेकिन उमस भी है, ऐसे में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।

0: और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और
1: जी
0: हमारे क्षेत्र में गुलदार का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है, बना हुआ है और हमला भी कर चुका है कई जगह। तो ऐसे में क्या लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को देखभाल के, जो खुले में सोते हैं वो अपने जैसे तो अंदर सोए, क्योंकि कई जगह का मामला हो गया है हमारे क्षेत्र में, तो खुले में कुत्तों पुत्तों की वजह से बकरी बच्चों को जो ज्यादा आता है, ये भी अपने अंदर रखें बकरी बच्चे भी,
0: जी
1: और अपने को ठीक ठाक करके रखें। ये तो सब जगह ही है सर, हमारे क्षेत्र में ज्यादा है।
0: जी जी जी इधर वन क्षेत्र हो जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रकोप
1: जी
0: ज़्यादा रहता है और हर साल की बात है। और इसके अलावा आप अगर जंगल जाते हैं तो दो चार लोगों के साथ जाएं, या अपने पास कोई हथियार रखें, डंडा वगैरह रखें और टॉर्च वगैरह रखें, कुछ नुकीली चीज़ अपने पास रखें।
1: जी सर, अब ये तो देखो सबकी मजबूरी है, जंगल तो जाना ही पड़ेगा जब
0: जी जी
1: खेती
0: जी
1: बाड़ी है,
0: लेकिन
1: और
0: बचाव के जो साधन हैं वो हमारे पास
1: बचाव करने, हाँ
0: होने
1: दो
0: चाहिए,
1: दो चार चार बंदे साथ जाते हैं।
0: और अपने आप को इतना तैयार रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो हम किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। और बाकी जो मच्छरों का प्रकोप है उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें?
1: जी साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए सब की, अपना मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, मच्छरदानी और साफ सफाई का विशेष
1: जी पड़ोस
0: ध्यान रखें। और
1: पड़ोस में अपने सफाई रखनी चाहिए, तो
0: हाँ बिल्कुल
1: उसमें ठीक रहेगा।
0: जी जी जी और पूरी पूरी बांह के कपड़े पहने, ऐसे ही ना घूमें क्योंकि मच्छर काटेगा तो इस में डेंगू मलेरिया का ज़्यादा खतरा रहता है। आज आपने हमें कॉल किया है, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: भ्रष्टाचार का तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बात करते हैं।
0: जी सर बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो ननीबाबाद, सर्दी को राधे राधे।
0: राधे राधे सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर। केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: भोपाल से हमारे पास बहुत सारी कॉल आती हैं और मैसेज भी बहुत सारे आते हैं, और बड़े ही प्यारे प्यारे श्रोता रहते हैं हमारे भोपाल में।
1: हाँ जी सर, जी सर।
0: जी, क्या करते हैं सर?
1: मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर,
0: पेंटर? किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं?
1: बॉल पेंटिंग, दीवार लेखन, चित्रकारी हुई
0: अच्छा,
1: जी।
0: दीवार लेखन मतलब किसी भी तरह की फोटो बना देते हैं।
1: हाँ, फोटो, उसमें राइटिंग का काम भी रहता है सर, जैसे एडवर्टाइज का हुआ।
0: अच्छा, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं आप?
1: जी।
0: जी, तो मतलब अपने क्षेत्र में ही करते हैं या बाहर भी जाते हैं?
1: हाँ, अपने क्षेत्र में लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में।
0: अच्छा, और बताइए, अपने शहर का कुछ खासियत बताइए।
1: खासियत सर, ये भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर है अपना बैरसिया, तो वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, काफी श्रद्धालु आते हैं। और उससे 8 किलोमीटर दूरी पर माँ हरसिद्धि का मंदिर है, तरावली कला में,
0: अच्छा।
1: वहाँ पर भी नवदुर्गों में बहुत भीड़ होती है, श्रद्धालु वहाँ भी काफी जुड़ते हैं।
0: अच्छा, तो खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो आप ही के
1: जी
0: यहाँ पर है?
1: हाँ, वो प्रॉपर बैरसिया ही में है, तहसील है सर बैरसिया।
0: अच्छा, तहसील है।
1: जी
0: तो आप तो जाते रहते होंगे।
1: हाँ, 11 के रोज जाते रहते हैं सर।
0: बहुत अच्छी बात है। आज आपने हमें कॉल किया है, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज सर रक्षाबंधन करीबी है, तो एक मूवी है रेशम की डोर, और उसमें गाने की बोल है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दुबंध तार बांधा, ऐसा करके
0: जी,
1: कुछ गया उसके रूप में शायद।
0: अच्छा, आपके यहाँ से ये सांची कितनी दूर है?
1: सांची सर हमारे इधर से लगभग 40-50 किलोमीटर करीब है।
0: अच्छा, मतलब आप तो जहाँ पे टूरिस्ट हैं और जहाँ पे घूमने फिरने की जगहें हैं उसके काफ़ी करीब रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: जी
1: वही
0: जी जी
1: उदयगिरी, सांची, ये सब विदिशा और भोपाल के बीच में, और बैरसिया इधर है, थोड़ा सा तो बराबर पड़ता है।
0: जी, तो आप तो घूमने जाते रहते होंगे वहाँ।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, कैसा क्षेत्र है वो?
1: क्षेत्र सर बहुत ही अच्छा है, और पुरानी इमारतें हैं, और कोई ऐसा कुछ घूमने की जगह है जो अपने को, जैसे किले टाइप के भी हैं कहीं कहीं पर, तो बहुत अच्छा लगता है, राजा महाराजाओं के किले आज भी वो

0: मैं दो तीन मित्रों को याद करना चाहूंगा अगर
1: जी
0: इजाजत
1: बिल्कुल
0: दें
1: बिल्कुल
0: तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे आदरणीय मामी लाल चंदेल जी सुन रहे हैं, गजराज लोधी जी, राम बाबू शर्मा, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और हेलो फरमाए स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप के सभी मेंबर्स, अविनाश तेली जी, पूनम जी, और आप भी सुनेंगे सर।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा।

0: हेलो नजीबाबाद, हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबा, नमस्कार सर जी।
0: जी सर नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ सर जी।
0: मकसूद जी कैसे हैं आप?
1: सर अच्छे हैं और आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, शाम से सुन रहे हैं 5 बजे।

0: जी, कौन
1: मैंने
0: सा
1: जो बारे
0: प्रोग्राम आपको
1: सुना
0: बहुत
1: फिर
0: अच्छा
1: साहब,
0: लगा?
1: हाँ खेती बाड़ी का प्रोग्राम सुना फिर साहब, लगातार मतलब सुन ही रहे हैं सर आपको, और आपने अपना परिचय दिया, विवेक प्रसाद जी बोल रहे हैं आप?
0: जी,
1: हाँ जी, तो हम लोग बच्चों 5 मिनट से लगातार लगा रहे हैं साहब आपके दोनों नंबर बदल बदल कर।
0: जी बहुत अच्छी बात है। इतनी मेहनत से आप और इतने प्यार से आप हमारा नंबर लगाते हैं, और देखिए मेहनत आज सफल भी हुई है और आपका कॉल भी लग गया है। क्या करते
1: हाँ
0: हैं
1: काफी
0: मकसूद
1: दिनों
0: जी?
1: में जी, काफी दिनों में सर कॉल लगी है, अप्रैल के महीने में लग छोड़ी है जब से हम लगी है।
0: अच्छा, काफ़ी दिनों में तो
1: कॉल तो
0: नहीं, क्योंकि
1: लगती है सर, कॉल तो लगती है, लेकिन ये दो नंबर जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते, दूसरे पर रिंग जाती है, उस पर कॉल उठी हुई होती है, ये
0: जी
1: ऐसे हो जाता।
0: जी जी जी
1: हाँ खेती
0: कोई बात
1: बाड़ी का
0: नहीं।
1: काम करता हूँ सर मैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी
1: हाँ
0: में क्या
1: खेती बाड़ी
0: लगाया हुआ है इन दिनों?
1: धान है, गन्ना है, ये प्रमुख फसलें हैं उन दिनों में। गेहूं बोते हैं और पशुओं के लिए म्यार वगैरह बो लेते हैं, बाजरा चरी वगैरह। फसल
0: तो कैसी हो रखी है फसल?
1: तो अच्छी हो रही है सर, थोड़ा बरसात थोड़ा अच्छी सही भी हो रही है, थोड़ी कम भी हो रही है। हमारी एरिया में तो थोड़ा सा बूंदाबांदी होती है, बाग लगाते हैं सर चले जाते हैं।
0: मतलब बारिश के इंतजार में पानी नहीं दे पा रहे हैं अपने खेतों में।
1: पानी भी नहीं लग रहा सर, वैसे काम भी चल रहा है थोड़ा, लेकिन वो नहीं, जैसे बारिश का पानी भर जाता है ना मेट तक, तो उसमें जो है जमीन जो है फूल जाती है, खप खप जैसे पैर जाता है उसमें, तो उसमें धानों में जो है ज्यादा मजा आता है सर।
0: मतलब
1: हाँ
0: पर्याप्त पानी बरस नहीं पा रहा।
1: जी, पर्याप्त पानी बरस नहीं पा रहा सर, वही है बस काम चलाऊ है।
0: जी चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल बारिश होगी और आपके क्षेत्र में भी आपकी फसल और अच्छी होगी। आज आपने कॉल किया है, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सर एक फिल्म है, रोटी कपड़ा और मकान, लता जी की, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत है। सावन का महीना भी समाप्त होने को है, तो हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी दो तकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए।
0: आय हाय, आय हाय।
1: हाँ रात के समय का गीत बहुत ही प्यारा लगेगा ये, और सुनने वाले डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, मोहम्मद इशरत, मुकेश भाई, मोहम्मद बख्तार फरीदी, निजामुद्दीन भाई हैं, और रऊफ भाई हैं, और आसिफ अली चौधरी हैं, राशिद अली अंसारी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, और सभी सुनने वाले सर जहाँ तक ये आवाज आ रही है सर।
0: जी बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, ये था हमारा आज का हेलो नजीबा बात कार्यक्रम। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की कॉल लगी, बहुत सारों की नहीं लगी होगी, लगी भी होगी तो उनका कॉल हम उठा नहीं पाए होंगे क्योंकि व्यस्तताएं इतनी होती हैं। हमारा कॉल एक लाइन हमारी चलती रहती है, दूसरा नंबर पर कॉल जाती रहती है। तो ऐसा ना सोचें कि हमने जानबूझकर आपकी कॉल नहीं उठाई है। अगले हफ्ते या हमारे आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम फ़ोन इन होते हैं, उनमें आप कॉल मिलाइएगा, ज़रूर आपकी कॉल लगेगी। हिम्मत मत हारिएगा और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जो आएगा इस रविवार को, परसों को 12:05 पर। और इसके अलावा आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर। हमारा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का हमारा जो एड्रेस है वो है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप सर्च करके आकाशवाणी नजीबाबाद हमारे पेज पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं और हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद यहीं संपन्न होता है। विवेक प्रताप सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए, आपकी खिदमत में पेश है कार्यक्रम रात के हम सफर।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम रात के हम सफर में आप सभी का स्वागत है। रात के इस शांत मोड़ पर जब दुनिया थोड़ी धीमी हो चली है, गांव, कस्बे और शहर अब धीरे धीरे अपनी थकान उतारने के लिए सोने की तैयारी में है, नींद के आगोश में जाने को बेकरार हैं, लेकिन इस खामोश रात में जहां इस सन्नाटे को चीर रही है कीट पतंगों और झिंगुरों की आवाज़, और इन्हीं आवाज़ों के बीच

कुछ दिल जाग भी रहे हैं। वे इस खामोशी में जाग रहे हैं, किसी की याद में, किसी सोच में, या बस कुछ अपने अंदर चल रहे तूफान से लड़ रहे हैं चुपचाप। रात का ये वक्त कितना अजीब होता है। जब सब शांत हो जाता है तो दिल के अंदर की आवाजें थोड़ी तेज हो जाती हैं और ऐसे ही वक्त में याद आती हैं कहानियां। ये कहानी है आपकी और हमारी जिंदगियों की, वो कहानियां जो हमने जी हैं, वो जो अधूरी रह गई हैं, वो कहानी जिन्हें हम गढ़ना चाहते हैं। तो फिर थाम लीजिए अपने हाथ में अपना मोबाइल और तारों को देखते हुए, चांद के साथ आंख मिचौली खेलते हुए, इन तैरते बादलों के साथ थामिए सिरा अपनी यादों का और लिख भेजिए अपनी कोई कहानी जो आज भी आपको याद है अपने जिंदगी के पन्ने की, और आप कहना चाहते हैं उस कहानी को हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप लिखकर भेजिए अपनी वो मज़ेदार कहानी। हम आते हैं इस गीत के बाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है रात के हम सफर और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

0: 8485809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

फर्क बस इतना आया है कि अब हम कहानियां सुनते नहीं बल्कि खुद अपनी कहानी के किरदार बन गए हैं। आज यही कहानियां हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं। पहले भी पांच शब्द थे, आज भी वही पांच शब्द हैं। और वो शब्द हैं, पता है एक बार क्या हुआ, या फिर हम इस तरह से बोलते हैं, पता है आज क्या हुआ। यही पांच शब्दों की कहानियां हम आज भी अपने दोस्तों के साथ महफिलों में बैठकर सुनाते हैं। कहानियों का जो भाव है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ गया है। पहले हमारी दादी नानी हमें सुनाती थी, आज हम खुद अपनी कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये है गांव मीरापुर, मीरामपुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद से। भेजने वाले हैं मोहम्मद कैफ। ये लिखते हैं, गांव की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आया है पहले से और अब में। हमारे गांव की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है। कभी यही गांव था, आज शाम होते ही, जहां शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठ जाते थे। किसी के घर खुशी होती तो पूरा गांव साथ खड़ा होता था, और किसी के घर दुख होता तो लोग बिना बुलाए पहुंच जाते थे। लेकिन समय बदल गया है, अब गांव में चौपाल तो है मगर चौपाल पर बैठे लोगों की नज़र एक दूसरे पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा रहती है। पहले बच्चे मैदान में खेलते थे, अब मोबाइल में खेलते हैं। पहले पड़ोसी के घर क्या हो रहा है ये सब पता होता था, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग भेजकर रिश्तेदारी निभाई जाती है। खेती भी पहले जैसी नहीं रही, इतनी मेहनत करके भी कोई भी आमदनी नहीं हो पाती। गांव का नौजवान भी परेशान है, पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता है, और गांव में रहकर काम करना चाहे तो रोज़गार के मौके कम हैं। कई घरों में बेटा शहर में है और बूढ़े माँ बाप गांव में उसकी राह देखते हैं, फिर भी गांव की खूबसूरती कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है। आज भी बारिश की पहली बूंद पर मिट्टी की खुशबू बही है। आज भी खेत की मेड़ पर बैठकर किसान को अपनी फसल देखकर जो खुशी मिलती है वो किसी मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर नहीं मिलती। आज भी गांव में कोई ज़रूरतमंद हो तो लोग बिना कहे मदद के लिए पहुंच जाते हैं। शायद गांव बदल रहा है लेकिन गांव की आत्मा अभी जिंदा है। जी हाँ, गांव की आत्मा जिंदा रहती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों से, वहाँ के संस्कारों से, और जो भाईचारा होता है उससे। ये भाईचारा आपके गांव में ऐसे ही बना रहे, यही हम दुआ करते हैं। ये मैसेज हमारे पास आया था मीरापुर बेगा पोस्ट मंडावली तहसील नजीबाबाद से। भेजने वाले थे मोहम्मद कैफ। ये मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर का। ये लिखते हैं कि आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, सभी को शुभकामनाएं। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। प्रोग्राम चल रहा है रात के हमसफ़र, हम प्रोग्राम सुन रहे हैं। बचपन में जो कहानियाँ मेरी नानी और मेरी अम्मी सुनाती थीं वो कहानियाँ आज भी याद आती हैं। जब मेरी नानी भूत की कहानी सुनाती थी, वही भूत रात को नींद में सपने में आ जाता था और मैं डर जाता था, और जब मैं डर जाता था तो अम्मी के पास सोने चला जाता था। तो बहुत अच्छी याद हमारे वकैर जी ने हमें लिखकर भेजी है। और ये मैसेज हमारे पास आया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार का। ये लिखते हैं, बचपन में जब हम छोटे होते थे तो बहुत खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। पेड़ पर चढ़ते, कभी गिल्ली डंडा, कभी फुटबॉल, और कभी दोस्तों के साथ कई खेल खेला करते थे। दोस्तों के साथ छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था, और आज भी जब दोस्तों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, दोस्तों के साथ जो हमने वक्त बिताया है, या आज भी हमारे साथ जो हमारे साथी हैं उनके साथ जब हम वक्त बिताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यही सबकी कहानी है, और उनके साथ हम अपने सुख दुख, अपनी जो परेशानियां हैं या आने वाले जो हमारे प्लान हैं उनको भी हम साझा करते हैं, और हमारे दोस्त भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारा साथ देते हैं। ऐसे दोस्त कभी मत खोइएगा। और हमारा कार्यक्रम है रात के हम सफ़र, हम आज बात कर रहे हैं आपकी कहानियों की, हमारी कहानियों की, जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, हमसे साझा करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।

रात के हम सफ़र कार्यक्रम में हमारे पास ये मैसेज आया है नाज पैलेस अजमेर शरीफ राजस्थान से। मैसेज हमें भेजा है सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा हाशमी। इन्होंने लिखा है, यादों की दुनिया अपने आप में हमारी वो दुनिया होती है जिसमें हम संजोए होते हैं अपने वो खट्टे मीठे एहसास जो कभी हमें हंसाते हैं, कभी हमारे दर्द को सहलाते हैं। इसी तरह सहलाती है हमें अपनों की यादें। जब भी यादों के दरीचे में जाके हम ये सब याद करते हैं तो केवल मिलने की दुआ ही अपने खुदा से करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी यादें हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारे ऐसे लोगों की याद होती है जिनसे हम मिलना चाहते हैं और जिनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और इस तरह की यादें जब हमारे पास आती हैं तो उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ भी बहुत सारी हमारे पास हमारे जहन में उभरती हैं। ये मैसेज है हमारे पास मंडावली से, भेजने वाले हैं कासिम पेंटर। ये लिखते हैं, एक गांव में रहीम चाचा रहते थे। उम्र करीब 70 साल थी। उनके घर में एक पुराना रेडियो था जिसे वो बड़े संभाल कर रखते थे। हर शाम रहीम चाचा चारपाई पर बैठते रेडियो चलाते और गांव के बच्चे उसके आस

पास जमा हो जाते, कभी समाचार सुनाते, कभी गीत और कभी खेती की बातें। एक दिन चाचा का पोता शहर से गांव आया। उसने रेडियो देखा तो हंसकर बोला, दादाजी ये क्या कबाड़ अब तक रख रखा है, आज तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। रहीम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा मोबाइल में आवाज़ तो बहुत मिलती है, लेकिन सुनने वाला इंसान कहाँ मिलता है। पोते ने बात को मजाक में टाल दिया। कुछ दिन बाद गांव में तेज़ बारिश हुई, रास्ते बंद हो गए, बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। गांव के सारे लोग परेशान थे। रहीम चाचा ने अपना वही पुराना रेडियो निकाला, उसमें मौसम की चेतावनी और आसपास के इलाकों की जानकारी आने लगी। गांव वालों को पता लगा कि नदी का पानी बढ़ रहा है। गांव के नौजवानों ने तुरंत मिलकर बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। शाम को वही पोता चाचा के पास आया और बोला, दादा जी आज समझ में आया कि आपका ये रेडियो कबाड़ नहीं है। रहीम चाचा हंसकर बोले, रेडियो पुराना हो सकता है बेटा, लेकिन गांव में एक दूसरे के काम आने की सोच कभी पुरानी नहीं होनी चाहिए। और गांव में एक पुरानी चीज़ उस दिन फिर से जिंदा हो गई, साथ बैठकर सुनने और एक दूसरे की मदद करने की आदत। और ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास आया है, अपनी कहानी हमें लिखकर भेजी है अनिल विनोचा जी ने नगीना से। ये लिखते हैं, कहानी की बात की है तो लिख रहा हूँ कुछ इस अंदाज में, खुद ही समझ जाना। कहानी बचपन में शुरू हुई थी, ख़त्म हुई हुए भी ज़माना हो गया, मगर कोई बात दिल में रूबरू है और वो बात छुपी है इन्हीं लाइनों में। हर गीत को हर गज़ल को दिल की कलम से लिखा है मैंने, चेहरे पर दबी हंसी, लबों तले दिल की बात। इस मुकाम को कई बार देखा है मैंने, इसे वहम इश्क कहूँ या वहम मोहब्बत, इन लम्हों को जिंदगी से मौत बनते देखा है मैंने। मेरा कातिल आज भी मुझे याद आता है, शायद कोई सजा बाकी है, याद दिलाता है। दूर होकर भी वो दूर गया नहीं, मैं कैसे कह दूँ कि वो मेरा नहीं। मोहब्बत मिलन की प्यास नहीं, दिल में कोई रहे बिना रिश्ते के इससे बड़ा कोई मिलन नहीं। धन्यवाद। और एक ये आपने जो मैसेज हमें भेजा है, इसमें एक कहीं ना कहीं आपके बिछड़ने की सुगबुगाहट सी है कि आप किसी से बिछड़ गए हैं और आपका जो प्यार था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। और एक ऐसा ही मैसेज हमारे पास आया है वंशिका गोस्वामी का, गाधारोना ज़िला हरिद्वार से। इनके साथ हैं मदन गिरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लिखते हैं, आज बचपन की याद आ गई। बचपन में हम गांव की ज़िंदगी में खूब मज़ा लेते थे, गिल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना, बरसात के दिनों में कागज़ की नाव चलाना, बस अब याद बनकर रह गई है। गांव अब पहले जैसे गांव नहीं रहे, गांव में दिन छिपते हैं, अंधेरा छा जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। गांव की ज़िंदगी का अलग ही मज़ा है, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। जी हाँ, हम सभी यही चाहते हैं कि पुराने दिन लौट कर आ जाएं और हम फिर से उसी ज़िंदगी में वापस चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता श्रोताओं, क्योंकि समय के साथ सबको बदलना पड़ता है और हमें अपनी आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। और कुछ कहानियाँ जो अधूरी रह जाती हैं, मुझे लगता है कि जो कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा याद रहती हैं, वो पहला प्यार। और किसी मुकाम तक ना पहुँच सका ऐसा कोई आदमी, कोई सपना जो पूरा होते होते रह गया। श्रोताओं, ये जो अधूरी कहानियाँ हैं ये बुरी नहीं होती, वो हमारे अंदर एक टीस और एक खूबसूरती छोड़ जाती हैं। और इस वक्त शायद आप में से कोई अपनी अधूरी कहानी के बारे में सोच रहा होगा और उस अधूरी कहानी के बारे में सोच सोच कर खुश भी हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि वो भी एक खूबसूरत पल था। हमारी ज़िंदगी भी कहानियों की एक किताब है, हर दिन एक नया पन्ना, हर साल एक नया चैप्टर, कुछ पन्ने खुशी के, कुछ आंसू के। तो बिना थके अपनी कहानी लिखते रहिए, इसी सोच के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, जब आज रात आप सोने जाएं और अपनी आंखें बंद करें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि मेरी आज की कहानी कैसी रही। अगर दिन अच्छा रहा तो ऊपर वाले का शुक्रिया करिएगा, और अगर दिन थोड़ा मुश्किल था तो याद रखिएगा कि एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है, और लिखेगा उस नए दिन में एक खूबसूरत सी कहानी। अब हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम रात के हम सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की।

0: लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर ग्रुप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production.